0: भैया आज तो हम तुम्हें एक नए जमाने की कथा सुनाएंगे।
1: अरे बाबा किसी भी जमाने की सुनाओ मगर सुनाओ जरूर।
2: सियावर रामचंद्र

0: Chillax with Radio Masti.
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। 5:06 हुए हैं और आपने रेडियो ऑन कर दिया एंड कनेक्टेड हो गए आप आरएमटू रेडियो मस्ती के साथ। वैसे ये नहीं कह सकते कि सुबह हो गई है, पर धीरे धीरे म्यूजिक के साथ रोशनी आ ही जाएगी। इट्स नलमनी और 8 बजे तक हम आपके साथ में होंगे। सो मेक श्योर स्टे ट्यून्ड, यही आरएमटू रेडियो मस्ती पर।

0: One?
1: Huh.
2: Chillax with Radio Masti.
3: गाने ऊपर गाना इच्छक दाना लता जी की आवाज में आपको प्यारे से जगाने के लिए। वैसे आपको पता है आज है इंटरनेशनल कराओके डे। यस, वो एक ऐसा दिन है जो याद दिलाता है कि गाना सिर्फ सुरों का नहीं दिल की खुशी का भी नाम है। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट गाएं, जरूरी ये है कि आप खुलकर गाएं। चाहे आप बाथरूम सिंगर हो, कार कंसर्ट के सुपरस्टार हो, या फिर फैमिली गैदरिंग के फेवरेट परफॉर्मर हो, आज माइक उठाइएगा जरूर और अपना फेवरेट गाना गाएगा विद यू आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: हर नया दिन अपने साथ लेकर आता है नए अवसर, नए अनुभव और एक नई ऊर्जा। आइए ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के आधार पर जानते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
1: आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रुके हुए काम आगे बढ़ने के योग है। परिवार के साथ समय बिताने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अनावश्यक वाद विवाद से आप दूर रहें। लकी का लाभ का है मरून और नंबर है 8।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज धैर्य और समझदारी से लिया गया हर निर्णय आपके पक्ष में रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आराम भी करें। लकी का लाभ का है ऑलिव ग्रीन और नंबर है 5।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज संचार कौशल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक हो सकती है। किसी बात को लेकर अधिक चिंता ना करें। लकी का लाभ का है स्काई ब्लू और नंबर है 2।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: परिवार और अपनों के साथ आपको मानसिक शांति देगा। पुराने काम पूरे होने की संभावना है। खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें। लकी का लाभ का है व्हाइट और नंबर है 6।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपकी मेहनत और नेतृत्व की प्रशंसा होगी। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। विनम्रता बनाए रखें, सफलता और भी बढ़ेगी। लकी का लाभ का है गोल्डन येलो और नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज हर काम को योजनाबंद तरीके से करना लाभदायक रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें। लकी का लाभ का है एमराल्ड ग्रीन और नंबर है 4।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज संतुलन बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर होगा। लकी का लाभ का है लैवेंडर और नंबर है 9।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। सोच विचार कर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ देगा। किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात हो सकती है। लकी का लाभ कह बागंडी और नंबर है 3।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आज उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ हर काम में सफलता मिल सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं। नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। लकी का लाभ कह ऑरेंज और नंबर है 7।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज जिम्मेदारियों को निभाने में आप सफल रहेंगे। आर्थिक मामले मजबूत हो सकते हैं। परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा। लकी का लाभ का है नेवी ब्लू नंबर है 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज रचनात्मक विचार और नए प्रयास सफलता की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें। लकी का लाभ का है चौकवाज और नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: आज आपकी अंतरात्मा की आवाज सही मार्ग दिखाएगी। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखें। लकी का लाभ है पीच और नंबर है 12।
0: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
3: कभी स्पाइसी कभी स्वीट म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट।
4: टक टक बॉलीवुड।

0: Chillax with Radio Musty.
1: सुबह का टाइम है और आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रही है सेवन साउंड प्लन दे रोश से। आप हरीशमा जी, आप नेक्स्ट गाना चलाना चाहते हैं अपनी मामा सीता, पापा देवान, दीपा, रति, ओजस्वी, लविश, किशन, बोबी, सचिन के लिए। एंड आज है आपके आपके दोस्त का बर्थडे सूरज पुरन, आप उन्हें विश कर रहे हैं वेरी हैप्पी बर्थडे विशेज। उनकी पत्नी रीमा, डोटा कियारा, मम्मी अमृता, ब्रदर्स रोशन, उमेश, सिस्टर इन लॉ नीलम, नेफ्यू रियांश की तरफ से। आप हैं नीरा कुबलाल जी जो पर से लालमाची से। वी हैव साधना जी, मुकेश जी जो कनेक्टेड हो चुके हैं, गुड मॉर्निंग। एंड आप विश कर रहे हैं ब्यूटीफुल संडे और गाना बेईमान को वेरी नाइस बोल रहे हैं। आप हैं सरोज, राजन, पूनम, मोनिका, पल्लवी, विशाल, उमेश, आर्षी जी का थोबोन से अरे आख एंड में मैसेज के एंड में आपने अपना नाम लिखा। थैंक यू जी कनेक्टेड रहने के लिए। ऐसे ही स्टे ट्यून क्योंकि सरप्राइजेज वेटिंग है इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपकी आरएम2 रेडियो मस्ती पर।
0: You're listening to RM2 Radio Mastery.

0: This mix of music, feel the musty.
1: सुबह के 6 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अभी नमस्कार।
2: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले हैं उतरते हैं फीफा विश्व कप 2026 के मैदान पर, जहां पर शनिवार को मायामी में खेले गए एक रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरे तीसरे स्थान के विश्व कप प्लेऑफ्स मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। ये फिनिश सन 1966 के बाद से विश्व कप में इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। आपको बता दें कि किलियान एम्बापे ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के इस मैच में फ्रांस के लिए 2 गोल करके विश्व कप कैरियर में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया और कुल 22 गोल तक पहुंच गए। फैसले का दिन आ गया है। जी हाँ, वह महामुकाबला जिसका सबसे बेसब्री से इंतजार था आखिरकार आज होने जा रहा है। आज पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के न्यूजर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम पर टिकी होंगी, जहां फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें आमने सामने होंगी। मैच की शुरुआत मॉरिशस के समयानुसार 11 बजे होगी। इस ड्रीम फाइनल को लेकर मॉरिशस में भी फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह सातवें आसमान पर है। आपको बता दें कि इस फाइनल का कोई भी पल मिस अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो MBC 11, MBC 7 और साथ ही MBC प्ले ऐप पर लाइव देख सकेंगे। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। स्कूलों में अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान होगा और मोबाइल का ध्यान भटकाना कम। जी हाँ, सरकार ने एक नया नियम एजुकेशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है, जिसके तहत स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अब स्कूल के समय के दौरान छात्रों को अपने फोन बंद या संभाल कर रखने होंगे, सिवाय कुछ खास जरूरतों के। कक्षा में ध्यान भटकने, ऑनलाइन बदमाशी यानी कि साइबर बुलिंग को रोकने और स्कूल के माहौल को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य है स्कूलों में अनुशासन बढ़ाना और पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना है। सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज की मदद से ई पासपोर्ट को काम को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत एक सलाहकार इस नई प्रणाली को लागू करने के वास्ते तकनीकी सहायता और क्वालिटी चेकिंग की सुविधा देगा। और विदेशी स्तर पर पश्चिम एशिया में 4 महीनों से ज्यादा समय से जारी भीषण संघर्ष दिन प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। इसी में शनिवार को अमेरिकी सेना ने बताया कि जोर्डन में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमलों का मुकाबला करते हुए उनके 2 और सैनिक मारे गए हैं। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय ऊंचे इलाके पर हल्की सी बारिश होगी। दोपहर को सेंट्रल प्लेटों पर बादलों के घेराव के साथ वर्षा हो सकेगी। रात के दौरान ऊंचे इलाके पर थोड़े से बादल घेराएंगे और रह रहकर बरसात होगी। प्रवाल रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी लगुनों के उस पार, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय लगभग 7:45 बजे, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:48 पर। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 बजे आप विस्तार के साथ प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV.

0: Chillax with Radio Musty.
1: ये मुश्किल तेरा हम मना चाहो चिल्ला है ना, कंबल ना हटाने की इच्छा तो होती है सुबह को, ना सिर्फ सुबह को बल्कि हर रोज। मम्मी पापा नाना नानी उठा उठा के थक जाते हैं, लेकिन जिनको अच्छी नींद आती है सुबह को वो ही जाने इसका सुख। वैसे चिलैक्स के सेकंड आवर में फिर से स्वागत है आपका। इट्स नीलमणी और 8 बजे तक आई एम हियर ऑन योर साइड आरएमटू रेडियो मस्ती पर ही। अभी के लिए आशिकी की गलियों में चलते हैं, अरे आशिकी मूवी का गाना करते हैं आप सभी लोगों के नाम जो कनेक्टेड हो चुके हैं आरएमटू रेडियो मस्ती के साथ।

0: Chillax with Radio Musty. जी हाँ, चिलैक्स शो ऑन गोइंग है. जिन सरप्राइजेस की बात मैं कर रही थी, शुरू हो रहा है आज फ्रॉम 7 AM और दिन भर आप प्रॉफिट कर पाएंगे. लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स दाव पर है. एंड आज रात 10 बजे से वाउचर्स, गोल्ड टिकट्स अभिजीत के शो के लिए, जो कि होने वाला है 25 जुलाई को, बताया तो था. यस, आप पूरा लाभ उठाइए इसका. एंड इसी के साथ आप 6:30 बजे सुन पाएंगे पूरा समाचार. अभी के लिए हेमलता जी ने ज्वाइन इन कर लिया. गुड मॉर्निंग, आप यहीं पर रहना कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ.
1: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

तू आ गया, देखो

0: रविवार 19 जुलाई 2026 फीफा विश्व कप के अंतिम पड़ाव के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शनिवार को मायामी में खेले गए एक रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरे तीसरे स्थान के विश्व कप प्लेऑफ मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। किलियान एम्बापे ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के इस मैच में फ्रांस के लिए 2 गोल करके विश्व कप कैरियर में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया और कुल 22 गोल तक पहुंच गए। आज रात पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम पर टिकी होंगी, जहां फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच खेले जाएंगे और इस खिताबी मुकाबले में स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें होंगी आमने सामने। स्कूलों में अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान होगा और मोबाइल फोन का ध्यान भटकाना कम। सरकार ने एक नया नियम एजुकेशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है, जिसके तहत स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगा दी गई है रोक। कल शनिवार 18 जुलाई से वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 की एक टीम मॉरिशस में है। 21 जुलाई तक ये टीम गूगल स्ट्रीट व्यू प्रोजेक्ट के लिए पहली बार 360 डिग्री की खास तस्वीरें और वीडियो लेने में काम करेगी। और विदेश में पश्चिम एशिया में 4 महीनों से ज्यादा समय से जारी भीषण संघर्ष दिन प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। ऐसे में शनिवार को अमेरिकी सेना ने बताया कि जोर्डन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमलों का मुकाबला करते हुए उनके 2 और सैनिक मारे गए हैं। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फीफा विश्व कप 2026 की खबरों के साथ। शनिवार को मायामी में खेले गए एक रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरे तीसरे स्थान के विश्व कप प्लेऑफ मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। ये फिनिश सन 1966 के बाद से विश्व कप में इंग्लैंड का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, परंतु किलियान एम्बापे ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के इस मैच में फ्रांस के लिए 2 गोल करके विश्व कप कैरियर में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया और कुल 22 गोल तक पहुंच गए। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि फैसले का दिन आ गया है, जी हाँ, ये महामुकाबला जिसका सबसे बेसब्री से इंतजार था आखिरकार आज होने जा रहा है। आज रात पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम पर टिकी होंगी, जहां फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें आमने सामने होंगी। मैच की शुरुआत मॉरिशस के समयानुसार 11 बजे होगी। इस ड्रीम फाइनल को लेकर मॉरिशस में भी फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह 7वें आसमान पर है। मैच शुरू होने में अब कुछ घंटे ही बाकी हैं, बचे हुए हैं। ऐसे में हमने मॉरिशस के लोगों का मूड जानने की कोशिश की। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए और मैच को लेकर अपनी प्रेडिक्शन भी साझा की। उन लोगों को सुनते हैं।
1: Pour ça, match Coupe du Monde entre Espagne et Argentine. Moi, c'est pour un match bien serré. Maintenant, vous avez un match d'après moi pour Rodriguez ou Espagne. Moi, je crois prédiction pour finale là, DN, Espagne gagné.
2: Ouais, une France, on l'a dit, mais malheureusement, l'équipe, une.

0: pour l'Argentine en semi-finale. Et pour la finale, je supporte Espagne. Pour content, Espagne gagne la Coupe du Monde par 2-1.
1: Bon, c'est tout match football Coupe du Monde qui nous jouait. On sait en Argentine qui voulait sa coupe-là.
2: Et tout d'un coup, l'Angleterre perdit, bien sûr, autour de la finale, là, 50-50%, c'est moi, un petit pourcentage pour l'Argentine, du Canadien.
3: Depuis la Coupe du Monde, j'ai commencé à suivre tout match. Je supporte l'Angleterre jusqu'à la semi-finale. Et là, il est éliminé par DN. On est dans un match un peu difficile. Espagne en Argentine. On peut supporter Espagne. Il est capable de remporter par 1-0.
4: और यदि आप इस फाइनल का कोई भी पल मिस नहीं करना चाहते हैं तो एमबीसी 11, एमबीसी 7 और साथ ही एमबीसी प्ले अप पर लाइव देख सकते हैं ये महामुकाबला। क्लब एम के पूर्व खिलाड़ी कोच तथा फुटबॉल के सलाहकार सौजू गावेशंकर ने भी इस फीफा विश्व कप के इस फाइनल मैच पर अपना विचार प्रकट किया, उनको सुनते हैं।
5: वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल अब चलाल बा। ये दुनिया के सबसे बड़ा दिन है। ये सिर्फ एक मैच नहीं हुई, ये इतिहास लिखे जाए। एक तरफ बा स्पेन, जवान खून, लाजवाब पासिंग, डिसिप्लिन और टीम वर्क की मिसाल, और दूसरा तरफ बा अर्जेंटीना, जोश, जुनून, अनुभव और दुनिया के सबसे बड़ा फुटबॉल विरासत के एक नाम लियोनेल मेसी। सबसे बड़ा जंग मिडफील्ड में हुई। जो टीम मिडफील्ड जीत जाए बहुत संभव बाकी वो मैच के भी कंट्रोल कर ले। बोलो की सबके नजर रही लामिन यामाल पर, जवानी के चमक, और सबके आंख रही लियोनेल मेसी पर, उनका आखिरी वर्ल्ड कप हुई। हमारे हिसाब से फाइनल बहुत करीब हुई। हर बॉल के कीमत हुई, हर टैकल के मतलब हुई, हर पास के पीछे एक सपना हुई, और हो सकता बाकी चैंपियन के फैसला एक्स्ट्रा टाइम या पेनाल्टी तक पहुँच जाए। Let's leave a very beautiful final and the best team win.
4: और आज मॉरिशस टापू, खासकर रात के समय, कई जगहों, होटलों, रेस्टोरेंट्स, फुटबॉल केंद्रों, घरों, यहां तक कि शादी के पंडालों और परिवारों के बीच फुटबॉल देखने का एक उत्साह छाया रहेगा। अर्जेंटीना और स्पेन के टी शर्ट पहनकर अलग अलग टीम, फुटबॉल प्रेमी अपनी अपनी टीम का समर्थन करेंगे। समाचार विभाग की ओर से फुटबॉल प्रेमियों को विश्व कप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। स्कूलों में अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान होगा और मोबाइल का ध्यान भटकाना कम। जी हां, सरकार एक नया नियम एजुकेशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है, जिसके तहत स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अब स्कूल के समय के दौरान छात्रों को अपने फोन बंद या फिर संभाल कर रखने होंगे, सिवाय कुछ खास जरूरतों की। कक्षा में ध्यान भटकने, ऑनलाइन बदमाशी यानी कि साइबर बुलिंग को रोकने और स्कूल के माहौल को बेहतर बनाने के वास्ते ये कदम उठाया गया। शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य है स्कूलों में अनुशासन बढ़ाना और पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना। आशी बाचू की रिपोर्ट पर विवरण याचना मिश्रा का।
6: ध्यान भटकाने वाले मोबाइल फोन, साइबर बुलिंग की बढ़ती घटनाएं और छात्रों के बीच कमजोर पड़ते आपसी संबंध, शिक्षा मंत्रालय में ई एजुकेशन के सहायक निदेशक प्रीतम मोहित राम के अनुसार यही वे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से सरकार ने स्कूलों में मोबाइल उपकरणों के इस्तेमाल को विनियमित करने का फैसला किया है। वे बताते हैं, मोबाइल फोन परिसर या कक्षा में वर्जित नहीं, हम इसका प्रयोग कम कर रहे हैं। छात्र पढ़ाई के वक्त वीडियोस करते हैं, सेल्फीज निकालते हैं। कुछ छात्रों को जब घर से मोबाइल नहीं मिलता तो वे उधार लेकर अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहते हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये नियम केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि पूरे स्कूल समुदाय, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी। इस पहल की सफलता काफी हद तक इन सभी पक्षों के बीच सहयोग और समन्वय पर निर्भर है। मंत्रालय संपर्क स्थापित करेगा ताकि सभी इस कदम को सही तरीके से अमल में ला पाएं, लेकिन कुछ एकाध बच्चे हैं जो विरोध करेंगे ही। इसके लिए साफ निर्देश हैं, माता पिता को जानकारी दें। स्कूल और माता पिता के बीच तालमेल

0: सही हो तो हमारे पास एक अच्छा समाधान होगा। इस प्रतिबंध से आगे बढ़ते हुए शिक्षा मंत्रालय मॉरिशस के स्कूलों में एक नई संस्कृति विकसित करना चाहता है जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें कम हो, आपसी संवाद और सहयोग अधिक हो और छात्रों की सफलता के लिए अनुकूल शैक्षिक वातावरण तैयार किया जा सके। सरकार का उद्देश्य है इस कदम से छात्रों के दैनिक स्कूल जीवन में सकारात्मक बदलाव देखना।
1: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि कल शनिवार 18 जुलाई से वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 की एक टीम मॉरिशस में है, 21 जुलाई तक ये टीम गूगल स्ट्रीट व्यू प्रोजेक्ट के लिए पहली बार 360 डिग्री की खास तस्वीरें और वीडियो लेने का काम करेगी। ये इस काम के लिए अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरों से लैस 4 गाड़ियां पूरे द्वीप में घूमेंगी। ये गाड़ियां यहां तक कि सरकारी सड़कों, मुख्य पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक जगहों तथा अन्य खास ठिकानों की तस्वीरें कैमरे में कैद करेंगी। एक बार जब इन तस्वीरों को तैयार करके इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा तो दुनिया भर के लोग गूगल मैप्स और गूगल अर्थ के जरिए घर बैठे ही वर्चुअली मॉरिशस की सड़कों और खूबसूरती को देख सकेंगे। ये कदम देश के डिजिटल बदलाव और मॉरिशस के पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। MTPA के निदेशक बेनवा ओतेया सोमवार को वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 टीम से मुलाकात करेंगे। राजमिला सीतामणि, याचना मिश्रा का विवरण।
2: मॉरिशस
0: आने की तैयारी कर रहे पर्यटकों के लिए ये एक सहायक टूल होगा। हम एक एप्लीकेशन विकसित कर रहे हैं, उम्मीद है कुछ महीनों में हम इसे लॉन्च कर पाएंगे। पर्यटक और मॉरिशन भी जानकारियां हासिल कर पाएंगे, गूगल यू के जरिए अपडेट भी मिलेंगी।
1: सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज की मदद से ई पासपोर्ट के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत एक सलाहकार इस नई प्रणाली को लागू करने के वास्ते तकनीकी सहायता और क्वालिटी चेकिंग की सुविधा देगा। जैसा कि पिछले 19 जून के बजट भाषण में बताया गया था, सरकार सीमाओं के प्रबंधन के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य है सुरक्षा को और मजबूत करना और हवाई अड्डे पर यात्रियों की आवाजाही प्रक्रिया को आसान बनाना। पुलिस विभाग में नियुक्त हुए 368 कर्मचारियों ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। कल यानी कि शनिवार 18 जुलाई को वाकवा के फिलिप ओसान ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में उन कर्मचारियों ने आधिकारिक तौर पर इस पद की शपथ ली है। इनमें 116 महिलाएं और 252 पुरुष शामिल हैं, जिन्हें 3 नवंबर 2025 को भर्ती किया गया था। इस शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने कानून का पालन करने, नागरिकों की रक्षा करने और जनता को सुरक्षा देने का दृढ़ संकल्प लिया है। अपने भाषण में पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुरजवाली ने कहा कि ये नए नियुक्त कर्मचारी पहले ऐसे बैच हैं कि हैं जिन्हें ट्रेनिंग के दौरान ही पुलिस की अलग अलग खास टुकड़ियों में काम देखने का मौका मिला है। इनमें स्पेशल मोबाइल फोर्स, स्पेशल सपोर्ट यूनिट और नेशनल कोस्ट गार्ड शामिल हैं, जिससे वे पुलिस के अलग अलग कामों को अच्छे से समझ सके। पिछले कुछ समय से ये बात सुनने में आ रही है कि मॉरिशस में इस साल सर्दियां देरी से आई हैं। इसका मतलब यह है कि ये सीजन छोटा होगा परंतु ठंड ज्यादा पड़ेगी और इस सब के पीछे एल नीनो का प्रभाव है। ये धारणा लोगों के बीच काफी फैली हुई है, परंतु वाकवा के ऋतु विज्ञान केंद्र की डिविजनल मौसम पूर्वानुमानकर्ता संध्या दीनदयाल के अनुसार ये पूरी तरह से गलत है। शैली निर्बन की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
0: इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सर्दियों की परिस्थितियां वास्तव में मई 2026 के अंत में ही शुरू हुई,

0: लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस बार सर्दी का मौसम छोटा होगा। मौसम विभाग के प्रोविजनिस्ट के अनुसार फिलहाल ऐसा कहने के लिए कोई ठोस आधार नहीं, ये जानकारी संध्या दीनदयाल ने दी। इसलिए इस समय किसी असमान या सर्दी की स्थिति दर्ज नहीं की गई है। वे बताती हैं, मई की शुरुआत में तापमान ज्यादा रहा लेकिन अंत तक आते आते तापमान सामान्य रहा या उससे कम। एंटीसाइक्लोन के समय कम तापमान दर्ज होता है। ट्रांजिशन के दौरान सर्दी गर्मी दोनों का तापमान दर्ज होना आम बात है। जहाँ तक पिछले कुछ हफ्तों में महसूस की गई ठंड की बात है तो ये किसी असाधारण रूप से कड़ाके की ठंड का संकेत नहीं है। इस मौसम में अब तक सबसे कम तापमान वाकवा में 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तापमान अभी भी मॉरिशस के सबसे कम दर्ज किए गए रिकॉर्ड से काफ़ी ऊपर हैं, जो 20 जुलाई 1986 को बेलरीव में 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसीलिए यहाँ भी सामान्य से अधिक सर्दी होने का निष्कर्ष निकालने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। जब एंटीसाइक्लोन मास्करीन्स के दक्षिण में होते हैं तो ठंडी हवाएं बहती हैं, तापमान कम होता है। रात को जब आसमान साफ रहता है और हल्की हवा बहती है खासकर दक्षिण की ओर से, तो तापमान कम हो जाता है। संध्या दीनदयाल के अनुसार एलनीनो का प्रभाव मॉरिशस में तापमान की तुलना में वर्षा पर अधिक पड़ता है। दूसरे शब्दों में ये मौसमी घटना ना तो सर्दी के कथित रूप से देरी से शुरू होने का कारण है और न ही इस मौसम में महसूस की गई ठंड की घटनाओं को इससे जोड़ा जा सकता है।
1: कुछ बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं के पीछे अक्सर ऐसे कारण होते हैं जिन्हें पहचानना और उनका समाधान करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जहां एक तरफ सरकार इन बच्चों के लिए एक विशेष संरचना स्थापित एक विशेष ढांचा स्थापित करने की योजना बना रही है, वहीं इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए एक अनुकूल दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो हर बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों के मूल्यांकन पर आधारित हो। इसमें प्रत्येक बच्चे कि संचार संबंधी कठिनाइयां या अन्य कारक भी शामिल हैं और इस इन समस्याओं को झेलने के लिए सत्यवानी वीरा बुद्रैन इन बच्चों के साथ काम करती हैं। हमारी सहयोगी अंजलि फुलंचल ने उनसे बात की है। विवरण याचना मिश्रा।
2: À peu près 10% des cas rapportés à mon bureau concernent des enfants qui ont des trous.
0: मेरे दफ्तर में दर्ज 10% मामलों का संबंध उन बच्चों से है जिनके बर्ताव में समस्या है। हिंसा, मौखिक या शारीरिक हिंसा, धमकी, भावनात्मक या मानसिक परेशानी, ये वे बच्चे हैं जो उन परिवारों से आते हैं जहां आर्थिक समस्या है, विघटन है, हिंसा है, तनाव है। भावनात्मक मार्गदर्शन का अभाव या तनाव इन बच्चों को प्रभावित करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशलाइज्ड संस्था बहुत जरूरी है जहां इन बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा।
1: विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पश्चिम एशिया में 4 महीनों से ज्यादा समय से जारी भीषण संघर्ष दिन प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। ऐसे में अब शनिवार को अमेरिकी सेना ने बताया कि जोर्डन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला करते हुए उनके 2 और सैनिक मारे गए हैं। इसके साथ ही इस लड़ाई में अब तक जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों की कुल संख्या 16 हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इस ताज़ा हमले के बाद से एक अमेरिकी सैनिक अभी भी लापता है। दक्षिणी नॉर्वे में शुक्रवार को लगी भीषण आग में 100 से अधिक घर जलकर खाक हो गए और सैकड़ों लोगों को इलाका छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। पुलिस ने बताया कि आग शुक्रवार दोपहर को करीब 6:30 स्थानीय समय ड्रामन शहर में एक टाउन हाउस में लगी थी। इसके बाद आग

पूरे इलाके और पास के जंगलों में फैल गई। आग बुझाने वाले कर्मचारी शनिवार सुबह भी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय ऊंचे इलाके पर हल्की सी बारिश होगी। दोपहर को सेंट्रल प्लेटो पर बादलों के घेराव के

दौरान ऊंचे इलाके पर थोड़े से बादल घेराएंगे और रह रहकर बरसात होगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों के उस पार, अतः दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय लगभग 7:45 बजे, जबकि सूर्यास्त 5:48 पर।

चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शनिवार को मायामी में खेले गए एक रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरे तीसरे स्थान के विश्व कप प्लेऑफ मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया, जबकि किलियान एम्बापे ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के इस मैच में फ्रांस के लिए 2 गोल करके विश्व कप कैरियर में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया और कुल 22 गोल तक पहुंच गए। आज रात पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के न्यूजर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम पर टिकी होगी, जहां फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें होंगी आमने सामने। स्कूलों में अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान होगा और मोबाइल का ध्यान भटकाना कम। सरकार ने एक नया नियम एजुकेशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है, जिसके तहत स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगा दी गई है रोक। कल शनिवार 18 जुलाई से वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 की एक टीम मॉरिशस में है। 21 जुलाई तक ये टीम गूगल स्ट्रीट व्यू प्रोजेक्ट के लिए पहली बार 360 डिग्री की खास तस्वीरें और वीडियो लेने का काम करेगी। और विदेश में पश्चिम एशिया में 4 महीनों से ज्यादा समय से जारी भीषण संघर्ष और ज्यादा भयावह। ऐसे में शनिवार को अमरीकी सेना ने बताया कि जोर्डन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमलों का मुकाबला करते हुए उनके 2 और सैनिक मारे गए हैं। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम अपर्णा और कादर को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

आइए शुभ समाचार सुनते हैं। रेलवे रोड काउची मिलितिया में 55 साल के 55 इयर्स ओल्ड के शिव विक्रम सिंह गम दिकल श्री विक्रम सिंह रामदिकल, जिन्हें सब लोग रोशन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर रेलवे रोड काउची मिलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडी मास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM काशीनाथ रोड पुजदी फ्लैक में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के श्री किशन बलरूप, जिन्हें सब लोग किशन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनकी पत्नी श्रीमती बलरूप किरण काजल के घर काशीनाथ रोड पुजदी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेवोंचे की शमशान भूमि

0: जाए जाएगी क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट नून। मोसेलमों डेलिस विल्नुआ मेबर्ग में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की जनाब अब्दुल मुनाफ स्काली जिन्हें सब लोग भाई मुनाफ के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उन्हीं के मकान मोसेलमों डेलिस विल्नुआ मेबर्ग से निकालकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए ए और हेमा मस्जिद विल्नुआ ले जाया जाएगा। फिर दफनाने के लिए पॉइंट ब्रोक्यूस क्रिवेडिक्रियोला का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट हाफ पास 11 AM। प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा कासी त्रियोली में 74 साल के 74 years old के श्री राजनंद रामलोगन जिन्हें सब लोग राजन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे श्री विषय रामलोगन के घर प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा कासे त्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टीएमयूनिस त्रियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट 1 PM। नंबर 212 गिरोजमा गली रोजिल में 212 गिरोजमा गली रोजिल में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड के श्री गणेश सुरजोनुवा जिन्हें सब लोग विनेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके पिताजी श्री महावीर सुरजोनुवा के घर नंबर 212 गिरोजमा गली रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पार्क मां की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट नून। जीना गली स्टैनले में 81 साल की जनाब शेख इदरीस शाह लाल मोहम्मद जिन्हें सब लोग इदरीस लाल मोहम्मद के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे उनके भांजे जनाब शेख अबू अंसारी लाल मोहम्मद के मकान जीना गली स्टैनले से निकालकर दफनाने के लिए सैमौते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट हाफ पास्ट 1 PM। कुंजन गली कंटोरेल में 91 साल की श्रीमती पद्भावती कुंजन पैदाइशी नाम मिहिदीन और जिन्हें सब लोग सबित के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के बारह बजे उनके बेटे श्री प्रदीप कुंजन के घर कुंजन गली कंटोरेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कंटोरेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। और डॉल्फिन लेन शाटो बेनारेस में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड की श्री धर्मदत्त कुचिक जिन्हें सब लोग दागाम के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी अगले मंगलवार 21 जुलाई को दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री उमेश कोचिक के घर डॉल्फिन लेन शाटो बेनारेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रैंड बोआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे 21 जुलाई एट 11 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Chillax with Radio Masti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: कबूतर का तो पता नहीं, लेकिन 7:60 हुए हैं मेक अ विश जल्दी से।
1: चिलैक्स विद रेडियो मस्ती।
0: गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। वैसे गाना सिर्फ सुर आवाज से नहीं बनता, उसके पीछे होती है कंपोजर की सोच, लिरिसिस्ट की कलम, म्यूजिशियंस की मेहनत, साउंड इंजीनियर का जादू और सिंगर के दिल से गई की गई प्रेजेंटेशन। आप सोच रहे होंगे कि भाई नलमनी आज सुबह सुबह इतनी गहराइयों में क्यों जा रही है। वेल, क्योंकि आज है इंटरनेशनल कराओके डे, एंड आज का दिन उन सब लोगों के नाम जो लिरिक्स भूल जाते हैं, सुर कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं लेकिन फिर भी पूरे दिल से गाते हैं। एंड कराओके हमें याद दिलाता है कि म्यूजिक परफेक्ट होने का नहीं, खुशी बांटने का नाम होता है। तो अगर आज मौका मिले, माइक उठाइए, अपना फेवरेट बॉलीवुड गाना लगाइए और दिल खोल कर गाइए, क्योंकि असली सिंगर वही है जो गाते वक्त खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ले आते हैं। कुछ ही देर में गेम शुरू हो रहा है आपके फेवरेट आरएमजे रेडियो मस्ती पर, स्टे ट्यून्ड, क्या पता आप बन जाओ विनर।
2: RM2 Radio Musty. Feel

0: Chillax with Radio Musty.
1: सात बजकर 19 मिनट्स एंड यस मॉर्निंग में गेम लेकर आए हैं फॉर यू। तो अभी आप जीत सकते हो एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा टूर फीचरिंग अभिजीत लाइव इन कंसर्ट जो कि होने वाला है 25 जुलाई यानी कि नेक्स्ट सैटरडे को एट SBICC पाई। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल रखा है, आपको बताना है कि अभिजीत का सरनेम क्या है। यस जवाब में यू हैव टू सेंड अस द सरनेम ऑफ द सिंगर अभिजीत 5499129 पर।

0: Chillax with Radio Musty.
1: हाँ जी, तो गेम का सवाल था कि आपको बताना है सरनेम ऑफ अभिजीत। इजी पीजी सवाल जो कि आप में से सबको पता था, लेकिन लकी ड्रॉ करना पड़ा एंड नाम आया है। किसका नाम आया है? एंड यस, आप है दुर्वेश जी जो कि वाकवा के रहने वाले हैं। कंग्रेचुलेशंस जी, आपको मिला है टिकट टू द गोल्डन 90s एरा टू अभिजीत भट्टाचार्य का। टिकट कलेक्ट करने के लिए वीकडेज पर आपको आना है MBC दोपहर की 3 बजे से पहले। एंड निराश ना होइए जिनकी जीत नहीं हो पाई है। गेम्स होने वाले हैं दिन भर, स्पेशली रात के 10 बजे को वाउचर्स होंगे स्पेशल वर्ल्ड कप शो में, राजस्थान हैंडलूम हाउस, जेन्स लिटिल इंडिया, ग्रैंड बाजार ऑफ इंडिया एंड एक गोल्ड टिकट भी होगा फॉर द कंसर्ट ऑफ अभिजीत। स्टे ट्यून्ड, क्या पता आप बन जाओ द विनर। अभी के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक एंड मिलते हैं थोड़ी ही देर में स्पोर्ट्स न्यूज के साथ।
2: RM2
3: रेडियो मस्ती।
2: Kamla, elle a senti bon coup de toi là. Qui? Tu baignes dans parfum? Tu l'auto aussi baignes dans parfum? Tu sales des bains si baignes dans parfum toi? Tu comique toi deux? Check ça? Sandale à le kick? Et toi l'im sandale 24-7 toi?
4: Celle-là, tu peux en trouver ça. Fait que t'es beau qui celle-là.
2: À le kick gel air fresh no pocket size? Astier, me comprends. Tu mets air fresh non dans ton postement sportou.
4: Vrai même, t'es bien comique, toi. Hein? Allez, essaye tout. Allo Kick, peine ce deuxième sans bosser.
5: Allo Kick, freshness anytime, anywhere.
6: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Saveurs réconfortantes, produits du quotidien et petits plaisirs à partager. Tout vous attend chez Winners. Vivez pleinement la saison avec encore plus de choix et toujours plus d'économies. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet hiver, faites le bon choix.
7: On est tous Winners.
2: RM2
3: Radio Musti.
8: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
9: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: Sales pe débok kout metrik. Depi 17 jusqu'à 31 ziyé, vin profite bal méga promo l'ON Grand Sélection produit pour ou la case. Jusqu'à 50% discount l'eau sanitaire, robinetterie, lavabo et collage. Prix là, flash net. Promo là, extra. Metrik, une enseigne du groupe RMG.
2: RM2
1: Radio Musty.
4: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
2: News.
1: Radio Musty in the mix.
0: 7:30 हुए हैं, चलिए सुनते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट्स आपसे विकास जी। गुड मॉर्निंग।
5: गुड मॉर्निंग नीलमणि।

And a very good morning to all sports fans. FIFA World Cup 2026 विश्व कप 2026 का ऑल टाइम क्लासिक, दो क्लासिक टीमों के बीच जो बड़े ही रोमांचक तरीके से संपन्न हुआ। आज है फाइनल स्पेन और अर्जेंटीना के बीच, लेकिन महाफाइनल तो कल ही खेला गया। इंग्लैंड 6 फ्रांस 4 यानी गोलों की बरसात हुई कल रात, कुल मिलाकर 10 गोल। पिछले 60 सालों में इन 60 years द बेस्ट इंग्लैंड टीम। मैच के दौरान कई रिकॉर्ड बने और टूटे भी। फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड 4 गोलों से आगे, इंग्लैंड 4 फ्रांस 0। फ्रांस को कभी भी इस प्रकार की जिल्लत का सामना करना नहीं पड़ा है, इसीलिए सेकंड हाफ में जीजे देशों ने इक्विप दे फ्रांस की गाड़ी में फर्स्ट क्लास पेट्रोल डाला और गाड़ी चल पड़ी। किंतु बुकायो साका ने एक शानदार हैट्रिक स्कोर की और वो सर जॉर्ज हर्स्ट के बाद इंग्लैंड का केवल दूसरा खिलाड़ी बना है जिसने इंग्लैंड के लिए एक ही मैच में 3 गोल बनाए। जूड बेलिंगम ने भी रिकॉर्ड तोड़ा, उसने कल रात 7 गोल बनाए, ये भी एक रिकॉर्ड है। एक ही एडिशन में इतने गोल बनाने वाला वो इंग्लैंड का पहला खिलाड़ी बन गया है। हार्दिक बधाई जूड बेलिंगम को भी। और किलियान एम्बापे का क्या कहना, ही किल्ड इट अगेन। इस वर्ल्ड कप में 10 गोल, कुल मिलाकर 22 गोल यानी ऑल टाइम टॉप स्कोर बन गया है। पर सबसे पहले इंग्लैंड 6 फ्रांस 4, 10 गोल थ्रिलर जिसका खाता खोला खेल के तीसरे मिनट पर ही डेक्लान राइस ने। फिर बुकायो साका की भूख तब तक नहीं मिटी जब तक उसने 3 गोल न दागे। इंग्लैंड 6 फ्रांस 4, राइस के बाद एनजी कुंसा ने दूसरा गोल स्कोर किया 18वें मिनट पर। बुकायो साका ने बैक टू बैक 2 गोल बनाए 37वें, 37th और 45वें 45th पर। यानी फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड 4-0 से आगे, फ्रांस खल्लास, किंतु सेकंड हाफ में उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। किलियान एम्बापे ने खेल के 48वें यानी सेकंड हाफ की शुरुआत में ही एक पहला गोल कम किया। ब्रैडली बाकुला ने 54वें 54 पर दूसरा गोल बनाया। फिर से किलियान एम्बापे 66वें मिनट पर। और इस प्रकार 4-3 से फिर भी इंग्लैंड आगे, लेकिन 87वें 87 पर बुकायो साका ने अपनी हैट्रिक पूरी की एक पेनाल्टी पर। इंग्लैंड फिर से 2 गोल आगे। तत्पश्चात उस्मान देम्बेले ने इंजुरी टाइम के 96वें 96 मिनट पर भी जाकर फ्रांस का चौथा गोल बनाया। यहां तक स्कोर 5-4, लेकिन 2 मिनट बाद ही 98वें 98 मिनट पर जूड बेलिंगम का जादू चल पड़ा। उसने वर्तमान वर्ल्ड कप में अपना 7वां गोल स्कोर किया और इतिहास रचा। इंग्लैंड 6 फ्रांस 4, इंग्लैंड ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तीसरा स्थान उसकी झोली में। द बेस्ट रिजल्ट सिंस 1966 ट्रॉफी। इंग्लैंड को हार्दिक बधाई जिसने कल फ्रांस को 6-4 से परास्त किया। इस प्रकार ओवर टू यू। मेसी कहना चाहता है किलियान एम्बापे जो कल रात और 2 गोल दागकर वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर बन गया है, यानी 10 गोल और मेसी से 2 गोल आगे, कुल मिलाकर वर्ल्ड कप में 22 गोलों के साथ विद 22 गोल्स एम्बापे ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर बन गया है। और वो केवल 27 साल का है, ओनली 27 year old। ओवर टू यू लियोनेल मेसी। आज रात गोल्डन बूट जीतने के लिए कम से कम 2 गोल बनाने पड़ेंगे लियोनेल मेसी को, वो भी स्पेन के विरुद्ध। समस्या गंभीर है पर हौसला बुलंद है। सो आज का फाइनल कमाल का फाइनल होगा, यमाल का कमाल देखने का मौका मिले ना मिले, लेकिन कल रात तो कमाल हो गया। 10 गोल फ्रांस 4 इंग्लैंड 6। और आज रात 11 बजे वर्ल्ड कप 2026 का ग्रैंड फिनाले महाफाइनल स्पेन और अर्जेंटीना के बीच, लुइस डी ला फोंटे वर्सेस लियोनेल स्कालोनी या स्पेन अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में अपने तेज खूबसूरत और आक्रामक एग्रेसिव खेल से विरोधियों को चौंकाया है। हर पास, हर मूव और हर प्रहार उनके आत्मविश्वास की कहानी कहता है। तो दूसरी ओर अर्जेंटीना ने साबित कर दिया कि बड़े मैचों का दबाव उसे और मजबूत बना देता है। ये कोई इंग्लैंड से जाकर सीखे। ये टीम अर्जेंटीना आखिरी सीटी बजने तक हार मानना जानती ही नहीं, किंतु

0: आज न आंकड़े मायने रखेंगे न पिछली जीतें, मैदान पर सिर्फ साहस जुनून और 90 मिनट का जादू चलेगा। एक गलती सपना तोड़ सकती है जबकि एक गोल पूरी पीढ़ी की यादों में अमर हो जाएगा। आज सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती जाएगी बल्कि इतिहास लिखा जाएगा, दुनिया की सांसें थम जाएंगी, न्यूजर्सी का मेटलाइफ स्टेडियम गूंजेगा और करोड़ों फुटबॉल प्रेमी उसी एक पल का इंतजार करेंगे जब फुटबॉल का नया बादशाह नया सम्राट अपना नया ताज पहनकर दुनिया के सामने खड़ा होगा। इट्स अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, देखिए देखते रहिए और सुनते रहिए लाइव एमबीसी टीवी और एमबीसी प्ले पर। महाफाइनल आज खेला जाएगा आज रात 11 बजे। और इस बीच फुटबॉल में ही ट्रांसफर बाजार हिलने लगा है, डोलने लगा है। चेल्सी फुटबॉल क्लब ने अंततः फाइनली एस्टन विला के मोगन रोजर्स को 117 मिलियन पाउंड में खरीद लिया है। एक एग्रीमेंट इन दोनों के बीच बन पाया है। सो मोगन रोजर्स केवल 23 साल का है, वो अब जाएगा अगले सीजन से चेल्सी में खेलने के लिए। कल सोमवार को मेडिकल पूरा करके वो चेल्सी का खिलाड़ी बन जाएगा। इंग्लैंड की जीत ने शायद ये ट्रांसफर एक्टिवेट किया है, हार्दिक बधाई। फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की बेल्जियन ग्रां प्री आज रेस लगने वाली है और जनरल रैंकिंग में अभी लीडर किमी एंटोनेली अभी तक आगे हैं। कल क्वालिफाइंग में उसी की जीत हुई, सो आज पोल पोजीशन से किमी एंटोनेली ही रेस शुरू करेगा। सेकंड स्थान पर आया मैक्स वेस्टापेन, फिर लैंडो नोरिस, जॉर्ज रसेल केवल चौथे स्थान पर आया है। सो जनरल रैंकिंग में किमी एंटोनेली टॉप पोजीशन पर है 179 पॉइंट्स के साथ, जॉर्ज रसेल 154, लेविस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर है 147 पॉइंट्स के साथ। क्रिकेट में पहला वनडे हारने के बाद टीम इंडिया आज लॉर्ड्स स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ अपना दूसरा एक दिवसीय मैच खेलने उतर रही है। कमर कसकर खेलना पड़ेगा और पराजय की श्रृंखला को विजय में बदलना होगा। स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना आज रात 11 बजे न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम से सीधा आपके टीवी सेट पर। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: धन्यवाद विकाश जी।
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Mega promo code Quality Deco. Tiles 30x30. Mega deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite quartz. Prix cassé, low lavoir. La lumière moderne, prix

0: Tracks with Radio Masti.
1: दोस्तों आज इंटरनेशनल कराओके डे पर बस इतना ही कहना चाहूंगी कि माइक पकड़ने के लिए परफेक्ट सिंगर बनना जरूरी नहीं है, बस दिल से गाना जरूरी है, क्योंकि जब म्यूजिक बजता है तो हर दिल अपनी एक अलग कहानी गाता है। आज घर पर या फिर दोस्तों के साथ या फिर कार के सफर में अपना फेवरेट गाना जरूर गाइएगा, या फिर आरएमजी रेडियो मस्ती के साथ स्टे कनेक्टेड। सुर थोड़े इधर उधर हो जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, खुशी हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए। तो मैंने मनी आपसे यही पर इजाजत लेती हूँ, मिलेंगे कल फिर से सुबह को। टिल देन कीप एंजॉयिंग योर लाइफ लाइक कराओके, फुल वॉल्यूम में जीते रहिए।
0: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

कोई के नमस्ते और आदाब। फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुना जा। काल सामदी के मायामी में खेलल गल एगो रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरल तीसरका स्थान के विश्व कप 2026 प्लेऑफ मुकाबला में इंग्लैंड ने फ्रांस के 6-4 से हरा दिलक। ये फिनिश सन 1966 के बाद से विश्व कप में इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहल। तो दूसर देने में किलियान एम्बापे इंग्लैंड के खिलाफ तीसरका स्थान

0: ई मैच में फ्रांस खातिर दो गोल करके विश्व अपन विश्व कप कैरियर में सबसे जस्ती गोल करे के मामले में लियोनेल मेसी के पाछे छोड़ देलक और कुल 22 मने एक कोरी दो गोल ले पहुंच गल। फैसला के ई दिन आगल बाते ई महा मुकाबला जेकर सबसे बेसब्री से इंतजार रहल। आखिरकार ऊ दिन आगल बाते। जी हाँ, आज रात भरती दुनिया के नजर अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम पर टिकल रही, जहां फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल मैच खेलल जाए। एक खिताबी मुकाबला में स्पेन और अर्जेंटीना की टीम आमने सामने रही। मैच के समयानुसार 11 बजे हुई और ई ड्रीम फाइनल के लेके मॉरिशस में भी फुटबॉल प्रेमी के उत्साह 7वां आसमान पर रही। ये फाइनल MBC 11, MBC 7 और MBC प्ले ऐप पर एकर सीधा प्रसारण हुई। स्कूल में अब पढ़ाई पर जस्ती ध्यान हुई और मोबाइल के ध्यान भटकावे के कमती रही। सरकार एगो नियम एजुकेशन रेगुलेशन 2026 लागू करलन, जेकर तहत स्कूल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा देवल गल। अब स्कूल के बखत के दौरान छात्र अपन फोन बंद या फिर संभाल करके रखे के चाही। कक्षा में ध्यान भटकावे ऑनलाइन बदमाशी माने साइबर बुलिंग के रोके के और स्कूल के माहौल के आर जस्ती बेहतर बनावे खातिर ई कदम उठावल गल। शिक्षा मंत्रालय के उद्देश्य है स्कूल में अनुशासन बढ़ावे के और पढ़ाई खातिर एगो निमन माहौल तैयार करे के। दूसर देश में जी हाँ, पश्चिम एशिया में 4 महीना से जस्ती जारी भीषण संघर्ष दिन ब दिन आर जस्ती भयावह होते जाता। ऐसा देने में सामदी के अमरीकी सेना ई बतैलन कि जॉर्डन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमला के मुकाबला करके उनकर दो और सैनिक मारल गल। एकर संगे संगे ई लड़ाई में अबले जान गवाए होला अमरीकी सैनिक के कुल संख्या 16 हो गल बाती। तैकरवे संगे हमनी के भोजपुरी समाचार समाभल। ध्यान देवे खातिर धन्यवाद। नमस्ते और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: Your weather forecast on RM2.
5: Radio Musti.
0: आम हालत हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय ऊंचे इलाके पर हल्की सी बारिश होगी। दोपहर को सेंट्रल प्लेटों पर बादलों के घेराव के साथ वर्षा हो सकेगी। रात के दौरान ऊंचे इलाके पर थोड़े से बादल घेराएंगे और रह रह कर बरसात होगी। प्रवाल रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी लगुनों के उस पार। अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय लगभग 7:45 बजे जबकि सूर्यास्त शाम के 5:48 पर।
4: Your weather forecast on RM2.
5: Radio Musti.
6: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Saveurs réconfortantes, produits du quotidien et petits plaisirs à partager. Tout vous attend chez Winners. Vivez pleinement la saison avec encore plus de choix et toujours plus d'économies. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet hiver, faites le bon choix.
7: On est tous Winners.

एक लड़की बेकरार है, रूठे बार बार है, झूठा गुस्सा सच्चा प्यार है। अब आगे क्या कहूं, आज सोमवार है। Come on, Isha.

0: US तड़का
1: RM2
2: मस्त है और मामला एकदम जबरदस्त है फॉर दिस संडे मॉर्निंग ब्राइट सनी मॉर्निंग यहाँ पर हर सुबह जो एक नया अवसर लेकर आता है सो मुस्कुराइए और देखिए एक नया दिन शुरू हो गया है जस्ट राइज एंड शाइन ब्यूटिफुल योर्स ये है आप लोगों का वीकेंड वाला शो टाइमलेस सतर का स्पेशल थैंक यू टू यू नील मनीष वी हियर फॉर आज का चिलैक्स और ऐसे वेकअप कॉल को पाकर अब रेडी हो जाइए टू गेट सम मोर ऑफ एनर्जी वैसे वीकेंड टाइम है और काफ़ी लेजी फील है ये तो हमें पता है कोई बात नहीं म्यूजिक को इसके हिसाब से हम लेकर आएंगे टू विश अ ग्रेट मॉर्निंग अ ग्रेट संडे और इस मुलाकात को सजाने के लिए आ गई है आप लोगों के साथ हंसनी जो जुड़ गई है आई बी विद यू आज मुलाकात तो होने वाली है कब से यहाँ पर 11 बजे तक या 8 बजे से 11 बजे तक करेक्ट तो यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो जाइए टू बी पार्ट ऑफ टाइमलेस तड़का प्यार होने वाला है जिंदगी को भरपूर से हम जिएंगे क्योंकि रब का शुक्राना कि उन्हीं की मेहरबानी से और एक नया दिन शुरू हो गया है एंड रियली होप कि सुबह से सब कुछ अच्छा ही जा रहा है आप लोगों के लिए सो विल बी ब्रिंगिंग सम पॉजिटिव वाइब्स ऑल अराउंड लॉट्स ऑफ गुड हैप्पीनेस लॉट्स ऑफ गुड एनर्जी जहां पर भी साथ आप दे रहे हो ऑलरेडी वेलकम ऑन रेडियो मस्ती सो हमने सोचा है लेट अस बी पार्ट ऑफ दर्शकों को लेकिन इससे पहले एक और गाना आएगा गाने से पहले यहाँ पर आप लोगों से इशारा हम जरूर करना चाहेंगे टू बी पार्ट ऑफ टाइम विस्तर का जो भी कुछ बात है टू सेलिब्रेट योर डे टू सेलिब्रेट योर वीकेंड आई विल बी वेटिंग कुछ बातें आप कर लीजिए हमारे साथ अच्छा लगेगा ऑन 5499-1294 फॉर योर मैसेजेस एंड योर डेडिकेशंस तो यहाँ पर और एक गाना हो जाए इसके बाद हम सजाने वाले हैं आज दर्शकों को विल बी गेटिंग रेडी फॉर द गेम सो आप अभी जीतना चाहेंगे यू वॉन्ट टू बी पार्ट अभिजीत के कंसर्ट में जाना चाहेंगे अगर आंसर इज यस तो यहाँ पर सुनते रहिए कीप बीइंग कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती अभी और एक गाना हो जाए इसके बाद विल बी हैविंग दर्शकों को
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
0: टाइमलेस तड़का

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: Once again, a warm welcome to everyone. यहाँ पे enjoy the Sunday morning time, enjoy weekend. और इशारा तो था यहाँ पर दर्शकों को का गेम जो यहाँ पर सेट हम करने वाले हैं. So just get ready. अगर आपको जाना है the big concert जो होने वाला है next Saturday को with Abhijit Da. So play with MBC और जीतने के चांस यहाँ पर आपको दे रही है to win one ticket for the Golden 90s era tour featuring Abhijit Bhattacharya. वो जो लाइव आने वाली है इन मॉरिशस, उनके लाइव कंसर्ट जो होगा नेक्स्ट सैटरडे 25 ऑफ जुलाई को शुरू होगा फ्रॉम 7:30 PM लाइव एट SBICC पर. तो यहाँ पर जरूर हम कहेंगे टू स्टेप इनटू अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड जहाँ पर यादें होने वाली है फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड रिलीव द अनफॉरगेटेबल आवाज द डिफाइन बॉलीवुड का गोल्डन एरा. So आपको आना है टू एंजॉय एन इवनिंग ऑफ टाइमलेस मेलोडीज, लेजेंडरी हिट्स एंड प्योर म्यूजिकल मैजिक. ये तो होने वाला है वो द वन एंड ओनली अभिजीत दा. और जो टिकट्स है स्टार्ट एट 850 रुपीस एंड अवेलेबल एट muticket.mu एंड रेजो उतायो. So यही रिक्वेस्ट है जी, नॉट टू मिस दिस अनफॉरगेटेबल कंसर्ट एक्सपीरियंस. एंड फॉर रिजर्वेशंस यू कैन कॉल ऑन द हॉटलाइन 466-9999. यहाँ पे जो डिटेल्स है बस हमने आपको बता दिया है सब. अब बारी है फॉर अ सिंपल क्वेश्चन. आज तो वीकेंड है, थोड़ा सा आसान रखेंगे टू मेक इट मोर इजी, राइट. सो हम सनी के साथ आप जुड़ जाइए फॉर दर्शकों को विद ऑल द टीम. यहाँ पे क्वेश्चन टाइम. जो गाना नेक्स्ट हमने पसंद किया है आई होप यू विल एंजॉय. हाँ, एंजॉय करेंगे यकीनन. तो गाने को सुनकर आपको बताना है मूवी

का नाम और साथ में जो एक्टर और एक्ट्रेस नजर आए थे वे भी आपको बताना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू गिव मी थ्री राइट आंसर्स. फर्स्ट जो टाइटल ऑफ द मूवी है और दूसरी जो चीज होने वाली है दैट विल बी अबाउट द एक्टर एंड एक्ट्रेस, उन दोनों के नाम आपको पहचाना पड़ेगा. राइट, सिंपल ना. तो यहाँ पर ध्यान आपको रखना है टू आर योर नेम एड्रेस, ये सब डिटेल्स आप ढंग से लिखे इन योर मैसेजेस ऑन 5491294 ताकि आप इन हो जाए फॉर द लकी जो जो होने वाला है आफ्टर द गेम. तो चलिए हमारे पूरे टीम की तरफ से गुड लक एंड एंजॉय द गाना जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे आप सब के लिए.

सो वेलकम बैक. दैट वाज अ गेम, दैट वाज क्वेश्चन. और सवाल के लिए जवाब तो ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए इतने सारे गुड आंसर्स हमारे पास आए. सो थैंक यू वेरी मच टू बी पार्ट ऑफ दर्शकों को. एंड दैट वाज वेरी फन, वेरी इजी. और कई फैन फॉलोअर्स हैं उन सभी एक्टर और एक्ट्रेस के लिए. एंड वी हैव इट फॉर सलमान खान एंड द ब्यूटिफुल करिश्मा कपूर. और मूवी का नाम दैट वाज चल मेरे भाई. और कई सही जवाब मिले हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, जो हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है. और यहाँ पर लेट्स गो एंड चेक आउट किसकी जीत हो गई है.

सुपर ग्रंच म्यूजिक की तरह एनर्जी बहुत ही फुल है, हाई लेवल पे है. एंड टाइम फॉर मी टू अनाउंस द विनर्स नेम, और वो तो लालमाची की रहने वाली है. नाम है उतिमा, उतिमा गोपी. मैंने मेरी कंग्रेचुलेशन टू यू उतिमा जी, आपकी जीत हो गई है. वाओ क्या बात है. आप जा रही हो द कंसर्ट ऑफ अभिजीत दा जो होने वाला है नेक्स्ट शनिवार को, यानी कि 25th ऑफ जुलाई को. ये तो होने वाला है शुरू आज फ्रॉम 7:30 PM एट SVICC. अगर आप 90s के बहुत बड़े फन होना, सो दैट विल बी अ डिलाइटफुल जर्नी अभिजीत दा के साथ, जहाँ पर वो मौजूद होने वाले हैं वो द टाइमलेस मेलोडीज कुछ लेजेंडरी हिट्स के साथ. एंड ये तो कन्फर्म बात है कि दैट विल बी प्योरली इन द म्यूजिकल मैजिक. सो आपका जो टिकट है बिल्कुल अवेलेबल है आप DMBC, बस आपको आना है विद योर आईडी कार्ड उतिमा. सो उतिमा के लिए वी हैव गॉट स्पेशल विशेस फ्रॉम ऑल आवर टीम. आईडी कार्ड के साथ आइए MBC, डू कलेक्ट योर टिकट, और बस आपको जाना है. विल बी मीटिंग फॉर द कंसर्ट ऑफ अभिजीत दा. सो चलिए यहाँ पर मौका है, ये जो चांस है आपको देते रहते हैं रेडियो मस्ती, इसी की वजह से हम आपको कहते रहते हैं ऑल टाइम कीप लिसनिंग, स्टे वेल कनेक्टेड.

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: तो इस स्पेशल नाइटीज ऑन रेडियो मस्ती फॉर आज का टाइमलेस सितर का घर अभी आपने सुनना शुरू किया है. मे बी आज काफी लेट वेकअप कॉल रहा, कोई बात नहीं, चलता है जी. इट्स वीकेंड, इट्स संडे और आज थोड़ा सा ज्यादा आराम होता है. सो आपका दिन खुशियां, सफलता और मुस्कान से भरा रहे, यही हमारी गुड विशेस है. क्योंकि हमारा ये मानना है कि एवरी राइज जो होता है ना, नई उम्मीदें लेकर आई है. और बस वी स्टे पॉजिटिव, जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा. एंड वी डू बिलीव कि जिंदगी जो है एक किताब की तरह होता है, हर दिन एक चैप्टर की तरह बस होता है. और ये तो हम पर डिपेंड करता है कि हम पढ़ने को ऐसे छोड़ेंगे या फिर हम पढ़ने को थोड़ा सा पलट देंगे. सो ये तो सब आपके हाथों में है, आप क्या करना चाहेंगे. लेकिन वी आर हियर टू मेक इट पॉजिटिव, टू मेक इट अ हैप्पी डे आप लोगों के लिए जहां पर भी साथ जारी है. इट्स अ प्लेजर टू वेलकम एवरीवन. यहां पर है अंसनी जो आपके साथ है. चलिए आपके कुछ मैसेजेस हो जाए. गुड मॉर्निंग टू यू ऋषि विदेशी, कैसे हो, रेडी हो कि सर ठीक है. विशिंग ऑल द इंग्लिश फैंस अ जॉली गुड फ्यूचर. और अगला जो टकरा मैच आने वाला है फॉर द गोल्डन लायन जो है द वन एंड ओनली लियोनेल मेसी, तो उनके लिए लॉट्स ऑफ गुड विशेस आप लेकर आए हैं. फॉर योर मूडी गर्लफ्रेंड जो बॉम्बे से है, एंड आपकी अच्छी सी सहेली जो बर्थडे गर्ल बनने वाली है 22nd ऑफ जुलाई को, एंड फॉर ऑल द अर्ली राइजर्स थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर गुड फीलिंग्स. तो ऋषि जी आपके लिए जरूर एक गाना हो जाए. हाँ बिल्कुल. उसके बाद हम बियारी एंड मंगाड़ू परिवार का वेलकम करना चाहेंगे. ये है मैसेज कमिंग फ्रॉम ज्ञान बियारी. नमस्ते टू एवरीवन, हैप्पी संडे हंसनी, थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू. आज कजिन इंद्रानी मंगाड़ू सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, सो लॉट्स ऑफ हैप्पी विशेस टू यू इंद्रानी जी. गॉड ब्लेस यू फ्रॉम ज्ञान, फ्रॉम सबिता, फ्रॉम रवीना, नेहा, कविश, योवेश और सभी परिवार जो यहाँ पर शामिल हो गई है, एकदम मस्त जबरदस्त हो गए. टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. सो मिलकर हम धूमधाम से मनाएंगे. जितने भी हमारे परिवार, हमारे फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल लोग आज अपना स्पेशल डेट मना रहे हैं, चलिए हम सनी और पूरे टीम आए हैं टू विश यू हैप्पी बर्थडे.

0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.
2: रेडियो मिस्टी पर इट्स आवर टाइमलेस सितारका ब्रिंगिंग सम ग्रेट गाने आप लोगों के लिए फॉर दिस लवली वीकेंड. चलिए इसके साथ हम बढ़ेंगे 8:09 के समाचारों की ओर और इसके बाद बिल्कुल हंसनी के साथ मुलाकात तो दोबारा होने वाली है इन द सेकंड आवर ऑफ द शो. सो कुछ कहना चाहेंगे, मे बी स्पेंडिंग द डे विद लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. सो विल बी वेटिंग, आपकी का इंतजार हम करने वाले हैं ऑन 5499124.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Very good morning, everyone. I check your time. It's subah ke theek 9 baje hai. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी के साथ. आपको नमस्कार. अभी
4: नमस्कार. हंसीनी श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. शनिवार को मायामी में खेले गए एक रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरे तीसरे स्थान के विश्व कप प्लेऑफ मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया. ये फिनिश सन 1966 के बाद से विश्व कप में इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. पहले हाफ में डिक्लान राइस और एज़री कुंजा ने गोल किए, जिसके बाद बुकायो साका ने तेजी से दो गोल दागे और मैच खत्म होने से 3 मिनट पहले पेनाल्टी स्पॉट में से अपना गोल पूरा करते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की. हाफ टाइम के बाद खेल दोबारा शुरू होने पर फ्रांस ने वापसी की. किलियान एम्बापे के दो गोलों ने उन्हें इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बना दिया, जबकि ब्रैडली बकुला ने एक और गोल करके इसको को 4-3 कर लिया. हालांकि इसके बाद फ्रांस ने एक पेनाल्टी दे दी, जिसे साका ने गोल में

0: बदल दिया। किलियान एम्बापे ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के इस मैच में फ्रांस के लिए 2 गोल करके विश्व कप अपने विश्व कप कैरियर में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी को पीछा छोड़ दिया और कुल 22 गोल तक पहुंच गए। फैसले का दिन आ गया है, वह महामुकाबला जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार आज होने जा रहा है। आज पूरी रात पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के न्यूजर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम पर टिकी होगी, जहां फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें आमने सामने होंगी। मैच की शुरुआत मॉरिशस के समयानुसार 11 बजे होगी। इस ड्रीम फाइनल को लेकर मॉरिशस में भी फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह 7वें स्थान पर है। यदि आप इस फाइनल को के का कोई भी पल मिस नहीं करना चाहते हैं तो एमबीसी 11, एमबीसी 7 और साथ ही एमबीसी प्ले ऐप पर लाइव देख सकते हैं। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। पुलिस विभाग में नियुक्त हुए नए 368 कर्मचारियों ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। कल यानी कि शनिवार 18 जुलाई को वाकुआ के फिलिप ओसान ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में उन कर्मचारियों ने आधुनिक आधिकारिक तौर पर पद की शपथ ली। इनमें 116 महिलाएं और 252 पुरुष शामिल हैं, जिन्हें 3 नवंबर 2025 को भर्ती किया गया था। इस शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने कानून का पालन करने, नागरिकों की रक्षा करने और जनता को सुरक्षा देने का दृढ़ संकल्प लिया। अपने भाषण में पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुरजबाली ने कहा कि ये नए नियुक्त कर्मचारी पहले ऐसे बैच के हैं जिन्हें ट्रेनिंग के दौरान पुलिस की अलग अलग खास टुकड़ियों में काम देखने का मौका मिला। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि दक्षिणी नॉर्वे में शुक्रवार को लगी भीषण आग में 100 से अधिक घर जलकर खाक हो गए और सैकड़ों लोगों को इलाका छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। पुलिस ने बताया कि आग शुक्रवार दोपहर करीब 3:25 ड्रामेन शहर के एक टाउन हाउस में लगी थी। इसके बाद आग पूरे इलाके और पास के जंगलों में फैल गई। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: रेलवे रोड कौची मिलितिया में, रेलवे रोड कौची मिलितिया में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री विक्रम सिंह रामदिकल, जिन्हें सब लोग रोशन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर रेलवे रोड कौची मिलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन काउंडे मास्क का श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रोमेशन टूडे 11 AM। रोबिनसन रोड क्यूपिप में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनमती रामचरिता, जिन्हें सब लोग सुशील के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के सवा ग्यारह बजे उनके बेटे श्री मोनो विक्रम रामचरिता के घर रोबिनसन रोड क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीगारा की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:15 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
2: RM2 Radio Musti. Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions amongst others, TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is

0: the 31st of July 2026.
1: Timeless Tadka.
2: RM2.
1: Timeless Tadka.

0: US Tadka.
1: RM2.
2: वेलकम अगेन ऑन रेडियो मस्ती. यहाँ पर टाइमलेस तड़का का ये शो चल रहा है सुबह से. वेली होप कि ये सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सुबह से सब कुछ अच्छा ही जा रहा है. एंजॉयिंग योर मॉर्निंग चाय, ब्रेकफास्ट भी लिया जा रहा है. सो वेरी नाइस, लगे रहो जी मस्त गानों के साथ. यहाँ पर आपको एंटरटेन जरूर हम करते रहेंगे. वैसे खुश रहना एक आदत है और हर सुबह उस आदत को अपनाने का नया मौका जो आपको मिला है. बीता हुआ कल बदल तो नहीं सकता ना, लेकिन आज जो आया है, आज का दिन जो हमको मिला है, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाना ये तो हमारे हाथों में है. लेट्स मेक इट बेहतर कल, क्योंकि हमारे पास आज है. वी हैव गॉट दिस प्रेजेंट, देखिए जो गिफ्ट ऑफ गॉड हमको मिला है इसे क्यों नज़रअंदाज करें. जिन घड़ियों में हम हंसेंगे, खुश रहेंगे, अपनों के साथ प्रेशियस टाइम बिताएंगे, उन घड़ियों को क्यों आज बर्बाद हम करेंगे. विल मेक द मोस्ट. इधर दिन आया है, एक नया दिन, इट्स वीकेंड. और वीकेंड तो बस फैमिली टाइम को हम बस आगे बढ़ाते हैं. सो व्हाट्स द प्लान, आपने क्या सोचा है आज क्या करेंगे? थोड़ा सा घूमना हो जाएगा, मे बी फॉर एन आउटिंग या फिर सिनेमा, मे बी फॉर सम नेचर साइटसीइंग, सी साइड, या फिर आपने सोचा है घर पर रहेंगे. हाँ, तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा. घर की साफ सफाई, गाड़ी की साफ सफाई, ये भी तो चलता है. इट्स लाइक संडे वाला काम काज जो हमें इतनी सारी खुशियाँ दे जाती हैं. सो यू बीइंग इन द किचन राइट नाउ, कुछ आप बना रहे हो आज ब्रेकफास्ट. सो विश यू बन अपेटी, एंजॉय द टाइम, एंजॉय द मॉर्निंग शो. और मॉर्निंग का जो टाइम होता है बहुत ही स्पेशल होता है. यहाँ पे इट ब्रिंग्स द फ्रेशनेस, ताजगी वो लेकर आती है हर एक सुबह को. और ये जो मॉर्निंग हवाएं हैं आप तक ज़रूर हम पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं. वी आर रेडियो मस्ती. थैंक यू फॉर लिसनिंग, अप्रिशिएटिंग आज का टाइमलेस तड़का. यहाँ पर है हंसनी जो आपके साथ है एंड वेटिंग. हाँ, इंतज़ार ही तो होता है आप लोगों के मैसेजेस के, इतना सारा प्यार जो आप भेजते हो ना, इसलिए. सो विल बी वेटिंग फॉर सम हैप्पी मैसेजेस ऑन 5499-1294. अगर गम भी है तो कोई बात नहीं, कहते हैं गम बांटने से कम हो जाता है. सो एनी हाउ यहाँ पर कनेक्शन है, इट्स ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो मस्ती.
0: टाइमलेस तड़का.
1: RM2.
0: टाइमलेस तड़का.

वेलकम इन टर्मलेस तरका. अभी टाइम हो चला है फॉर सम मैसेजेस प्यार से, जहां पर आपने कुछ लिखा है हम सब के लिए. We have it from Rinesha. Hi, welcome in the show. Namaste to everyone. Good morning. Ke dhar sare good wishes to Rangawa families. And wishing my darling hubby Sandesh a very happy birthday. Lots of good wishes unke liye. And वो तो 90s के बहुत बड़े फैन है, so I guess एक 90s हो जाएगा तो उनके लिए बस उनका जन्मदिन और भी स्पेशल हो जाएगा. Why not? अगर यही है ख्वाहिश तो उनके लिए ज़रूर एक खास 90s हो जाएगा. Next one, happy वाला birthday coming from all the team and from all your dear ones. So thank you for the message. नमस्ते टू ऑल रेडियो मस्ती टीम एंड MBC टीम. आप हो सूरज फ्रॉम लालमाची. आपका वेलकम है सूरज जी. जिंदगी प्यार का गीत है सभी परिवारों के लिए, ये तो हम चलाने की कोशिश करेंगे. अदरवाइज जो कमिंग गाना है वो बेशक आपके लिए. राजकुमारी चिरकुत जो आई थी फ्रॉम इलो, यहाँ पर पार्टिसिपेट कर गई थी इन अवर गेम, लेकिन लेडी लक तो किसी और का साथ दे गई. कोई बात नहीं, और चांसेस आपको मिलेंगे ऑन रेडियो मस्ती, इसी की वजह से आपको

आपको सुनना पड़ेगा कि लिसनिंग हुए टू मस्ती शो। और यहाँ पर है दिव्यानी फ्रॉम ब्राजील। हेलो जी, आप कैसी हो? रियली होप कि सब ठीक ठाक, एंजॉयिंग द शो। और काम काज शुरू हो गया है, घर की साफ सफाई हो रही है, तो इसी में एक गाना प्लीज मेरे लिए हो जाए। ऑफकोर्स हो जाएगा नेक्स्ट वन आपके लिए। और यहाँ पर चलेंगे ब्राजील ही, जहाँ पर साधना जी का साथ है। हेलो जी, प्रणाम टू यू एंड वेलकम इन द शो। रियली होप कि सब ठीक है एंड गेटिंग रेडी फॉर द पूजा। ऑफकोर्स हम मिलेंगे वहाँ पर, रियली होप सो। तो साधना जी के लिए और पूरे राम तोहल परिवार के लिए एक गाना तो बनता है ना। यस, चलाएंगे एकदम मस्त वाला गाना टू मेक इट मोर स्पेशल फन एंड जितने भी हमारे परिवार जुड़े हुए हैं इस समय, टू मेक इट हैप्पी वीकेंड एंड टू सेलिब्रेट 19th of July, संडे का दिन, वीकेंड। यहाँ पर एकदम स्पेशल विशेष हम लेकर आए हैं टू द लवली पूनम मुगन। हे पूनम, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर, विश यू लॉट्स ऑफ गुड विशेस। और यहाँ पर ढेर सारी बधाइयाँ लेकर आए हैं आपके पति मनीष, आपकी बेटी है परिष्टुति, आपकी मामा संगीता, साथ में है बहन रीता, आशना, जानवी, वी हैव आल्सो हांस, अशील, आदर्श, निधीश, व्योमिनी, यजूर और we have all Lukhan and Mugan परिवार। साथ में है उदय फैमिली एंड अभी जो आपके प्यारे से भैया है, और भाभी जी की तरफ से भी लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू यू पूनम, हैव अ ग्रेट वन। आप के लिए हम लेकर आए हैं ओनली द बेस्ट विशेस। हमेशा आप यूं ही खेलते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते आप हमेशा रहें, यही हमारे प्यारे से शुभकामनाएं हैं। सो चलिए, हम सुनी आई है टू विश यू अ वेरी हैप्पी वाला बर्थडे। वैसे सिर्फ विश नहीं करेंगे, गाएंगे भी आपके लिए हैप्पी वाला बर्थडे।

Radio Musti. Radio Musti पर it's our timeless तरका bringing some evergreen, some happy वाले गाने जो बिल्कुल आपको खुश रखेंगे. We are here to kickstart your weekend. Of course, with lots of love, positivity, दिल में प्यार रखते हुए हम इस शो को आगे बढ़ा रहे हैं. We have RJ Hansari जो आपके साथ है up till 11 a.m. Join us और इस musical journey को और भी यादगार बना लीजिए. हम बढ़ेंगे नोवेल फॉन्स की ओर जहाँ पर रेडियो मस्ती इज ऑन लाउड वॉल्यूम और जाएंगे रिसोल परिवार के यहाँ. बिग हेलो टू एवरीवन, विश यू अ ग्रेट मॉर्निंग. कैसी हो बबीता जी? रियली होप कि सब ठीक है. सो यहाँ पर गाना तो बनता है फॉर यू और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू कालिदास रिसोल एंड वी हैव गॉट द बेस्ट विशेस उनके लिए. हमेशा वो अच्छे स्वास्थ्य में रहे, हमेशा वो खुश रहे एंड जो है पीस एंड हार्मनी वो घर में रहे, जिंदगी में रहे, यही हमारी दुआएं हैं. और यहाँ पे विशेष कमिंग आपकी तरफ से प्यारी पत्नी जी मालिनी और साथ में है यवेश वर्षिनी और पूरे

right, keep listening to Radio Masti. यहाँ पर Timeless तड़का को सजाती हुई हंसनी आपके साथ अब till 11 AM. Really hope you're enjoying the song collections जो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए. And खुशियों से भरपूर ये दिन जो आया है और कई लोग तो बंधन के रेडी हो रही हैं शादियों में जाने के लिए. सो लेट अस बी टुगेदर टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल डे. और जितने भी लोग शादी कर रहे हैं इस वीकेंड को, सो हमारी बहुत सारी बधाइयाँ हैं उन सभी जोड़ियों को. हमेशा वो सलामत रहें, एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो बस उनको बस कायम रखें, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ. गॉड ब्लेस द कपल. और बेशक खुशियों में शामिल होने के लिए रेडियो मस्ती ढूंढ लेता है वो बहाना. तमिल तड़का में आपका वेलकम. और ये जो गाना चल रहा है ना, इसी के साथ हम बढ़ेंगे ठीक 10 बजे के समाचारों की ओर. इसके बाद मिलेंगे, कुछ और बातें शेयर करेंगे. राइट, स्टे वेल ट्यून्ड.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: So the time din ke 10 baj chuke hain. ये संध्या है संक्षिप्त समाचार अभी के साथ आपको नमस्कार अभी
6: नमस्कार हंसिनी श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है स्कूलों में अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान होगा और मोबाइल का ध्यान भटकाना कम जी हां सरकार ने एक नया नियम एजुकेशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है जिसके तहत स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य है स्कूलों में शासन बढ़ाना और पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना है सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज की मदद से ई पासपोर्ट के काम को आगे बढ़ाया जाएगा दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत एक सलाहकार इस नई प्रणाली को लागू करने के वास्ते तकनीकी सहायता और क्वालिटी चेकिंग की सुविधा देगा कल शनिवार 18 जुलाई से वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 की एक टीम मॉरिशस में है 21 जुलाई तक ये टीम गूगल स्ट्रीट व्यू प्रोजेक्ट के लिए पहली बार 360 डिग्री की खास तस्वीरें और वीडियो लेने का काम करेगी इस काम के लिए अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरों से लैस चार गाड़ियां पूरे द्वीप

0: में घूमेंगी। ये गाड़ियां यहाँ की सरकारी सड़कों, मुख्य पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक जगहों तथा अन्य खास ठिकानों की तस्वीरें कैमरे में कैद करेंगी। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क आने से पहले नया विवाद खड़ा हो गया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि वे नेतन्याहू की गिरफ्तारी के विकल्पों पर कानूनी सलाहकारों से बात कर रहे हैं। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: Kashinath Road पुजदी फ्लैक में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के श्री किशन बलरूप जिन्हें सब लोग किशन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनकी पत्नी श्रीमती बलरूप किरण काजल के घर काशीनाथ रोड पुजदी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट नून। मोसलमान देलिस विल्नो मेबर्ग में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल मुनाफ इस्काली जिन्हें सब लोग भाई मुनाफ के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गए है। उनका जनाजा आज दिन के 11:30 बजे उन्हीं के मकान मुसलमान दिलिस विल्नो मेबर्ग से निकालकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए विल्नो स्थित एरा राहमा की मस्जिद ले जाई जाएगी। फिर दफनाने के लिए पॉइंट भोक्यूस रिवेदिक्रेल का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट हाफ पास्ट 11 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: RM2 Radio Musti.
3: Timeless Tarka.
2: RM2
3: Timeless Tarka.

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: डॉक्टर्स हसमुख गाना हसनगी मिल के बताएंगे यहाँ पर भाईचारा लव हैप्पीनेस ये जो खुशनुमा माहौल है उसी में बिल्कुल शामिल हम करवा रहे हैं आज का टाइमलेस तर का शो। खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि हर दिन जीने का एक खूबसूरत तरीका होता है। जहाँ मुस्कान होती है वहीं पर सच्ची खुशी अपना घर बना लेती है। और हाँ ये तो है कि छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं ना वो बस उनका आनंद लेना है और सबसे बड़ी खुशी तो आपसे ही शुरू होती है। दिल खुश हो तो हर मौसम सुहाना लगता है और हम तो कहेंगे खुश रहने का सबसे आसान तरीका बताया गया है जो है उसके लिए बस आभारी रहना। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी यहाँ पर आपके साथ आओजे हंसरी और बिल्कुल मुलाकात को जारी हम रखते हैं ऑन रेड मस्ती। हालचाल कैसा है जी? रियली होप कि सब कुछ एकदम कुशल मंगल, सब कुछ अच्छा, सब कुछ फिट एंड फाइन, मस्त जबरदस्त। इट्स वीकेंड और ये जो मौसम छा गया है ओहो क्या बात है, औसम मौसम है। और कई जो हमारे लेडीज हमारे फ्रेंड्स जो घर की साफ सफाई कर रही हैं बस मौके का फ़ायदा उठाएंगी और जो कपड़े सूखे नहीं थे वो बस बाहर जाएंगे और कपड़े को सुखाना है और क्या। घर की साफ सफाई, क्लिनलीनेस, टाइडीनेस ऑल अराउंड, फ्रेशनेस ऑल अराउंड, ये तो है अच्छी बात। टू फील लाइक अ न्यू आवरसेल्फ यहाँ पर न्यूनेस लाने के लिए ये तो तरीका बिल्कुल आपने ढूंढ लिया है। सो लगे रहो, कई हमारे फ्रेंड्स तो ऑलरेडी काम पर जुड़ गई है, सबका स्वागत है। आपको एनर्जी लेवल जो है बस पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे एकदम हाई लेवल पे। सो कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत का जो फल है ऑलवेज मीठा ही होता है एंड वी डू बिलीव मेहनत से काम अगर आप करेंगे तो आगे वाले जो दिन आएंगे आपके लिए और भी खुशनुमा बन के रह जाएंगे। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो कीप बीइंग विद टाइमलेस तड़का, ब्रिंगिंग यू ओनली द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स।
0: टाइमलेस तड़का,
1: RM2,
0: टाइमलेस तड़का।

0: is Tadka.
1: RM2.
2: The time for some messages. Let us have it on 0549-1294. Hello to the Radio Masti team. Hello, G. Kaisi ho, Shivani. Vada Malik, jadamdin hai. So wish her all the best. Happy birthday to her from husband Anada. Puri Vada Malik families hai. We have sister Vishwani and sabhi Murugesan parivar jo Surinam se hai. Connecting with the Radio Masti to send the best wishes to Shivani Vadamale. God bless you, my dear, and have a great Janamdin. Good morning, Didi. Good morning, beta. Kaise ho? Yale Sham Joy here from Suriname. Wishing everyone happy Sunday. Enjoying a timeless tarka or yahan par ek gana, of course, chal jayega. Wish you a happy Sunday, happy weekend. Hi, Hansani. Hello. इस समय काम जारी है एट जी टू हॉस्पिटल लिसनिंग टू यू दैट्स वेरी नाइस थैंक यू एंड वेलकम एंड विशिंग ऑल दोस जो काम कर रही हैं इस समय बॉन कुराज आप सभी को हैप्पी संडे एवरीवन फ्रॉम मीशा लगे रहो मीशा काम जारी है एंड फॉर योर नोबल जॉब आई विश यू ऑल द बेस्ट बॉन कुराज एंड गॉड ब्लेस यू यहाँ पर गाना फॉर मेधा फॉर मनीष श्रेया अरियान वी हैव नील शीतल विकी रिटीना नितिन एंड संगीता एंड मोहता ब्लॉश से जितने भी परिवार हैं यहाँ पर आए हैं शामिल हुए हैं रेडियो मस्ती सभी का वेलकम हाय मैं हूँ नीमा जुबन फ्रॉम मौ सिर्फ मौ लिखा है मौद अलबे है मौद ऑस्ट्रेलिया है ये तो पता नहीं लेकिन नीमा जी आपका वेलकम प्यार से आप आई हो ना तो प्यार ही से आपका स्वागत हम करेंगे एंड जीवन परिवार का भी यहाँ पर गाना फॉर पति विशाल के लिए फॉर तीन बेटे यादव नीलेश एंड वीरेश हमारे टीम के लिए भी हाउ स्वीट ऑफ यू थैंक यू नमस्ते जी होप कि सब ठीक है जी हाँ बिल्कुल महादेव की कृपा है केकी का साथ हेलो जी कैसे हो आज मेरी प्यारी मम्मा सत्याता का जन्मदिन है हैप्पी बर्थडे टू हर लॉट्स ऑफ गुड विशेस कमिंग फ्रॉम प्यारी बहन श्रेया दा धनंजय मम्मा और बहन बीमार है और गेट वेल सून का मैसेज तो डेफिनेटली उन दोनों के लिए और घर का काम काज खुद करना पड़ रहा है तो इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम किस बात की हम तो है ना आपके साथ साथ साथ चलेंगे और सब कामकाज को साथ ही करेंगे म्यूजिक हम चलाएंगे और एनर्जी आपको देंगे राइट इक्वेशन बिल्कुल सही हो जाएगा सो जहाँ पर भी साथ जारी है इट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्शन इन आज का टाइमलेस तड़का
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
0: टाइमलेस तड़का

0: 102.
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments. Timeless Tadka.
0: RM2.
3: Let's get a 20 with the Radio Masti. Yahan par time ho chala hai for a simple fashion tip. और आज लेडीज के लिए हमारे स्वीट गर्ल्स के लिए हम लेकर आए हैं एक सिंपल सा ड्रेस फैशन टिप। तो यहाँ पर अपने जो बॉडी टाइप है उससे के अनुसार हमें कपड़े तो चुनना ही पड़ेगा, ये तो है, लाइक टू लुक स्टाइलिश, ताकि आपका जो लुक है वो और भी आकर्षक लगे। रंगों का सही चुनाव करें, ये तो आपकी त्वचा के रंग पर डिपेंड करेगा। आपकी त्वचा के रंग के अनुसार ऐसे रंग को पहने जो आपकी खूबसूरती को निखारे। स्टाइल तभी अच्छा लगता है जब आप अपने कपड़ों में सहज महसूस करें। लाइक इट हैव टू बी कंफर्टेबल, नॉट टू टाइट। अगर ये होगा तो जो लुक है आपके कुछ फीकी पड़ जाएगी। और सही फिटिंग सबसे ज़रूरी है। बहुत ढीले या बहुत टाइट कपड़ों की बजाय सही फिट वाले कपड़े आपको पहनना है। कम लेकिन अच्छे साइज वाले ड्रेस को चुनें। एक सुंदर घड़ी या फिर ए सिंपल सा बैंगल, एक स्टाइलिश बैग आपके लुक को खास बना सकता है। सो अगर आज आपने कुछ ऐसा प्लान किया है, नाइट आउटिंग या फिर परिवार के साथ मे बी गोइंग फॉर सम शॉपिंग एंड ऑल, सो ड्रेस को आप चूज करेंगे तो ये जो लुक है आप पर बिल्कुल क्लासी लुक दे जाएगा। ड्रेस, एक छोटा सा बैग, एक सुंदर सी घड़ी और सिंपल सा इयररिंग, ओह माय गॉड। और मौसम के अनुसार फैब्रिक को चुने, गर्मियों में कॉटन या फिर लिनन, और जबकि सर्दियों में बस ऊनी या फिर गर्म फैब्रिक बेहतर रहते हैं। और जूते और ड्रेस का मेल रखें। सही फुटवेयर आपके पूरे लुक को एकदम संतुलित और स्टाइलिश बनाता है। तो यहाँ पर आप क्या चूज़ करेंगे, ड्रेस या फिर आपने सोचा है कि आप लेगिंग को पहनेंगे साथ में एक स्टाइलिश टॉप या फिर कुर्ती, लेकिन ड्रेस अगर आप पहनेंगे सो इतने सारे टिप्स हमने आपको दिए हैं। दैट वाज टू मेक यू लुक मोर स्टाइलिश राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती।
2: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।

0: 92.2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: RM2
1: Radio Musti।

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: तड़का में आपका वेलकम है और बेशक वी हैव गॉट नाउ सम डेडिकेशन से प्यार के साथ जहां पर आपने कुछ लिखा है. बिग हेलो टू विष्णु जी, कैसे हो? थैंक यू फॉर द नाइस एप्रिसिएशन. यहां पर विष्णु शेवलाल का वेलकम ऑन रेडियो मस्ती और गाना भी एकदम मदमस्त, बिल्कुल आपके लिए एंड यहां पर परिवारों के लिए गाना चल जाएगा. नेक्स्ट वन मैसेज कमिंग फ्रॉम Prakash Viti from Belgium. Welcome in Mauritius. It's a happy Sunday morning in Mauritius. Enjoying a lovely mausam wahan aur nice Sunday on Radio Masti. To aur kya chahiye to make it ekdam super duper weekend. Bilkul aapne sahi socha hai. Namaste Hansini ji, namaste to you. Kaisi ho? Main to theek hoon, thank you. Happy Sunday to everyone. Thank you for the message. वीना जगिसो आई है फ्रॉम बिलवी मोगैल, आपके लिए भी गाना चल जाएगा. सभी फ्रेंड्स के लिए जो आपके अपने हैं उन सभी के लिए एक गाना तो बनता है. अनुराधा जयपुर यहां पर आई है टू विश हैप्पी फैमिली हैप्पी संडे टू पति सुनील, बेटा रोहन, जयेश, साथ में बेटी जोशना, दामाद करविच और परिवार के लिए लेकर आई हो सो मेनी ब्लेसिंग्स, सो मच ऑफ लव, गॉड ब्लेस और डेफिनेटली टू एंजॉय द वीकेंड. वी हैव गॉट रेडियो मस्ती जो आपके साथ है. कमलदीप जी हेलो एंड वेलकम, एंजॉयिंग द नाइस कलेक्शन. यहाँ पर है एक खास गाना आपके लिए भी जो चलने वाला है नेक्स्ट. Thank you for always sending your love and appreciation for the shows. और यहाँ पर क्रॉसिंग द बॉर्डर्स कहाँ चलेंगे? हाँ बिल्कुल, दूर ही सही लेकिन दिल के हमेशा करीब रहते हैं. बाबू सोना एंड परी का वार्म वेलकम इन द शो. वेली होप कि आज की सुबह बहुत ही खास रही विद रेडियो मस्ती. तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो पता है, ये तो परी कह रही है. आज तुम्हारे साथ हर पल एक नई खुशी का एहसास होता है. तुम्हारी मुस्कान तो मेरी दुनिया की सबसे बड़ी रोशनी है. हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना, राइट? दिल की हर धड़कन में सिर्फ तुम्हारा ही नाम है और हर दुआओं में तुम्हारी खुशी शामिल है. सो गिविंग यू वंस अगेन अ रीजन टू स्टे इन लव, या फिर से प्यार करने के लिए टू फॉल इन लव अगेन. यहाँ पर प्यार करने वालों के लिए गाना तो एकदम रोमांटिक सा हम डेडिकेट करना चाहेंगे. बी द सनशाइन, बी द रीजन टू लव एंड टू बी लव्ड, राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती फॉर आवर टाइमलेस तड़का. यहाँ पर हंसनी आपके साथ, हाँ जी, अप टिल 11 एएम
0: टाइमलेस तड़का.
1: RM2
0: टाइमलेस तड़का.

0: यहाँ पे अंतिम गाना यस द लास्ट सॉन्ग फॉर टैब लेस्टर का, लेकिन दैट्स नॉट द एंड. अभी तो शुरुआत हुई है वीकेंड को जबरदस्त बनाने के लिए एंड शी इज हियर लेकर ढेर सारा एनर्जी, ढेर सारे ग्रेट गाने ऑफ कोर्स टू हायर द एनर्जी लेवल. हाय पूनम, विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वीकेंड टू यू. कैसी हो?
1: बिल्कुल ठीक हूँ जी. आप सब कैसे हैं? आप कैसे हो?
0: बिल्कुल मस्त. यहाँ पे बस हम रेडी हो रहे हैं अब फॉर आज का बॉली ब्रंच.
1: बॉली ब्रंच यस,
0: यानी कि अब तक मैंने नहीं लिया है ब्रेकफास्ट ना ही लंच, सो सीधे ब्रंच.
1: सीधा ब्रंच लेना है और आपने बाहर जाना है, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ.
0: सो स्वीट पूनम एज ऑलवेज. सो बी विद हर फॉर आज का बॉली ब्रंच और यही गाना हमें ले जाएगा ठीक 11 बजे के समाचारों की ओर. इसके बाद बिल्कुल विल बी हैविंग सम मोर फन. सो जहाँ पर भी हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं, Have a great time, have a great weekend. Take good care. Bye-bye.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti.
4: टाइम चेक सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी से। अभी आपको नमस्कार।
5: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। राष्ट्रपति दफ्तर ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों का खंडन किया। एक विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति आज रविवार को नियमित मेडिकल चेकअप के लिए विक्टोरिया अस्पताल के कार्डियक यूनिट गए थे, इसीलिए ये कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी। राष्ट्रपति दफ्तर ने इस बात की भी पुष्टि की है कि धर्मवीर गोकुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वे अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी असत्यापित जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। शनिवार को मायामी में खेले गए एक रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरे तीसरे स्थान के विश्व कप प्लेऑफ मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। ये फिनिश सन 1966 के बाद से विश्व कप में इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, जबकि किलियान एम्बापे ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के इस मैच में फ्रांस के लिए 2 गोल करके विश्व कप कैरियर में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी को पीछा छोड़ दिया और कुल 22 गोल तक पहुंच गए। पुलिस विभाग में नियुक्त हुए नए 368 कर्मचारियों ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। कल यानी कि शनिवार 18 जुलाई को वाकुआ के फिलिप ओ सन ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में उन कर्मचारियों ने आधिकारिक तौर पर पद की शपथ ली। इनमें 116 महिलाएं और 252 पुरुष शामिल हैं, जिन्हें 3 नवंबर 2025 को भर्ती किया गया था। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई तेज हो गई है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने जोर्डन में अमेरिका की सेना के बेस को मिसाइलों से निशाना बनाया है। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई और 1 लापता है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 212 गिरोजमो गली रोजिल में 212 गिरोजमो गली रोजिल में 49 साल के 49 years old के श्री गणेश सुरजनुआ, श्री गणेश सुरजनुआ

0: जिन्हें सब लोग विनेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है आज दिन के 12:30 बजे आज दिन के 12:30 बजे उनके पिताजी श्री महावीर सुर जुनुआ के घर नंबर 212 गिरोजमा गली रोजल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 noon ब्लॉक ए 6 गली सपे पाई में ब्लॉक ए 6 गली सपे पाई में 61 साल के 61 years old के जनाब राफिक गारिम्बकस जिन्हें सब लोग मोंगूस के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दोपहर के 2 बजे उन्हीं के मकान नंबर ब्लॉक नंबर ए 6 avenue Sapin Pai से निकाल कर दफनाने के लिए इलाके का कब्रिस्तान जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay ou que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402-8000.
2: Volley Branch, RM2, Radio Masti.

0: Family Brunch RM2 Radio Masti
1: 11:10 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी संडे. आज है जुलाई का तीसरा संडे और एक्साइटमेंट तो रात से ही बनी हुई है क्योंकि आज रात स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ग्रैंड फिनाले. क्या बात है भाई, आज फैसला हो जाएगा कि चैंपियन कौन बनेगा. लेकिन उससे पहले अगले 3 घंटे बॉलीवुड के सुपरहिट गानों के साथ होगी. ब्यूटी टिप्स, रसोई के आसान उपाय और संडे को और भी मजेदार बनाने वाली ढेर सारी प्यारी प्यारी सी बातें. तो मैं आपके साथ पूनम और आप सुन रहे हैं RM2 बॉली ब्रंच. चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार बॉलीवुड हिट से और साथ साथ जो भी अभी समय जो रात को देख रहे थे मैच और अभी सो रहे हैं उनके लिए भी एक प्यारा सा गाना एंजॉय कीजिएगा. ये गाने आप सबके लिए.
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:26 हो चुके हैं दोस्तों, और एक्साइटमेंट अब और बढ़ने वाली है आप सब की। आज रात स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल है, और इससे पहले आज रात 10 बजे हमारा स्पेशल शो भी तैयार है। गेम्स वहाँ खेले जाएंगे, सही से जवाब देने वाले को बहुत सारे जो कहते हैं ना गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, वाउचर्स मिलने वाले हैं। ये जो हमारा दिल इन्होंने खोला है ना, ये हमारी जितनी भी जो हमारे साथ में कोलाबरेट किया हुआ है, ग्रैंड बाजार ऑफ इंडिया, जेंट्स लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट एंड राजस्थान हैंडलूम हाउस की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स होंगे। साथ ही भारतीय गायक जो कि अभिजीत जी हैं, जो कि कॉन्सर्ट के लिए आ रहे हैं, उनकी गोल्ड टिकट जीतने का भी आपको शानदार मौका मिलने वाला है। फाइनल देखिए MBC स्पोर्ट्स चैनल 11 पर। और अगर आप बाहर हैं यानी कि घर से बाहर हैं, तो आपको बस सिर्फ अपने फ़ोन पर डाउनलोड करना है MBC Play 1.0। अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो आप जुड़ सकते हैं लाइव से, और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ से गेम्स खेलेंगे, वाउचर्स जीतेंगे और गिफ्ट्स भी जीतेंगे, तो फिर बॉल का मजा और भी दुगना हो जाएगा। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं 5499124 पर। हम सब, हमारी टीम आपके साथ 24 आवर्स साथ जुड़ी होती है। बस यही सिर्फ चाहत दिल होता है हमारा कि आप हमेशा खुश रहें, एंजॉय करें, आपको कोई गिफ्ट मिल सके। तो बस ये गाना बहुत ही प्यारा सा है, अभिजीत की आवाज़ में सुन पाएंगे, क्योंकि भाई कॉन्सर्ट पर जाना है तो पता तो चलना चाहिए ना किसका कॉन्सर्ट है। तो चलिए भाई अभिजीत जी की आवाज़ में एक प्यारा सा गाना सुनते हैं, एंजॉय कीजिए।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti

0: Body Brunch RM2 Radio Masti
1: 11:40 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ। भैया ये जो पावर मिलती है ना गानों से, ये और कहीं से नहीं मिलती है। मुझे लगता है कि एक साथ तो हमारे काम हो जाते हैं और साथ साथ हमारे कानों में थोड़ी थोड़ी सी, कहते हैं ना, संगीत चलता रहता है, गुनगुनाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव भी करते रहते हैं और जो ये मूवमेंट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई क्या कर सकते हैं, आपके लिए तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि आप इंजॉय कीजिए अपने गानों को और साथ में हमारे साथ बने रहिए। भाई बहुत सारी, कहते हैं ना, कि गेम्स आएंगी रात को 10 बजे, आपको उसके साथ जरूर जुड़ना है और साथ में एक आंख से आप अपने टीवी को भी देख सकते हैं MBC। बस आपने देखना यह है कि MBC चैनल जो है 11 चलाना है और इसमें आपको स्पोर्ट्स का जो लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड कप फिनाले है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए भाई 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्णा जी, श्रियांश, नीलदीप, ललित जी USA से और कार्तिक, और उसके साथ में डैरन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लुवेश, होल अपादू फैमिली भी जुड़ी हुई है और इंजॉय कर रही है और कह रही है कि हमें 100% पता है सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे। हो सकता है कि मैसेजेस कम आए आज के दिन क्योंकि भाई सारे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी उनको रिलैक्सेशन चाहिए, पर बहुत सारे लोग हैं जो एक्साइटमेंट में बैठे हुए हैं तो उनको नींद नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं भाई हमारी टीम जीतनी चाहिए। तो भाई जो भी आपकी टीम है उसके साथ में रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी टीम को। उसके साथ में एक प्यारी सी बिटिया रानी का भी मैसेज आया है, उनका नाम है प्रिया और वो अपने पापा यानी कि सतीश रामदीन जी को विश कर रही हैं और कह रही हैं पापा आपका बर्थडे जो है ना हम सब के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आता है, क्योंकि आपके जब सपने पूरे होते हैं और छोटी छोटी सी जो खुशियां हमारे घर में आती हैं आपके बर्थडे से या किसी का भी बर्थडे घर में आता है हम सबको बहुत एक्साइटमेंट होती है। और आज तो आपका फेवरेट भी प्रोग्राम भी है और साथ में रात को गेम जीतने का मौका भी है, तो क्यों ना आज पापा को अभिजीत की ही एक टिकट मिल जाए। तो प्लीज़ आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा अपने जो भी गेम्स खेलेंगे हमारे साथ और उसके साथ में अपने पॉइंट्स लीजिएगा। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, पर जिनका भी आज बर्थडे है उन सब के लिए हम इतना ही कहेंगे। यस क्या कहेंगे, सुनिए इसको, ब्यूटीफुल मैसेज है आप सबके लिए, पूरी MBC की टीम के लिए। हमेशा खुश रहिए, इंजॉय कीजिए ये गाने।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:52 हो चुके हैं और ये छोटा सा इधर ड्रीम है, वही ज़्यादा ड्रीम्स क्या रखने, बस थोड़ी सी ऐसी ये जो बातें अभी आपने सुनी, यही हम तो चाहते हैं कि जिनका बर्थडे है आज उनकी लाइफ में ऐसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स आते रहें और ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। तो चलिए भाई बात करते हैं, आज सबने बहुत सारी प्लानिंग्स की होंगी, आज तो कई जगह पर सी साइट पे या लोगों के घर पे किसी ना किसी ने कोई ना कोई प्लानिंग्स की होगी, फ्रेंड सर्कल ने बुलाया होगा और कहा होगा भाई फिनाले आज एक मिल साथ में ही मिलकर देखते हैं। तो भाई जहाँ भी जाने वाले हो इंजॉय कीजिए, बट आपको एक प्यारी सी छोटी सी टिप देते हैं जिनको भी जिनके भी

बाल बड़े फ्रीजी फ्रीजी से रहते हैं, जिनके बालों में थोड़ी सी शाइन नहीं रहती है, तो उनके लिए बहुत छोटा सा है, कहीं भी जाओ या आपके पास ऑलरेडी है तो आप हेयर सीरम ज़रूर लगाइएगा। जब हेयर सीरम, और वो भी ज़्यादा नहीं लगाना होता, सिर्फ एक पंप यानी जस्ट एक प्रेस करना है, जितना उसमें निकलेगा उतना ही पहले आपको उसको बिल्कुल नीचे से लगाने हैं बालों पर, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आते जाइए और ऊपर लगाइए, शाइन भी रहेगी और चिपचिपा भी नहीं लगेगा, आपको ऐसे भी नहीं लगेगा जैसे आपने कोई ऑयल लगाया हो।

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. अभी से अभी आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. बस संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ. कल रात पोटली में एक जानलेवा सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक राहगीर की मौत हो गई. ये दुर्घटना रात के करीब 8 बजे रुई भाबो में वेनिस पुल के पास हुई. एक गाड़ी ओलमोका रोड के निवासी देजीरे कैटो जा टकराई. गाड़ी चालक 28 वर्ष का बताया जा रहा है. स्थल पर पहुंचने पर सामू ने 70 साल के एक के इस व्यक्ति की मौत की पुष्टि की और शव को एसएसओरएन अस्पताल ले जाया गया. जानकारियों के अनुसार दुर्घटना के वक्त सड़क साफ थी और मौसम भी अच्छा था. अभी तक कोई भी गवाह सामने नहीं आया है. स्थल पर पाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों के दृश्य जल्द ही देखे जाएंगे. सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज की मदद से ई पासपोर्ट के काम को आगे बढ़ाया जाएगा. दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत एक सलाहकार इस नई प्रणाली को लागू करने के वास्ते तकनीकी सहायता और क्वालिटी चेकिंग की सुविधा देगा. जैसा कि पिछले 19 जून के बजट भाषण में बताया गया था, सरकार सीमाओं के प्रबंधन के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम तैयार कर रही है. इसका उद्देश्य है सुरक्षा को और मजबूत करना और हवाई अड्डे पर यात्रियों की आवाजाही प्रक्रिया को आसान बनाना. कल शनिवार 18 जुलाई से वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 की एक टीम मॉरिशस में है. 21 जुलाई तक ये टीम गूगल स्ट्रीट व्यू प्रोजेक्ट के लिए पहली बार 360 डिग्री की खास तस्वीरें और वीडियो लेने का काम करेगी. इस काम के लिए अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरों से लैस 4 गाड़ियां पूरी द्वीप में घूमेंगी. ये गाड़ियां यहाँ की सरकारी सड़कों, मुख्य पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक जगहों तथा अन्य खास ठिकानों की तस्वीरें कैमरे में कैद करेंगी. विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि स्काई रूट एयरो स्पेस के विक्रम 1 रॉकेट को शनिवार सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया. ये भारत में किसी निजी कंपनी द्वारा बनाए गए ओबिटल क्लास रॉकेट की पहली उड़ान है. इस मिशन को नाम दिया गया है मिशन आगमन. ये भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम है. भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और इसे ऐतिहासिक नई शुरुआत बताया है. तो ये थी अब तक की खबरें. आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद. जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार. जीना गली स्टैनली में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के जनाब शेख इदरीस शाह लाल मोहम्मद, जिन्हें सब लोग इदरीस लाल मोहम्मद के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है. उनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे उनके भांजे जनाब शेख अबू अंजारी लाल मोहम्मद के मकान जीना गली स्टैनली से निकालकर दफनाने के लिए सैमौते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल

0: टुडे एट 1:30 PM। सुल्फेरिनो नंबर एक वाकवा में, सुल्फेरिनो नंबर एक वाकवा में 60 साल की 60 years old की श्रीमती महेश्री देदी दयाल, श्रीमती महेश्री देदी दयाल पैदाइशी नाम चुकोरी और जिन्हें सब लोग बीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर सुल्फेरिनो नंबर एक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:10 हुए हैं और आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में। मैं निकला गड्डी लेके, क्या बात है। अभी गाड़ियां लेके तो सब लोग निकल रहे हैं क्योंकि सबको पता है, सबको कहीं ना कहीं आज तो जरूर जाना है, चाहे शॉपिंग हो, चाहे किसी के दोस्त के घर पे, चाहे रिलेटिव्स के घर में। और बस यही प्लानिंग कर रहे हैं सारे जने। बच्चे तो ज्यादातर यही प्लान कर रहे होंगे कि भाई आज रात को फिनाले मम्मी पापा देखेंगे तो हम लोग कोई मूवी देख सकते हैं, हम लोग किसी फ्रेंड्स के साथ में बातें कर सकते हैं, चलो भाई मम्मी पापा आ रहे हैं मिल रहे हैं तो हम भी मिल लेते हैं। तो ये सब प्लानिंग कहीं ना कहीं चल रही है और हम यही कहेंगे आपको, प्लानिंग जरूर बनाइए। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है भाई, ग्रैंड फिनाले है और ग्रैंड फिनाले ऐसे तो नहीं जाने देंगे। और ये स्पेशली भाई फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 का है, और हम तो यही कहेंगे चाहे स्पेन जीते, चाहे अर्जेंटीना जीते, कोई भी जीते, बट आप एक जरूर अपनी एक टीम को सिलेक्ट दिमाग में ज़रूर रखना। मे बी वो आपकी चॉइस की ना हो, मे बी आपने कभी उनको पसंद नहीं किया हो, पर आज एक बस ये छोटी सी टिप है कि आप उसको पसंद करना और उसके ऊपर फोकस करना। क्योंकि हमारे पास एक मैसेज आया है, वो बोल रहा है बच्चा कि उसको कभी फुटबॉल समझ ही नहीं आया तो क्या करें। तो हम आपको ये बोलेंगे भाई, एक दिन में तो नहीं सिखा सकते, बस अपनी पसंद का एक टीम चूज़ कीजिए और उसके बाद फोकस कीजिए। किसी के साथ में जो बैठा हुआ है उससे पूछते रहिए भाई क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, धीरे धीरे आज नहीं तो कल समझ आ ही जाएगा। और जो भी टीम आपने प्रेडिक्शन में होगी जीतेगी, बस उसके साथ इंजॉय कीजिए, खाना पीना खाइए और क्या चाहिए भाई, हम हैं आपके साथ 24 आवर्स। और ये है आपका बॉली ब्रंच, इंजॉय कीजिए अपने गाने।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Tak, tak, Bollywood.
1: रेडियो मस्ती भूख लगी जोरों की भूख लगी मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती
1: 12:26 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। क्या बात है भाई, ये जो मूड बन जाता है ना ऐसे गाने, ढोल नगाड़े जब बजते हैं तो ऐसा लगता है भाई ये गाने चलते रहें और फिर थोड़ी सी टायर्डनेस नहीं होती और ऐसा लगता है कि वैसे हमारा आज तो दोपहर बन गई है और उसके बाद रात तक जो भी एनर्जी चाह रहे हैं ना, जिनको टायर्ड नहीं होना है और वो कह रहे हैं कि नहीं भाई दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं इंजॉय कर रहे हैं और उसमें फिर नींद ना आए, तो ऐसे गाने चला दो कि जिससे हमारे को नींद ना आए और हम रात तक ऐसे ही बैठे रहें। तो ऐसे ही टाइम में हमारे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलो भाई उनके मैसेजेस भी पढ़ लेते हैं। इस समय हमारे साथ ललिता जीतन जी भी जुड़ी हुई हैं और इंजॉय कर रही हैं, बहुत ही मस्त कह रही हैं प्रोग्राम हो रहा है और मैं बस ऐसे ही साथ में रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। जना जी भी साथ दे रही है, उनकी बेटी रीमा, जनिता, श्रेष्ठा, आशनी, सिल्विया, यूवी, कृषि सभी साथ हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। साथ में ही आज हमारे साथ बिडवाग विदेशी जी भी जुड़े हुए हैं और प्यारी सी अपनी स्वीट हार्ट के लिए एक प्यारा सा गाने की फरमाइश कर रहे हैं। यलेश जी भी जुड़े हुए हैं और बहुत ही प्यारा सैंडविच भेजा है मेरे लिए, चाहे ऐसे ही भेजते हैं पर दिल से भी भेजते हैं उतना ही बहुत है मेरे लिए, मेरा पेट भर गया, थैंक यू सो मच। इसके साथ में एक प्यारा सा मैसेज लिखा है हमारे दोस्त आकाश चेतन मनसुख जी ने, लिखा है अगर वक्त मिले दो पल का तो हाल पूछ लेना, अगर जिंदगी परेशान करे तो सवाल पूछ लेना, और जिन्होंने शिक्षा जिन्होंने सिखाया है पैरों पर चलना कभी उन माँ बाप का भी ख्याल पूछ लेना। क्या बात है, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत ही प्यारा मैसेज था इसलिए मेरा दिल किया उसे ज़रूर पढ़ें। इसके साथ में श्याम देवी चरण जी भी जुड़े हुए हैं और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में सुखदेव, राजू, बोला, अविना, रवीना, रमेश, मोहन एंड ऑल पेरेबे, ऐसे उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। साथ में हमारे एक और भी आ जाते हैं, एक प्यारा सा मैसेज

आया है. यस, आराध्या बिटिया के लिए उनका आज बर्थडे है जो कि आज 10 साल की हो गई है, और उनके पापा यानी कि अरविंद और मम्मा रश्मि उन्हें विश कर रहे हैं, और लिटिल लिखा है तो कोई शायद बेबी होगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल, वो भी विश कर रहे हैं और उनको इतना ही कह रहे हैं कि तुम बहुत ही प्यारी हो, अच्छी हो, हमेशा ऐसी रहो, इन्जॉय कीजिए अपने गानों को. और कह रहे हैं क्या एक गाना मेरी बिटिया के लिए चल सकता है? यस, बिल्कुल हम चलाएंगे बिटिया के लिए, पर स्पेशल उन सभी के लिए जिनका भी आज बर्थडे है. या भैया अभी एनिवर्सरी तो नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे पास तो जिंगल बर्थडे की है, पर दो जने हैं उनका एनिवर्सरी भी है, उसके बाद में मैसेज करेंगे.

0: Radio Musti.
1: Body Brunch. RM2. Radio Musti.

0: ओली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:42 हो चुके हैं और क्या बात है, घनी बावड़ी हो गई क्या प्यारा सा। ज्योति नूरा जी की आवाज़ में ये गाना आप सुन रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। पर आज रात होने वाली है बिल्कुल शानदार। एक तरफ होगा स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना का फीफा वर्ल्ड कप 2026 ग्रैंड फिनाले, क्या बात है। और दूसरी तरफ हम लेकर आए एक खास मौका आप सबके जीतने का। तो याद रखिए, आज रात 10 बजे स्पेशल शो होने जा रहा है। हमारे साथ जुड़िए, खेलिए मज़ेदार गेम्स, दीजिए सही जवाब और जीतिए ग्रैंड बाजार ऑफ इंडिया की तरफ से, जैंस लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट की तरफ से, राजस्थान हैंडलूम्स हाउस की तरफ से एक शानदार गिफ्ट वाउचर्स। और भारतीय गायक आ रहे हैं अभिजीत जी के का लाइव कॉन्सर्ट के गोल्ड टिकट्स आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। और इसके बाद MBC स्पोर्ट्स चैनल 11 पर आप रात को देख पाएंगे 11 बजे से स्पेन वर्सेज अर्जेंटीना का महामुकाबला। और अगर आप घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो MBC प्ले 1.0 डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो ये मैच आप सबके लिए है, एंजॉय कीजिए।

0: मस्त रहिए और आज की रात हमारे साथ भी रहिए, फुटबॉल भी देखिए और कहीं मत जाइए क्योंकि मस्ती अभी बाकी है।
1: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: मस्ती ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:52 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए अपने ही प्रोग्राम पॉली ब्रंच के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। क्या बात है भाई, दिलेर मेहंदी की आवाज़। और इसमें कहते हैं ना कि अगर किसी के अंदर ताकत ना भी हो उसमें भी आ जाती है, तो ये गाने तो ऐसे ही हैं। पर साथ में हमने आपको इतना बोलते हैं कि अगर आपने भी आज कोई प्लानिंग किया है बाहर जाने का, तो इतना ही हम बस कहेंगे, अगर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जा रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, जहाँ भी आपको भी बैठना होगा फ्रेंड सर्कल के साथ, जैसे मतलब कभी कभी होता है ना कि हाँ भाई मैच देख रहे हैं तो नीचे ही बैठ जाओ, कार्पेट पर बैठ जाओ, सोफे पर पड़ जाओ और उसके बाद भाई पूरे टाइम देखते रहो, तो हम आपको इतना ही कहेंगे कि आराम से बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े डालिएगा जिसमें आप आराम से एंजॉय कर सकें, अपने आप एक्साइटेड हो सके। और साथ में यही बोलेंगे, हल्की सी परफ्यूम लगाओ, छोटी सी स्माइल अपने चेहरे पर रखो, आराम से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना ये मैच या फिर जहां भी आप जा रहे हैं। कंफर्टेबल कपड़े होते हैं, बट साथ में शॉल लेके जाना मत भूलिएगा, हो सकता है थोड़ा सा वार्म

0: हम जैकेट लेके जा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज जिससे आप कंफर्टेबल भी रहें और साथ में आपको ठंड भी ना लगे। तो इंजॉय कीजिए अपने गानों को। ये आने वाला जो गाना है ना, बहुत ही मस्त है, इसमें आपका दिल करेगा डांस करने का। अगर आप वहां पर डांस करेंगे तो मैं यहां पर डांस करूंगी, पर रैली में इंजॉय कीजिएगा ये गाना आप सबके लिए।
1: Body Branch RM2 Radio Masti।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु,

0: गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC Radio presents One Day RJ. MBC Radio पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस.
1: Don't miss it.
2: Welcome to RM2
3: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
2: RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check दोपहर के एक बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से. याचना, आपको नमस्कार.
5: नमस्कार पूनम. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. कल रात पोटली में एक जानलेवा सड़क हादसा हुआ जिसमें एक राहगीर की मौत हुई. ये दुर्घटना रात करीब 8 बजे हुई भामों में वेनिस पुल के पास हुआ. एक गाड़ी ओल्ड मोका रोड के निवासी देजिरे कतुक से टकरा गई. गाड़ी का चालक 28 साल का बताया जाता है. स्थल पर पहुंचने पर सामू ने 70 साल के इस व्यक्ति की मौत की पुष्टि की और शव को SSRN ले जाया गया. जानकारियों के मुताबिक दुर्घटना के वक्त सड़क साफ थी और मौसम अच्छा था. अभी तक कोई भी गवाह सामने नहीं आया है. स्थल पर पाए जाने वाले सेफ सिटी कैमरों के दृश्य जल्द ही देखे जाएंगे. राष्ट्रपति दफ्तर द्वारा जानकारी दी गई है कि गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल की स्वास्थ्य स्थिति पर फैलाई जा रही खबरें बेबुनियादी हैं और मात्र अफवाहें हैं. वे कांडस के विक्टोरिया अस्पताल के कार्डियक सेंटर में मात्र रूटीन चेकअप कराने गए हुए थे और वे स्वस्थ हैं. वे अपनी जिम्मेदारियां और अपना काम जारी रख रहे हैं. जनता से केवल पक्की जानकारियों पर विश्वास करने की मांग की जाती है. फीफा वर्ल्ड कप का आखिरी मैच, सबसे बड़ा, सबसे खास मैच आज खेला जाएगा. फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच 104वां मैच जो न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा रात 11 बजे. ये मैच आप एमबीसी स्पोर्ट्स यानी एमबीसी 11 और एमबीसी प्ले पर देख पाएंगे. विदेश में जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध और तेज हो गया है. वहां लगातार 7वें दिन मिसाइल और कामिकाज ड्रोन हमले किए गए. दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पाए जाने वाले केशम टापू पर भी मिसाइलें दागी गई. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. डिस्पेंसरी रोड विच एमिल थियोले में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री इंद्रदेव बंधन जो आत्मा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनकी पत्नी नर्मदा बंधन के मकान डिस्पेंसरी रोड विच एमिल थियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS थियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM. लासोस कैथोबोन में 59 साल के 59 years old के श्री देवन मर्टन जो नादन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पैपेजों बेकरी के मालिक थे, उनकी मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके मकान लासोस कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोतें मोरोश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM. शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है.
6: Body Brunch. RM2. Radio Musti.

0: हमारी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:09 हो चुके हैं, संडे का प्यारा सा दिन और 19 जुलाई हो गई भाई, पता ही नहीं चला महीना शुरू कब होता है और बीच में आ जाता है और ख़त्म भी होने लगता है। तो मैं कहती हूँ 19 आ गई, अभी पता नहीं बस सिर्फ 10 दिन के अंदर 1 मंथ फिर ख़त्म हो जाएगा और फिर साल भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते। पर हमारा ये 3rd आवर चल रहा है और हम जुड़ चुके हैं आप ही के साथ, जैसे कि दिल के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि आपके मैसेजेस बताते हैं कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। चलिए 2-3 प्यारे प्यारे से मैसेजेस ले लेते हैं। हमारे साथ आज हैं सुरेखा जी, जिनके बेटे का आज वेडिंग है और वो कि वाकवा में रहने वाली हैं और आज वो इस समय शादी हो रही है उस बच्चे की, और मम्मी पापा मासियां मामी मामू व्योम और उसके फ्रेंड्स जो कि इंडिया से आए हुए सभी उसे बेस्ट विशेस दे रहे हैं और कह रहे हैं भाभी बहुत प्यारी है, उसका ख्याल रखियो। तो भाई व्योम, हम भी आपको विश करते हैं कि हमेशा खुश रहना, इंजॉय करना अपनी ज़िंदगी को, ब्यूटीफुल लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो रही है तो इसको बस खुशियों से इंजॉय कीजिए। साथ में ललिता जीतन जी भी जुड़ी हैं और इंजॉय कर रही हैं प्यारे से प्रोग्राम के साथ में। इसके साथ में आज है बर्थडे गुरुजी संजय मेहता जी का, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आज वो 59 ईयर्स के हो चुके हैं और उन्होंने अपनी पसंद का एक गाना भेजा और कहा प्लीज़ ये ज़रूर चलाइएगा। तो हम बिल्कुल चलाने वाले हैं, पर हम सबसे पहले आपको विश करते हैं कि हमेशा खुश रहें, लंबी उम्र पाएं और हमेशा ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें। इस समय राजन रघुपत जी भी साथ दे रहे हैं लंदन से और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच सर आपका। और यशिका भी साथ दे रही हैं, इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। तक्षिका एंड तनिका का भी आज बर्थडे है, मॉम दवीना एंड पापा संजय, और विश कर रहे हैं दोनों बिटिया रानी को और कह रहे हैं कि बहुत ही प्यारी बच्चियाँ हो, हमेशा खुश रहो, लंबी उम्र पाओ। क्या बात है भाई, नेफ्यू आज उनके नेफ्यू का भी यानी कि जैनिश का भी बर्थडे है और उनको भी विश कर रहे हैं कि हमेशा वो खुश रहे और प्यार बांटता रहे जैसे इतने सालों से दे रहा है। मीला भुजन जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। कुमार देवी चरण जी भी जुड़े हुए हैं और प्यारे प्यार से और कह रहे हैं कि सब हमेशा खुश रहें और यही मेरी मनोकामना है और मैं यही विश करता हूं। तो भाई आप सबका दिल से शुक्रिया जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और जिन जिन का भी बर्थडे है उनके लिए हम तो वैसे ही चलाते हैं प्यारी सी चीज़, पर ये स्पेशल आप सबके लिए।

0: रेडियो मस्ती।
1: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: nasty.
1: Anda, anda, anda, anda. हम सब ने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है? इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है। ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है, जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है।

0: हैप्पी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:31 हो चुके हैं और हमने अभी आपको बताया था कि हम एक प्यारी सी रेसिपी बताने जा रहे हैं आपको। अगर आपने पेन और पेपर रख लिया अपने पास, ये बहुत इजी है बट बिलीव मी इतनी टेस्टी है कि आपने सोचा भी नहीं होगा जब आप खुद बनाएंगे। यहाँ पर मॉरिशस में ये अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हमने सोचा ऐसी चीज़ बताते हैं जो कि मॉरिशस में भी मॉरिशियंस को पसंद आए। ये स्पेशली वेजिटेरियन है तो आपको सिर्फ क्या करना है, 500 ग्राम यानी कि 500 ग्राम्स मैदा लेना है, उसको थोड़ा सा पानी डालकर उसको सख्त लेना है और 20 और 30 मिनट के लिए एक साइड में रख देना है। पहला फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर क्या करना है, जो आपने 30 मिनट के बाद उस आटे को लेना है उसके अंदर 2 ग्लास पानी डालना है और उसको अच्छे अच्छे से हाथों से मलना है। जैसे मलते रहेंगे उसमें से एक वाइट पानी सा निकलेगा, आपको वो पानी फेंक देना है। फिर उसके अंदर फिर दोबारा से पानी डालना है 2 ग्लास और उसको भी निकालते रहना है। वो जब वो वाइट पानी निकल चला जाएगा उसको भी फेंक देना है। फिर थर्ड टाइम ऐसे 2-3-4 बार आप करेंगे तो आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में सिर्फ ग्लूटेन यानी कि थोड़ा सा सॉफ्ट सा ग्लू मिलेगा आपको। आपको क्या करना है उसको रखना है, बाकी के लिए वो तो पानी से निकल जाएगा, जो आटे का अंदर वाइट पार्ट है वो निकल जाएगा। फिर उसको आपको क्या करना है, साइड में सोया चंक्स लेने, यानी कि आप 1/2 kg ले सकते हैं। 1/2 kg सोया चंक्स को पानी में डिप कर दीजिएगा और 30 मिनट्स के बाद थोड़ा सा उसको 5 मिनट या 3 मिनट उबालिएगा, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। उसको आपने क्या करना है कि उसको भी आपने बॉईल करके थोड़ा सा उसको हल्का हल्का कट करके जो ग्लूटेन आपने वो जो आटे का ग्लूटेन था उसको लेना है, चंक्स को लेना और मिक्सर ग्राइंडर के अंदर उसको अच्छे से उसको मतलब उसको निचोड़ दीजिएगा चंक्स को। उसको ऐसे ही नहीं रहने दीजिएगा कि पानी पानी हो जाए, उसको अच्छे से निचोड़ दीजिएगा। फिर उसको ग्लूटेन जो आपने वो मैदा का बनाया था और चंक्स को दोनों को मिक्सर में डालिएगा, उसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिएगा। जब वो ब्लेंड हो जाएंगे तो वो एक डो सा बन जाएगा। उसके अंदर आपको सिर्फ 2 चम्मच बेसन डालना है, उसका एक ऐसा लपात सा एक डो बन जाएगा जिससे रोटी जैसा हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, रोटी नहीं, पतली सी रोटी नहीं बनानी है आपको, उसको क्या करना है कि एक बड़ा सा रोटी बनाना है और साइड में से उसको छोटे छोटे लंबे लंबे से कट कर लेने हैं। तो उसके बाद आपको स्टिक्स लेने हैं जिसमें आप आइसक्रीम जिससे खाते हैं, जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं उसके अंदर वो डाउन टू अप करते हुए उसे लपेट देना है और बस उसको 5 घंटे फ्रीज़र में रख देना है। 5 घंटे के लिए जब रखेंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे और उसके बाद जब आप बाहर निकालेंगे उसको तो फिर वो आप डिफ्रॉस्ट कीजिएगा, उसको छोटे छोटे पीसेस कट कर दीजिएगा और उसको फ्राई कर दीजिएगा। बहुत डीप फ्राई मत कीजिएगा, मतलब अच्छे से फ्राई हो जाए और जैसा आप जो भी मसाला बनाते हैं उसके अंदर वो डाल के बनाइएगा और इट्स टू टेस्टी टू डिलीशियस। आपको भी लगेगा क्या भाई क्या चीज़ बताइए हमने, हम यही कह रहे हैं बस खाइए सोया चाप।

0: हैप्पी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:43 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ। और मुझे पता है जो अभी इस टाइम खाना खा रहे हैं उनके खाना खा लिया होगा या खाना खा रहे हैं, तो बस अपना खाना बहुत अच्छे से खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा अपने फूड को और उसको थोड़ा सा ग्रीन बनाइएगा, सलाद रखिए, थोड़ा दही ले लीजिए, थोड़ा सा नींबू पानी ले लीजिए। अगर घर में बैठे हो तो फिर ये चीज़ें करते रहना चाहिए, पर अगर आप ऑफिस में हो तो नहीं हो पाता, तो इसलिए थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं पूरे दिन में, तो ठीक है, क्योंकि पूरे दिन तो हम फास्ट फूड खाते रहते हैं या घर का भी खाना खाते हैं, तो वो भी इतना कहते हैं ना, इतनी हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो आप थोड़ा सा फ्रूट, थोड़ी सी ऐसी कच्ची वेजिटेबल्स, गाजर ले लो, थोड़ी सी मूली ले लो, ये चीज़ें अपनी डाइट में रखते रहना चाहिए। और थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि कड़वा खाना ज़रूरी होता है, यानी कि बिटर गौर्ड या जैसे कि करेला, ये सब चीज़ें भी अगर आप अपने खाने में ऐड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। भाई आज का दिन बहुत ही शानदार गुजरने वाला है, मुझे लगता है रात तक जो बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे अब उनका और एक्साइटमेंट बढ़ गया है, क्योंकि आज है स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना का फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ग्रैंड फिनाले। और अगर आप सारे जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के साथ बहुत टाइम से, तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए आज रात को हमने भी एक स्पेशल सेगमेंट तैयार किया है आपके लिए, स्पेशल शो जिसे कह सकते हैं कि इसमें मजेदार गेम्स होंगे आपके साथ, और जो सही जवाब देंगे वो ग्रैंड बाजार ऑफ इंडिया, जेंट्स लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट और राजस्थान हैंडलूम हाउस की तरफ से शानदार गिफ्ट जीतने वाले हैं।

0: बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स हैं, स्पेशली अभिजीत के लाइव कॉन्सर्ट के लिए गोल्ड टिकट्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपका इंतजार कर रही हैं. आप हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा साथ में. और एमबीसी स्पोर्ट्स पे अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल 11 पर आप स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना का महामुकाबला देख सकते हैं. और घर पर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर घर से बाहर हैं और फिर भी आप मिस नहीं करेंगे. इसलिए अगर हम आपको बोलते हैं एमबीसी 1.0 ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही एप्लीकेशन अच्छी है, इसमें हर चीज़ मिलती है. रेडियो तो है ही है, साथ में आपको लेटेस्ट अपडेट्स तरह से मिलती है. तो हम ये आपको यही कहेंगे, इंजॉय कीजिए गाने और साथ में अभी फिर थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे. इंजॉय कीजिए ये वाला ब्यूटीफुल गाना, स्पेशली हमारे उन बच्चों के लिए जिनका आज बर्थडे है.
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती.

राजी आजी का बर्थडे है जो कि आज 6 महीने की हो चुके हैं। हस्बैंड राजीव और सिस्टर इन लॉ श्वेता एंड मदर इन लॉ सबिता की तरफ से और लीना जी आपको बहुत बहुत विशेष अपनी बिटिया रानी के बर्थडे की।

0: हैप्पी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:54 हो चुके हैं दोस्तों, बॉलीवुड ब्रंच को कहते हैं बाय बाय, लेकिन संडे को नहीं, दिन को और बॉलीवुड के साथ एंजॉय कीजिएगा और रात को स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना के ग्रैंड फिनाले का रोमांच देखिएगा। मैं थी आपके साथ पूनम, ख्याल रखिएगा।

0: अपना सुनते रहिए RM2 रेडियो मस्ती। अभी मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है परी का, और उसका साथ भी जरूर दीजिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे गाने चलने वाले हैं पूरे दिन के लिए, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं बूस्ट, क्योंकि आप रात को इंजॉय कर सकें अपने इस प्यारे से मैच को। तो मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
0: North, South,
1: 103.5.
0: East, West,
1: 96.4.
0: Center,
1: 99.4.
2: RM2, Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, दोपहर के 2 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से. याचना आपको नमस्कार.
4: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. कल रात पोटली में एक जानलेवा सड़क हादसा हुआ जिसमें एक राहगीर की मौत हुई. ये दुर्घटना रात करीब 8 बजे हुई भाबो में वेन्यू स्कूल के पास हुई. एक गाड़ी ओल्ड मुका रोड के निवासी देजिगे कत से टकरा गई. गाड़ी का चालक 28 साल का बताया जाता है. स्थल पर पहुंचने पर सामियों ने 70 साल के इस व्यक्ति की मौत की पुष्टि की और शव को SSRN अस्पताल ले जाया गया. जानकारियों के मुताबिक घटना के वक्त सड़क साफ थी और मौसम अच्छा था. अभी तक कोई भी चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया है. स्थल पर पाए जाने वाले सेफ सिटी कैमरों के दृश्य जल्द ही देखे जाएंगे. राष्ट्रपति दफ्तर द्वारा जानकारी दी गई है कि गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल की स्वास्थ्य स्थिति पर फैलाई जा रही खबरें बेबुनियादी और मात्र अफवाहें हैं. वे कांडोस के विक्टोरिया अस्पताल के कार्डियक सेंटर में जरूर गए हुए थे लेकिन मात्र रूटीन चेकअप के लिए, और वे स्वस्थ हैं. वे अपनी जिम्मेदारियां और अपना काम जारी रख रहे हैं. जनता से केवल पक्की जानकारियों पर विश्वास रखने की मांग की जाती है. फीफा वर्ल्ड कप का आखिरी मैच, सबसे बड़ा सबसे खास मैच, फाइनल आज रात होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच. 104वां मैच जो न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा रात 11 बजे. ये मैच आप एमबीसी स्पोर्ट्स यानी एमबीसी 11 और एमबीसी प्ले पर देख पाएंगे. विदेशी खबरों में, जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और तेज हो गया. वहां लगातार 7वें दिन मिसाइल और कामिकाज ड्रोन हमले किए गए. दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पाए जाने वाले केशम टापू पर भी मिसाइलें दागी गईं. ये थी अब तक की खबरें. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. हमें आगे दीजिए. नमस्कार.
1: NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका
1: एमबीसी

0: Radio presents One Day RJ.
1: Open to all Mauritians. बस 60 seconds से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।
2: RM2
3: Radio Musti.
2: Feel the Musti. The Musti.
4: सो वेल फ्रेंड्स, वार्म वेलकम करते हैं आप सभी का। यस, संडे आफ्टरनून है, इट्स 19th of July एंड कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के साथ लेकर आए हैं आपकी संडे आफ्टरनून को म्यूजिकल मैजिकल बनाने का हमारा ये प्यारा सा डोज। यस, इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले, जहां पर मैं हूं परी आपके साथ, साथ रहेगा आपका और मेरा 12 PM। सो थैंक यू सो मच चुनने के लिए रेडियो मस्ती को, और बस कुछ प्यारे गाने आपके लिए चलते रहेंगे। एंड नॉट टू फॉरगेट योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

सुवेल आप भी सुन रहे हैं हम जानते हैं कनेक्टेड हैं आप आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ आपकी संडे आफ्टरनून को खास एंड स्पेशल बनाने वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स कुछ गाने ऐसे जिन्हें सुनते सुनते आपका जो वीकेंड है स्पेशली आपका ये जो संडे है वो थोड़ा सा और रिलैक्सिंग एंड थोड़ा सा और हैप्पी फील करेगा वैसे आज मौसम क्वाइट ऑसम अगर ऐसे में कुछ प्लान्स बन रहे हैं तो नॉट टू फॉरगेट बैकग्राउंड में हमारे गाने आपके लिए चलते रहेंगे जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले मैं हूं परी आपके साथ योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस मोस्ट वेलकम 5499-1294 पर अभी के लिए ये गाना डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर यू यलीश साथ दे रहे हैं आप फ्रॉम सुरिनाम साथ ही सभी शाम परिवार जो हमारा साथ दे रहे हैं हैव अ वंडरफुल संडे आफ्टरनून एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं दिस वन गोज आउट फॉर यू

सुबह फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं आप आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ। 2:31 हो गए हैं संडे की ये ब्यूटीफुल आफ्टरनून जहां पर आप थोड़ा सा रिलैक्स थोड़ा सा चिलैक्स कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव सम डियर लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पेशली गोज आउट फॉर आर डियरेस्ट सुमी और उनका साथ दे रही हैं मौशमीदा एंड नीलाद्रीदा। सो मौशमी दी है एंड नीलाद्रीदा हमारा साथ दे रही हैं आप। सो हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून। कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए भी आपकी इस आफ्टरनून को खास और स्पेशल बनाने एंड दैट्स अ स्पेशल डेडिकेशन सुमी की तरफ से फॉर मौशमी दी एंड नीलाद्रीदा। ये गाना आपके नाम एंड एवरीवन हुज कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ।

तो जैसे हम कहते हैं दोस्तों कि हर एक गाना खास होता है, लेकिन कुछ गाने ऐसे हम चुनकर लाए हैं जो आपके संडे को थोड़ा सा और स्पेशल बनाए। वैसे आपका साथ भी हमारे लिए बहुत खास और स्पेशल, सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू रेडियो मस्ती एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग रेडियो मस्ती एज योर रेडियो पार्टनर। आपका प्यार, आपका साथ हमारे लिए बस यही काफ़ी है, और ये जो प्यार हम तक पहुँचता रहता है मैसेजेस डेडिकेशंस के जरिए, तो इसके लिए हम आपको तहे दिल से कहेंगे थैंक यू, धन्यवाद। एंड यहाँ पर अंजलि साथ दे रही हैं, कहती हैं गाना हो जाए फॉर समवन वेरी स्पेशल, आई लव हिम एंड आई एम गोइंग टू मिस हिम सो मच, ये है फॉर समवन वेरी स्पेशल। तो चलिए ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम। वी ऑल्सो हैव शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आप, और कहती हैं आज छुट्टी का दिन एंड एंजॉइंग विद फैमिली, सभी परिवार एक साथ एंड लिसनिंग टू रेडियो मस्ती, दैट्स रियली स्वीट, सो हैव अ वंडरफुल टाइम सभी परिवार, स्पेशली फॉर योर मॉम डैड, सभी के लिए भेज रहे हैं प्यार एंड स्पेशल विशेज। नॉट टू फॉरगेट दोस्तों, अगर साथ दे रहे हैं आप, ड्रॉप इन आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499-1294।

हमारे लिसनर्स ही हैं भाई, आपकी जो कह सकते हैं कि आपका जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, यानी कि आपके दिल का जो हाल है जो आप हम तक पहुंचाते हैं, आपका जो प्यार है जो आप हम तक पहुंचाते हैं, एंड आपका जो अपनापन है जो हम तक पहुंचता है, इट मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच हमेशा इतना प्यार हम तक पहुँचाने के लिए विथ योर मैसेजेस, विथ योर डेडिकेशंस. कभी कभार आप यहाँ स्टूडियो में आ जाते हैं हमसे मिलने, एंड एट टाइम्स जब हम बाहर जाते हैं कुछ ओबीज के लिए तो वहाँ भी मुलाकात हो जाती है, एंड इट फील्स सो सो स्पेशल कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो इतने प्यार से हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं. सो जैसे हम कहते हैं कि भाई दिल का रिश्ता है, दिल का कनेक्शन है, और ये तो हमेशा खास रहता है. अभी के लिए यहाँ पर हमारी प्यारी सी रोशनी साथ दे रही हैं आप, और अपनी रोशनी लेकर आई हैं यहाँ पर बिखेरने के लिए. सो गाना आपके नाम, एंड विशिंग यू अ हैप्पी हैप्पी संडे डियरेस्ट रोशनी, और बस हैप्पी रहिए आप, खुश रहें, मुस्कुराती रहें, और ऐसे स्वीट मैसेजेस आप हम तक पहुँचाती रहें. और इस वक्त गाना डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर मिस करिश्मा, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम समवन वेरी स्पेशल. और कहते हैं कि रेडियो मसी तो हमेशा रॉक करता है और हम हमेशा साथ निभाते हैं, ये है हमारे स्वीटेस्ट अपाडू फैमिलीज ऑफ गोशनोआ, हमेशा साथ देने के लिए शुक्रिया. एंड यहाँ पर आ गए हैं प्रीतम जी अपना प्यार लेकर, सो थैंक यू सो मच प्रीतम जी, मिल गया आपका मैसेज और हम भी हो गए हैप्पी हैप्पी. गाना आपके नाम, फॉर योर ब्यूटिफुल वाइफ वर्षा, एंड फॉर ऑल योर लव्ड वंस, हैव अ वंडरफुल टाइम, और ऐसे ही साथ निभाते रहिए. और यहाँ पर रेखा जी हमारा साथ दे रही हैं आप, थैंक यू. यहाँ पर आपका पूरा मैसेज हम तक नहीं पहुँचा है, लेकिन आई डू होप दैट आपका अगर कोई स्पेशल सा डेडिकेशन है, यू कैन सेंड मी आपका थ्रू व्हाट्सएप आपका मैसेज, और सेम नंबर 5499-1294. एंड थैंक यू सो मच रेखा जी फॉर योर मैसेज. गाना होगा आपके नाम. सोनम भोला कहती है कि आज इट्स वेरी कोल्ड एट पचित्रविये, एंड इस वक्त आप क्रिप तैयार कर रही हैं, एंजॉइंग योर टी टाइम, और डेडिकेट करना चाहती हैं गाना फॉर ऑल राम गुलाम परिवार. That's really sweet. और साथ देने के लिए शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आप सभी के नाम. And we also have our dearest Tina from Shamoni. साथ दे रही हैं आप dedicating gana for Shivam, Tejeshwari, Vimla, Babita, Nazima और सभी अपनों के नाम. And we also have यहाँ पर हमारे सभी listeners, dear listeners जो हमेशा साथ निभाते हैं. चलिए इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. Stay well connected. So परी का साथ, and it's time for your plug and play on RM2 Radio Masti.

0: Musty. Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। ये एक बड़ी चिकित्सा उपलब्धि है और देश के पूर्वी क्षेत्र के लिए पहली ऐसी सुविधा भी। फ्लक के साज अस्पताल में उच्च टेक्नोलॉजी वाला रेडियोलॉजी मशीन लगाई गई है। इसका उद्घाटन 8 जुलाई को कई अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये उपकरण रेडियोलॉजिकल जांच को अधिक सटीकता के साथ और कम समय में पूरा करने में सक्षम है। इससे आपात स्थिति में तुरंत जांच कराया जा सकता है, जिससे जल्द से जल्द इलाज भी शुरू किया जा सकता है। साल 2050 तक दुनिया भर में सालाना तौर पर कैंसर के मामलों की संख्या 35 मिलियन तक दर्ज होने की संभावना बनी हुई है। कैंसर पर 2026 की वैश्विक रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों से स्क्रीनिंग और इलाज के लिए कदम तेज करने की मांग की है। फीफा वर्ल्ड कप का आखिरी मैच, सबसे बड़ा सबसे खास मैच, फाइनल आज रात होगा अर्जेंटीना स्पेन के बीच। 104वां मैच जो न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा रात 11 बजे। ये मैच आप एमबीसी स्पोर्ट्स यानी एमबीसी 11 और एमबीसी प्ले पर देख पाएंगे। विदेश में जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और तेज हो गया। वहां लगातार 7वें दिन मिसाइल और कामिकाज ड्रोन हमले किए गए हैं। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पाए जाने वाले केश्म टापू पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आ गया डीजे, नमस्कार, शुभ।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Plug and play.
3: RM2.
2: Plug and play.

0: plug and play.
1: RM2.
2: So well friends, उम्मीद करते हैं इस वक्त आप हमारा साथ दे रहे हैं on RM2 Radio मस्ती. It's 19th of July, संडे की एक खूबसूरत सी दोपहर. 3:08 हुए हैं और अभी से लेकर 4 तक कुछ और प्यारे गाने आपके लिए हम चलाने all set और ready. So मैं हूं परी आपके साथ. It's time for your plug and play and प्यार भरा नमस्कार हमारे सभी दोस्तों को. A beautiful good afternoon to everyone who's connected हमारे इस रेडियो स्टेशन के साथ. और जैसे दोस्तों संडे आता है, लगता है कि भाई सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, यानी कि पूरे हफ्ते के लिए हमें सेट हो जाना है. लेकिन संडेज आपको याद दिलाता है कि थोड़ा सा स्लो डाउन करना भी ज़रूरी है. हमेशा भाग दौड़ करते रहना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. मंडे टू फ्राइडे काफ़ी भाग दौड़ कर लेते हैं, सैटरडे संडे होता है रिलैक्स एंड रिचार्ज होने के लिए. सो बस अभी के लिए तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स जो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इस आफ्टरनून को खास और स्पेशल बनाने. और बस जो गाने चला रहे हैं तहे दिल से आप सभी के नाम डेडिकेट कर रहे हैं. और अगर आप भी कनेक्टेड है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है. बिल्कुल जी, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर आपका इंतजार. सो फॉर नाउ वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना फ्रॉम द फिल्म हे बेबी एंड टू वंडरफुल सिंगर्स श्रेया घोषाल, सोनू निगम. उनके सभी फैंस एंड हमारे सभी लिसनर्स, हमारे सभी दोस्त जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सभी के नाम एंड विशिंग यू ऑल अ हैप्पी संडे.

तो चलिए दोस्तों आपके लिए कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हम लेकर आए हैं, कुछ गाने जो हमेशा से रहे हैं पॉपुलर एंड कुछ गाने ऐसे जो शायद आपके दिल के साथ कनेक्टेड है. So this one goes out जो सभी फैंस है उदित नारायण के, एक ऐसी आवाज ऑफ बॉलीवुड जिसका शायद कभी कोई रिप्लेसमेंट ना हो. उनके जैसी आवाज तो शायद ही सुनने को मिले और उनकी आवाज ऐसी है जिसमें प्योरिटी है, सिंसियरिटी है एंड ऑफ कोर्स एक स्वीटनेस जो सीधा दिल तक पहुंचती है. सो एवरीवन हु इज कनेक्टेड हमारे साथ, वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके संडे को और भी खास और स्पेशल बनाने. चलिए डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम फ्रॉम द फिल्म पापा कहते हैं. एंजॉय दिस वन.

0: Tag and play.
1: RM2.
2: अभी के लिए तो हमारा साथ दे रहे हैं आप ऑन रेडियो मस्ती जानते हैं आप संडे आफ्टरनून 2 से लेकर 4 बजे तक होता है योर प्लग एंड प्ले और मंडे टू फ्राइडे लेकर आती हूं मैं आपके लिए बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स बॉलीवुड की दुनिया में हर हफ्ते हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है नई फिल्म्स नए सॉन्ग्स नए सेलिब्रिटीज की एक्साइटिंग अपडेट्स एंटरटेनमेंट का जो डोज है वो आपको मिलता रहता है इन योर बॉम्बे टॉकीज और आज की हमारी प्लेलिस्ट थोड़ी सी कूल है बिकॉज यही तो मौका मिलता है जहां पर हम कुछ कूल सॉन्ग्स आपके लिए चला सकते हैं और आपको भी तो मौका मिलता है ओनली ऑन अ संडे जहां पर आप रिलैक्स होकर आराम से गानों को एंजॉय कर सकते हैं सो बस थैंक यू सो मच आप इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं और जैसे हमारे लिसनर्स हैं एकदम स्वीट एकदम स्पेशल तो गाने भी कुछ ऐसे ही चुनकर लाए हैं सो वेल अभी के लिए कुछ मैसेजेस कुछ डेडिकेशंस जो आपने इतने प्यार से पहुंचाए हैं ऑन 5499 1294 सो यहां पर जो गाना है अनुराधा जी हमारा साथ दे रही हैं आप वॉर्म वेलकम आपका एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल मैसेज गानों को पसंद कर रही हैं शो को पसंद कर रही हैं सो गाना होगा आपके नाम एंड सेंडिंग लोड्स ऑफ लव टू यू फॉर द सुपर स्वीट मैसेज सभी मधु परिवार हमारा साथ दे रहे हैं फ्रॉम शमे ग्रेनिये सो आपका भी हम वेलकम कर रहे हैं कहते हैं सफुल ऑन फैमिली टाइम जहां पर आज सब एक साथ मिलकर घर पर इकट्ठा हुए हैं और सुन रहे हैं रेडियो मस्ती भी और साथ ही साथ कुछ मस्ती चल रही है परिवार के साथ यू आर स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम सो मधु परिवार मेक सम ब्यूटिफुल मेमोरीज गाना होगा आपके नाम एंड थैंक यू सो मच

0: किया है रेडियो मस्ती के साथ एंड वी आल्सो हैव बोला की परिवार हमारा साथ दे रहे हैं आप एंड वी ऑल हैव अ नैंसी जो डेडिकेट कर रही है गाना अपनी स्वीट फैमिली के नाम विशिंग एवरीवन अ हैप्पी हैप्पी संडे और चलिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नलिनी जी थैंक यू नलिनी जी डेडिकेट कर रही हैं गाना फॉर मामा राजकुमारी जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और 19th ऑफ जुलाई उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेस सो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली लवली मैसेजेस आपकी खुशियों में हम भी शामिल हो रहे हैं बस इन्हीं मैसेजेस डेडिकेशन के जरिए तो इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखिएगा मैसेज के लिए नंबर तो आप जानते हैं इट्स 5499124 मैं हूँ परी आपके साथ 4 PM राइट हियर ऑन आरएफ टू रेडियो मस्ती इट्स योर प्लग एंड प्ले
1: हलचल

मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो बोलो ना।

And well, यहाँ पर मिस्टर श्याम हमारा साथ और कहते हैं कि ओनली परिवार है जो मैटर करता है और कहते हैं कि इस बॉन्डिंग को ऐसे ही बनाए रखने के लिए शुक्रिया थैंक यू जी बस गानों के साथ आप भी कनेक्ट कर रहे हैं एंड इट्स रियली स्पेशल सो अभी अभी सभी परिवार साथ है और इट मींस अ लॉट पूरा 25 लोगों का परिवार एक साथ सब साथ मिलकर इस दिन को आप एंजॉय कर रहे हैं आज के ज़माने में तो इट मीन्स अ लॉट सो बस आपका परिवार हमेशा ऐसे ही साथ रहे खुश रहे एंड साथ ही यहाँ पर हमारे ड्राइवर साहब भी है जो पूरे परिवार को इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं सो थैंक यू सो मच हैव अ वंडरफुल टाइम सभी परिवार के लिए स्पेशल विशेज दैट्स कमिंग फ्रॉम आनंद बाबिया एंड परिवार चलिए सो एक एवरग्रीन सॉन्ग आप सभी के नाम हैव अ वंडरफुल संडे एंड आपका परिवार ऐसे ही साथ रहे हंसता रहे मुस्कुराता रहे एंजॉय दिस वन

वेल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार से हमारा साथ दिया। इस वक्त ललिता जी साथ दे रही हैं और डेडिकेट कर रही हैं गाना सभी कलीग्स के नाम, सोनिया, प्रीमा, रीना, सुनीति, पालवा, और वी ऑल्सो हैव दिनिशा, सिमला, राकेश, रवि एंड सभी जीतन परिवार के नाम एक ब्यूटीफुल सा डेडिकेशन। Davison Lalmati se saath de rahe hain aap, so have a wonderful time and well, once again, loads of love to sabhi babia parivar. Hope you're having a nice, nice time, so enjoy your Sunday and aise hi saath dete rahiye. Abhi ke liye it's time for Pari to say goodbye. Aa rahe hain Sanjay lekar kuch aur pyare gaane aapke liye, aur jaate jaate ek aur beautiful romantic gaana aap sabhi ke naam. That's in the voice of Arijit Singh, aur isi gaane ke saath Pari signing off. Mulaqat hogi jald. Take care, keep smiling and stay safe.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: शाम के चार बज रहे हैं। सुनते समाचार यशना जी के साथ नमस्कार।
6: नमस्कार संजय, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। ये एक बड़ी चिकित्सा उपलब्धि है और देश के पूर्वी इलाके के लिए पहली ऐसी सुविधा भी। प्लग के साज अस्पताल में उच्च टेक्नोलॉजी वाला रेडियोलॉजी मशीन लगाई गई है। इसका उद्घाटन 8 जुलाई को कई अतिथियों की मौजूदगी में किया गया। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये उपकरण रेडियोलॉजिकल जाँच को अधिक सटीकता के साथ और कम समय में पूरा करने में सक्षम है। यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए जाने के 20 साल बाद अप्रवासी घाट ने इस सालगिरह को

0: एक नए लक्ष्य के साथ मनाया है। यादों को संजो एक कर रखना और साथ में मॉरिशस की विरासत को महत्व देना, इस अवसर पर कई परियोजनाओं का ऐलान किया गया। आज सुबह आयोजित एक विशेष समारोह में नए मराठी पुरोहितों को उनका सर्टिफिकेट दिया गया। कुल 52 लोग जिनमें पुरुष, महिलाएं और कई नौजवान शामिल हैं। पालमा मराठी सभा में इसका आयोजन किया गया। इसका मकसद है पीढ़ी दर पीढ़ी मराठी संस्कृति को बढ़ावा देना। फीफा वर्ल्ड कप का आखिरी मैच, सबसे बड़ा सबसे खास मैच, फाइनल आज रात होगा। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच 104वां मैच जो न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। रात 11 बजे ये मैच आप देख पाएंगे एमबीसी स्पोर्ट्स यानी एमबीसी 11 और एमबीसी प्ले पर। विदेश में जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज हो गया है। वहां लगातार 7वें दिन मिसाइल और कामिकाज ड्रोन हमले किए गए। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। पायुत वाक्वामी 2 महीने की 2 month ओल्ड शिशु मिशिका संपत की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 4:30 बजे उनके पिता कृष्णा संपत के मकान पायुत वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मैल की श्मशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 4:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: कभी सोचा है
3: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस,
3: डोंट मिस इट।
4: म्यूजिक टक टक
5: आर एम टू रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: कौन बनेगा चैंपियन? आखिर वो दिन आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा 4 साल से लोग कर रहे थे। साल 2022 में अर्जेंटीना बनी थी चैंपियन टीम, क्या इस साल भी वो बनेगी दूसरी बार के लिए लगातार चैंपियन? इस सवाल का जवाब आज शाम हम खुद यहाँ पर होंगे इन द स्टूडियो टू गिव टू यू। सबों को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार, आदाब एंड वेरी वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। यस, मस्ती तो भरपूर होगी लेकिन साथ ही साथ होंगे गेम्स और हमारे सुनने वालों को मिलेंगे इनाम। स्पेशल प्रोग्राम टू कम आज फ्रॉम 10 अप टिल जब तक कि मैच समाप्त न हो जाए।

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: सो हमने आपसे सवाल किया, टेल मी द नेम, टेल अस द नेम ऑफ द फर्स्ट स्कोरर ऑफ द 10 गोल वाला मैच यस्टरडे, काउंटिंग फॉर द थर्ड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड कप 2026। एंड आई कुड लिटरली ही बहने अपने भाई से पूछते हुए या लेडीज अपने पति से पूछते हुए, किसने who scored? And the real answer, the good answer is Declan Rice, the captain, the one day captain of the Free Lions, jinhone sabko raah dikhai. So it's Declan Rice, aur uske baad aur 5 goals aaye from the English team, aur beech mein France ke bhi 4 goal aaye. It was a beautiful match to watch on NBC TV Sports 11. और आज भी यादगार होगा। चले चले चले बैक टू अवर क्वेश्चन। सो किसके नाम जाता है द टिकट फॉर द कंसर्ट ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य, हु विल बी लाइव इन कंसर्ट ऑन दिस कमिंग सैटरडे। और बहुत सारे सही जवाब आए, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया, इट इज समवन फ्रॉम इलू। लगता है कि आई कैन सी वहां पर छटक रहे हैं इलो के इलाके में। यस, द विनर इज शेवी चिरकूट फ्रॉम इलो। शेवी जी, आपको बधाई। आपको आना होगा ड्यूरिंग द वीक विद योर आईडी कार्ड at the customer care department of NBC. अपना कार्ड ले, अपनी टिकट ले,
3: कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास,
2: and enjoy the concert.

बहुत से लोगों ने हमारे इस क्विज प्रोग्राम में भाग लिया, बहुत से लोगों ने सही जवाब भी दिया। अगर आप ऐसे ही नाम जीतना चाहते हैं तो डोंट मिस आवर स्पोर्ट्स फिएस्टा, आज फुटबॉल वर्ल्ड कप फिएस्टा, जहां पर बहुत सारे ऐसे ही नाम होंगे। आज फ्रॉम 10 PM अप टिल 12, एक के बाद एक। ज्वाइन द टीम, ज्वाइन द प्रोग्राम एंड ज्वाइन द फुटबॉल फिएस्टा।

0: Get ready for the biggest World Cup ever!
1: 2026 FIFA World Cup.
0: Radio Masiki team ke saath
1: chaliye
0: United States, Canada or Mexico.
1: Radio Masiki ke saath
0: World Cup magazine.
2: जी हमारे सो निर्णायक दिन आ चुका है, निर्णायक समय कुछ ही समय में, और हमारे स्पोर्ट्स गुरु हमारे साथ हैं इस समय ये बताने के लिए कि ये डिसिसिव नाइट कैसे होने वाला है और कहां पर क्या कुछ होने वाला है। हेलो अरविंद।
3: हेलो संजय। हेलो लिसनर्स। सो एग्जैक्टली इट्स द डी डे रूजी फाइनल 2026 वर्ल्ड कप का। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दैट फॉर इयर्स। Would have been much more fantastic अगर इंग्लैंड या फ्रांस फाइनल में होते। मॉरिशस के नजरिए से मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अर्जेंटीना और स्पेन दे डोंट डिजर्व देयर प्लेस, वो फुल्ली डिजर्व करते हैं, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस कुछ और मामला होता। एनीवे, लेकिन ऑब्वियस होगा था उस तरफ, दैट्स फॉर श्योर। अर्जेंटीना के फैंस है बहुत, स्पेन के फैंस भी है, तो वी कैन से एक तो वहाँ न्यूयॉर्क में होने वाला है जश्न, जो मैच के बीच में पहली बार ये सुपर बोल स्टाइल होगा, एक 25 मिनट शो जिसमें शकीरा और मदोना ये कुछ नामी आर्टिस्ट होंगे, और ये सब आप लोग टीवी पे देख भी सकते हैं स्पोर्ट्स 11 पर लाइव, और यहाँ पर रेडियो मस्ती में as in the last semi final is bar bhi we are exact au rendezvous, bahut gifts hain aap logon ke liye, will be asking questions, sanjay wahan par studio mein rahenge hi, aur hum log morsha se bahar jahan par ambiance hai wahan par jayenge, rive du rampa youth center mein giant screen lagaya gaya hai, to wahan par bhi gifts diye jate hain aur games hote hain aur bahut kuch hota hai, aur ye bhi hai trioli mein aaj wahan par market प्लेस के पास एक एक इनॉग्रेशन है जो मार्केट के ऊपर, वहां पर जो एक मल्टीपर्पोज हॉल बनाया गया है और आज इसका इनॉग्रेशन है 7 बजे। उसके बाद वहीं पर MSDC द्वारा 2 giant screen लगाए गए हैं जिसमें ये मैच लाइव दिखाया जाएगा। सो 2 giant screen फ्रियोली में, इधर जोपा में भी, युग सेंटर में, और बहुत ऐसी जगह है जहां पर ये सब हो रहे हैं। आई हर्ड अबाउट रोजबेल, वहां पर भी चारों तरफ ये होगा, काफी पोखरी में भी, पोखरी में आपको पता है कि उधर कदाफी स्क्वायर में कितने मैच दिखाए गए, तो आज भी हम शूट वहां पर होंगे बहुत से लोग, तो ये इस ऑब्जेंस को हम लाएंगे आप तक, विल बी रोमिंग अराउंड देखने के लिए क्या कुछ हो रहा है, और बेशक स्टूडियो में भी काफी जानकारियां मिलेंगी। विल बी टॉकिंग टू आवर स्पोर्ट्स गुरुज जो है सौ जुगाड़ शंकर से बात करेंगे, विल बी हैविंग दिशन रतन फ्रॉम इंग्लैंड जो इस मैच पर अपने एनालिसिस देंगे, और बेशक हमारे लिसनर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे ऑडियंस जो अलग अलग ऑडियंस हैं उनसे भी हम बात करेंगे, किस तरह से ये माहौल वे लोग देंगे, और आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज आई सेड, प्लेंटी ऑफ गिफ्ट, सो बी देयर फॉर द ग्रैंड फाइनल अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन।
2: अरविंद,
3: यस,
2: कल रात एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए, आज मेसी क्या करेगा?
3: स्कोर करेगा
2: यानी कि

0: मैच में भी मैच, मैच के अंदर मैच,
1: मैच तो एक एक अलग मोटिवेशन हो जाता है इस मैच के लिए, मेसी के लिए एक पर्सनल माइलस्टोन होगा, लेकिन आई थिंक ही विल प्रायोरिटाइज हिज टीम रादर देन हिज पर्सनल माइलस्टोन, लेकिन उसके पर्सनल माइलस्टोन में ही अर्जेंटीना की भलाई है। सभी लोग पता है कि अर्जेंटीना विदाउट मेसी विदाउट इमेजिन, लेकिन मेसी को जिसे पिछले मैच में he did score, लेकिन दो असिस्ट उसकी ओर से आए थे,
0: और wonderful assist, wonderful assist,
1: wonderful assist। तो अगर उस रोल तक वो रहे और अगर उसको रहना पड़े, he will sacrifice the personal milestone। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये मैच शुरू में टाइट होने वाला है।
0: The Argentinian fury।
1: हाँ, ये तो बाद में आएगा ही, लेकिन स्पेन को पता है अभी किस तरह से डिफेंड करने के लिए, लेकिन अर्जेंटीना अल्टीमेटली दे कम आउट विद समथिंग। तो आज ये मैच मुझे लगता है इट्स नॉट गोइंग टू बी ए गोल फिएस्टा कल की तरह, टाइट होगा, और वर्ल्ड कप के फाइनल में हमेशा टाइट ही होता है, एवरीवन नोज।
0: वर्ल्ड कप हमेशा ये होता है कि जो मैच जो क्लासमा होता है अधिकतर वो एक गोल फिएस्टा होता है, बहुत सारे गोल्स होते हैं। एक जमाने में 12 गोल भी हुए थे।
1: हाँ, उसमें यह है ना कि अगर जीत गए तो जीत गए, हार गए तो क्या बात है। सो दे प्ले फ्रीली, दे प्ले ओपनली, लेकिन यहाँ पर फाइनल में बड़ी से बड़ी टीम भी थोड़ा जिसे हदस जाते हैं, दे क्रिस्पी हो जाते हैं, नो सो दे वेट फॉर समथिंग स्पेशल टू हैपन। दैट्स व्हाई बहुत से फाइनल जस्ट मैंने जो फाइनल जो है या फिर पेनाल्टी में गए हैं 2010 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट वाज इन साउथ अफ्रीका, वहां पर मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाकर स्पेन ने नेदरलैंड्स को 1-0 से हराया था। और पिछले वर्ल्ड कप में सभी को पता है इट वेंट अप टिल पेनाल्टीज, फ्रांस को हराया था अर्जेंटीना ने। सो इट्स नॉट इट्स पॉसिबल कि आज भी ऐसा हो, और ऐसा होगा तो दैट मीन्स सुबह 2 बजे तक तो जागना पड़ेगा ही और कल सोमवार को कितने लोग क्या कहते हैं नए जी को दुनिया कर सकते
0: सो मिलते हैं अरविंद आज फ्रॉम 10 PM ऑन रेडियो मस्ती फॉर द वर्ल्ड कप फिएस्टा।
1: श्योर, कैच यू देयर।
2: FIFA World Cup 2026, 11 June से 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: यस, द फुटबॉल फीवर अक्रॉस मॉरिशियस. और हमने देखा कि बहुत सी संस्थाओं में, बहुत सी जगहों पर दे आर पुटिंग अप फन ज़ोन्स, जहां पर हित मित दोस्त सभी आकर एक साथ में फुटबॉल देखेंगे एंड दे आर गोइंग टू एंजॉय दिस फुटबॉल फीवर. एक चार साल में जो एक बार आता है. एंड यहां पर इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उमा जी फ्रॉम स्विट्जरलैंड. लिखती हैं, लिसनिंग टू योर ब्यूटीफुल सिलेक्शन सन जी एंड ट्रम्प बट व्हेन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड एंजॉयिंग द ट्रिप. सो सो नाइस ऑफ यू उमा जी. बस आपसे पूछना है कि आपके यहाँ मौसम कैसा है. इज इट हॉट? लेकिन आप स्विट्जरलैंड से बोल रही हैं. स्विट्जरलैंड में तो आई डोंट थिंक, वहां के नज़ारे तो क्या कहें. Wishing you a very nice listening.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: ओएमजी रेडियो मस्ती।
2: बहुत से लोगों की नींद तो आज की रात उड़ जाएगी, और खासकर जिन जिन लोगों ने कल देर तक गोल्ड फिएस्टा देखा बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, आशा करते हैं कि यू हैव बीन एबल टू रिक्यूपरेट ड्यूरिंग द डे। हमारी मत पूछिए, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। सुबह से आई एम ऑन द रन एंड आई विल बी हियर अप टिल द मैच फिनिशेस, एंड इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग डे टुमारो। सो लेट्स होप इट राउंड्स अप इन रेगुलर टाइम। ऐसे बहुत सारे लोगों को जागना नहीं पड़ेगा इन एडिशनल टाइम और इवन पेनाल्टी शूट आउट, लेकिन इट्स द लास्ट डे सो लेट्स एंजॉय इट टू द मैक्स। फिलहाल द टाइम इज टिकिंग, 6 hours to go. यहाँ पर माला जी ने हमें मैसेज किया, जय सियाराम भाई जी, इट्स वेरी हॉट इन कनाडा जहाँ पर आग लगी हुई है, आई मीन द फॉरेस्ट एसेंजी जैसे कहते हैं। लेट्स होप दैट दे ऑल रिकवर इट वेल, एंड बो कुराज टू ऑल दोज फायर फाइटर्स जो उसको कंट्रोल में लगे हुए हैं।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: इस सेकंड आवर के अंत में लेट्स हैव अ लुक एट योर मैसेजेस, योर बर्थडे मैसेजेस। विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू पापा सतीश रामदीन। Wishing him good health from Priya Padu, New Grove, and from Rina Basgit Ji. Jitne bhi log aaj apna janmdin mana rahe, very happy birthday to you from the whole Radio Masti team. Hi Sanjeev, main hu Renu from Saint Julia Village. Big fan of Radio Masti. Let's go for Spain tonight. Yes, why not? Bahut अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं एंड स्पेन विन हैज अ गुड चांस ऑफ विनिंग 50% ऑफ चांसेस जस्ट लाइक अर्जेंटीना। हाय संजीव, मैं हूं निशा गोकुल फ्रॉम श्रीमग्रेनिया लगाना। मेरे परिवार के लिए खासकर बेटी राया, बेटी तवीश, पति रमेश के लिए एंड फ्रॉम द होल गोकुल फैमिली, जितने भी लोग श्रीमग्रेनिया में हमें हमारे साथ निभा रहे हैं, आपको हमारा सलाम। हैप्पी बर्थडे टू ऋषभ बामा from a mom Sudevi Papa Ravine and brother Aniket from Koirachi, beautiful place Koirachi. And this one, next song to my mom who is in the kitchen preparing dal puri. Aha, so bon courage to all those busy in the kitchen. Thodi der mein aap sunenge samacharon, samacharon ke baad you'll be back together with me up till 7 for more of good music. Bon courage to all those who are doing this work. And this one also going to Souverain, Habib Souverain. All the very best.

नमस्कार। 19 जुलाई 2026 रविवार की शाम स्वागत आप सभी का इस बुलेटिन में। नजर सबसे आगे सुर्खियों पर। विश्व कप के फाइनल में अब कुछ घंटे बाकी। मॉरिशस समेत दुनिया भर में फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह। विश्व कप का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। स्थानीय श्रमिकों की कमी के बीच विदेशी कर्मचारी मॉरिशस की अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। कृषि उद्योग और निर्माण जैसे क्षेत्रों में उनका योगदान सराहनीय। 2050 तक कैंसर के नए मामलों की संख्या दुगनी हो सकती है, जिससे हर साल दुनिया भर में लगभग 35 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। अपने वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट के संस्करण में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देशों से रोकथाम और शीघ्र जांच और उपचार को मजबूत करने की अपील की। विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच हमलों के बीच मध्य पूर्व में जल और बिजली का बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ। वहां पर युद्ध तेज किया गया।

0: बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। फीफा वर्ल्ड कप का आखिरी मैच, सबसे बड़ा सबसे खास मैच, फाइनल आज रात होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। 104वां मैच जो न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा रात 11 बजे। ये मैच आप एमबीसी स्पोर्ट्स यानी एमबीसी 11 और एमबीसी प्ले पर देख पाएंगे। सुनिए,
1: अर्जेंटीना आज 2026 वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन के खिलाफ अपना खिताब बचाने उतरेगा। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब यूरो कप का मौजूदा चैंपियन स्पेन और वर्ल्ड चैंपियन कोपा अमेरिका का मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना एक दूसरे के आमने सामने होंगी। एक तरफ अर्जेंटीना है जो वर्ल्ड कप की मौजूदा चैंपियन है और लियोनेल मेसी के दौर में एक और ट्रॉफी अपने नाम करना चाहती है। दूसरी तरफ स्पेन की टीम जो अपने नए और टैलेंटेड खिलाड़ियों के दम पर दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीतने की कोशिश कर रही है। यह फाइनल मुकाबला दुनिया के दो सबसे बड़े फुटबॉल दिग्गजों की टक्कर है। एक तरफ मेसी है जो अपना तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है और दूसरी तरफ स्पेन के युवा सितारा लामिन यामाल है जो अपनी टीम की नई ताकत का चेहरा बन चुका है। सेमीफाइनल में फ्रांस को हराकर स्पेन की टीम का फॉर्म लगातार बेहतर हुआ है। फ्रांस के खिलाफ मैच में उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उन्हें खिताब का दावेदार क्यों माना जा रहा था। साल 2010 में साउथ अफ्रीका में चैंपियन बनने के बाद ये पहली बार है जब आज 19 जुलाई को स्पेन की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। साल 2010 में स्पेन ने अपना फाइनल खेला था और नेदरलैंड्स को 1-0 से हराया था। वही अर्जेंटीना की टीम की बात करें तो ग्रुप स्टेज में अल्जीरिया, जॉर्डन, ऑस्ट्रिया को हराने के बाद उन्होंने नॉकआउट स्टेज में केप वर्दे, इजिप्ट, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड को बाहर का रास्ता दिखाया था। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी अपने कार्य में अब तक वर्ल्ड कप में 21 गोल स्कोर कर चुका है। 39 साल की उम्र में मेसी शायद आज रात अपने कार्य का आखिरी वर्ल्ड कप मैच खेल रहा है। इस 8 बार के बालों दो विजेता ने वर्ल्ड कप के इतिहास पर ऐसी छाप छोड़ी है जो किसी और ने नहीं छोड़ी, जिसमें दो फाइनल मैच में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड शामिल है। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच वर्ल्ड कप के इतिहास में 60 साल पहले सिर्फ एक ही बार मुकाबला हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना की जीत हुई थी 2-1 से। अर्जेंटीना और स्पेन का एक ऐतिहासिक और शानदार फाइनल मुकाबला एमबीसी 11 पर लाइव दिखाया जाएगा। मैच से पहले रात 9 बजे स्पोर्ट्स टीम की तरफ से एक खास प्री मैच शो भी दिखाया जाएगा।
0: और कल तीसरे स्थान के लिए मैच खेला गया फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। एक तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाने के लिए इंग्लैंड की टीम आखिरी तक रली। गोल्स की बारिश दोनों तरफ से हुई लेकिन अंत तक आते आते कप से हाथ धो देने वाला इंग्लैंड तीसरे स्थान पर आया। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
2: FIFA World Cup 2026 bronze final winners, England.
1: 2026 का वर्ल्ड कप 1966 के बाद से इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप अभियान रहा है, जहां 48 टीमों वाले इस 23वें एडिशन में थ्री लायंस तीसरे स्थान पर रहे। आज रविवार की सुबह एक बेहद रोमांचक मैच में टोमास टुखेल की टीम ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। हाफ टाइम तक अंग्रेज पहले ही 4-0 से आगे चल रहे थे, जिसमें पहला गोल तीसरे मिनट में ही
3: into that far corner. You see there, Maignan just does not move. He does not see it.
1: Declan Rice ने एक बेहतरीन लॉन्ग रेंज शॉट के जरिए किया। पहले हाफ में फ्रांसीसी टीम ने तीन और गोल खाए, जिसमें कुनसा ने 18 मिनट में गोल स्कोर किया और बुकायो साका का डबल रहा।
3: Sooner rather than later.
4: It's a lovely turn from Eze and a brilliant pass into Saka.
1: अपनी टीम में जान फूंकने के लिए जीजे देशों ने उपामेकानो, जी बाकोला और देम्बेले को मैदान में उतारा और इसका असर तुरंत देखने को मिला। एम्बापे ने 48

0: 20वें मिनट में अंतर कम किया। आखिरकार आक्रामक रुख अपनाते हुए फ्रांसीसी टीम ने पलटवार किया और बारकोला ने एक गोल स्कोर किया। स्कोर 4-2 हो गया। 66वें मिनट में एम्बापे के एक और शॉट ने मैच को पूरी तरह से रोमांचक बना दिया। इसके बाद स्पेंस के एक मूव पर एक पेनाल्टी, मैग्नन के सामने साका ने दाई ओर शॉट मारकर पेनाल्टी को गोल में बदला और अपनी हैट्रिक पूरी की। इंजरी टाइम में देम्बेले ने स्कोर को 5-4 कर दिया, लेकिन मैच के आखिरी पलों में जूड बेलिंगम के एक आखिरी गोल के साथ देशों के दौर का अंत एक हार से हुआ। फाइनल स्कोर इंग्लैंड 6 फ्रांस 4।
1: France 4, England 6. Remarkable.
2: सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे गन्ने के खेतों में, कारखानों या फिर निर्माण स्थलों में इनकी मौजूदगी बढ़ती जा रही है। देश में कर्मचारियों की कमी के चलते ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कामगार अलग अलग क्षेत्रों में काम करने आ रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में इनकी महत्वपूर्ण योगदान है। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
3: ये एक ऐसा काम है जो अभी भी ये कामगार सीख रहा है। पिछले एक साल से मॉरिशस आया हुआ ये मलागासी श्रमिक यहाँ खेतों में काम करता है। दिन के कामकाज में उसे अपने तीन हमवतनों की मदद मिलती है। रिकाइल आल्सो कहता है, मलागास्कर में ज्यादा काम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ काम करने आया हूँ। हम सुबह 6 बजे से शुरू करते हैं और दिन के 3 बजे तक काम करते हैं। मुझे यहाँ एक नया अनुभव मिला है और शायद एक दिन मैं अपने देश में भी ऐसा काम कर सकूं। स्थानीय स्तर पर कामगारों की कमी के चलते लामागी स्थित इस जमीन के मालिक को काम सुचारू रखने के लिए विदेशी कामगारों की आवश्यकता पड़ी। माहेन राम गुलाम कहते हैं, कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए मॉरिशन कामगार नहीं है, इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। पिछले कुछ सालों के अंतर्गत मॉरिशन इकोनॉमी में विदेशी कामगारों की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हुई है। 31 मई तक मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण सेक्टर में ऐसे 38,221 कामगार पाए जा रहे थे। ये दोनों सेक्टर सबसे ज्यादा विदेशी कामगारों को रोजगार देते हैं। मॉरिशस में सबसे ज्यादा भारतीय, फिर बांग्लादेशी और फिर नेपाली कामगार पाए जाते हैं।
4: हर महीना सैलरी मिलता है, रहने का खाने का सब अच्छा है और हम लोग बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं हमारा घर पे परिवार में। बहुत बहुत तरक्की हुआ मेरा लाइफ में यहाँ के। मैं घर बनाया, घर पे बहन का शादी कराया। काम अच्छा से करते हैं, मंडे से सैटरडे तक, फिर संडे को हम लोग बाहर जाते हैं घूमने का।
5: 10 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे इस कंपनी में। अच्छा कंपनी है, 3-4 बार रिटर्न आया मैं। बंगला इंडिया मिलके तो अच्छा काम करते हैं हम लोग, मॉरिशस वाले इतना काम नहीं करते हैं। इंडिया बंगला है, कंपनी चल रहा है।
6: मेसन का काम करता था, टाइल मेसन का, यहाँ पे वही कर रहा हूँ। सही है, खुश हूँ मैं।
3: नोवेलफोंस के इस टेक्सटाइल कारखाने में 10 साल से ज्यादा समय से विदेशी मजदूर काम करते हैं। वे वहाँ श्रम शक्ति का 85% हिस्सा हैं। ठेकेदार बिशम पोमेसो कहते हैं, अगर मेरे यहाँ से विदेशी कामगारों को हटा दिया जाए तो मेरा काम बंद हो जाएगा। मॉरिशन लोग आते हैं और कुछ दिन काम करके चले जाते हैं। इन विदेशियों को ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता, वे अपने परिवारों को छोड़कर यहाँ आते हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, वे हमारे लिए परिवार की तरह हैं। विदेशी कामगारों पर निर्भरता कई कंपनियों के सामने मौजूद वास्तविकता दर्शाती है। हालांकि इससे श्रम मंडी के भविष्य को लेकर सवाल भी उठते हैं। अर्थशास्त्री भविष्य जगन्नाथ कहते हैं, विदेशी मुद्राएं कमाने के लिए और वृद्धि लाने के लिए पैदावार और निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें मजबूरन विदेशी कामगारों पर निर्भर होना पड़ रहा है, नहीं तो अगर उत्पादन कम हुआ तो अर्थव्यवस्था के लिए परिणाम बुरा होगा। दूसरी तरफ विदेशी कामगारों का यहाँ आना इसलिए अच्छा है क्योंकि वे अपना अनुभव यहाँ बांटते हैं, लेकिन हमें एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है जहां पूरी निर्भरता विदेशी कामगारों पर न हो, जबकि लंबी अवधि के लिए ये भी अच्छा है कि ये विदेशी हमारे स्थानीय श्रमिकों को प्रशिक्षित करें। इन कामगारों के लिए मॉरिशस मुख्य रूप से जीवन बेहतर करने और अपने परिवारों को बेहतर भविष्य देने की संभावना जैसा है। 2026 की पहली तिमाही के दौरान ऐसे कामगारों की तरफ से 2.9 बिलियन रुपए उनके देशों की तरफ भेजे गए हैं।
2: ये एक बड़ी चिकित्सा उपलब्धि है और देश के पूर्वी इलाके के लिए पहली ऐसी सुविधा।

0: सुविधा भी फ्लैक केस अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल में उच्च टेक्नोलॉजी वाला रेडियोलॉजी मशीन लगाया गया है। इसका उद्घाटन 8 जुलाई को कई अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये उपकरण रेडियोलॉजिकल जांच को अधिक सटीकता के साथ और कम समय में पूरा करने में सक्षम है। इससे आपात स्थिति में तुरंत जांच कराया जा सकता है, जिससे जल्द से जल्द इलाज भी शुरू किया जा सकता है। साल 2050 तक दुनिया भर में सालाना तौर पर कैंसर के मामलों की संख्या 35 मिलियन तक दर्ज होने की संभावना है। कैंसर पर 2026 की वैश्विक रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों से स्क्रीनिंग और इलाज के लिए कदम तेज करने की मांग की। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: 2050 तक कैंसर के मामलों की संख्या दोगुनी हो सकती है। कुछ दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन और कैंसर पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की ओर से प्रकाशित कैंसर की स्थिति की वैश्विक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। राष्ट्रसंघ के महासचिव के प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने कहा,
2: कैंसर क्लेम्स मोर देन 26,000 लाइव्स एवरी डे विद एन एस्टिमेटेड 20.6 मिलियन न्यू केसेस एंड क्लोज टू 10 मिलियन डेथ्स एनुअली। इट रिमेन्स द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली आफ्टर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। WHO वार्न्स दैट विदाउट अर्जेंट एक्शन द एनुअल कैंसर केसेस आर प्रोजेक्टेड टू राइज टू नियरली 35 मिलियन बाय 2050।
1: WHO के मुताबिक 10 में से 4 कैंसर से बचा नहीं जा सकता। अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि दुनिया में डायग्नोस्टिक किए गए कैंसर के नए मामलों में करीब 40% न बचने वाले मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि तंबाकू, शराब, इन्फेक्शन और हद से ज्यादा वजन। दूसरी तरफ रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख कि कैंसर दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों को भारी रूप से प्रभावित कर रहा है। देशों में इलाज उपलब्धता को लेकर भी काफी अंतर पाए जा रहे हैं।
2: The report also reveals persistent and widening inequities in access to prevention, diagnosis, treatment and supportive care. Its analysis shows, for example, that while 87% of women with breast cancer survive at 5 years after their diagnosis in high-income countries, only 42% survive in low-income countries.
1: चुनौतियों के बावजूद WHO ने कहा कि कई ऐसे सकारात्मक संकेत दिखाई दिए हैं, जैसे कि कुछ देशों में तंबाकू सेवन में कमी और पैपिलोमा वायरस के खिलाफ टीके की बदौलत सर्विकल कैंसर के मामलों में गिरावट। संगठन की ओर से सरकारों से कैंसर के खिलाफ संघर्ष और बचाव के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं में अतिरिक्त निवेश करने की मांग की जा रही है।
0: यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए जाने के 20 साल बाद अप्रवासी घाट ने इस सालगिरह को एक नए लक्ष्य के साथ मनाया। यादों को संजो कर रखना और साथ में मॉरिशस की विरासत को महत्व देना, इस अवसर पर कई परियोजनाओं का ऐलान भी किया गया। विदेशी समाचारों में जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और तेज हो गया है। वहां लगातार 7वें दिन मिसाइल और कामिकाज ड्रोन हमले किए गए। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। और बुलेटिन के अंत तक आते आते ये खास रिपोर्ट पेश हैं वर्ल्ड कप के फाइनल के बारे में, जो अब कुछ ही घंटों में खेला जाएगा। उत्साह बढ़ रहा है, तैयारी चल रही है, कुछ लोग बड़ी स्क्रीन लगवा रहे हैं तो अन्य घर पर ही दोस्तों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सजावटें, पकवान सब तैयार होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैच शुरू होगा 2-3 घंटों तक कोई स्क्रीन के सामने से हिलने की भी कोशिश नहीं करेगा। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: क्यूबिक के इस स्नैक में फुटबॉल प्रेमियों के बीच फाइनल का उत्साह काफी समय पहले से ही बन गया है। आरबी सेलेस्ट और मेसी के फैंस अपने स्टार खिलाड़ियों को मैदान पर देखने का इंतजार कर रहे हैं।
4: J'étais ici chez Weber Alvarez pour regarder presque tous les matchs, surtout quand l'Argentine a joué, mon équipe favorite. J'espère que l'Argentine gagne.
5: On crée dans le foot et vous pensez que cette année quand même nous avons une forte possibilité pour regagner la coupe. Vamos Argentina.
3: स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होने वाले इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले के जबरदस्त अनुभव के लिए सब तैयार हैं।
6: Le trophée chez Weber Gardès exposé et aussi nous lance un jeu concours aujourd'hui. Il suffit juste de faire des prédictions.
3: फैंस के लिए इस विश्व कप की स्मृति के तौर पर अपनी पसंदीदा टीम की जर्सी

0: खरीदने का आखिरी मौका भी रहा।
1: Nous passons pour l'Argentine.
2: Oui. Pareil, pareil. Tu as une deuxième étoile. Le hat shirt là.
3: Final, nous peut aller en Argentine, Espagne.
4: Dans le magasin qui m'est passé là.
3: Non, là, ça va un truc olympique plus vite.
4: Prends un petit t-shirt là, monsieur.
5: Oui, oui, oui, vous prenez des enfants.
0: मेबाग में भी दूसरी जगहों की तरह दुकानों को वर्ल्ड कप के रंगों से सजाया गया है। फैंस को कई हफ्तों से इस फाइनल का बेसब्री से इंतजार रहा है।
6: Et même pendant une grande ambiance, mais nous découvrons magasin, moi je dirais.
7: Argentine, Espagne, ça va être très très très chaud, je crois.
8: Ça c'est un gros spectacle, ça. Nous allons attendre ça avec tout nous la joie, nous espérer ce qu'il faut gagner.
0: बैनर्स, झंडे, गाने बजाने और त्योहार जैसे माहौल के साथ इस फाइनल को फुटबॉल के असली जश्न में बदलने के लिए सब कुछ तैयार है।
9: I speak a little bit of Spanish, so it's exciting.
0: ये एक ऐसी वैश्विक गतिविधि है जो सरहदों के दायरे से बाहर है और जिसे मॉरिशन फुटबॉल प्रेमी पूरी उत्साह के साथ जीते हैं।
10: चले जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। कल दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद सेंट्रल प्लेटू पर हल्के बादल घिरा सकते हैं और बारिश का भी अनुमान है। प्रवालेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। खासकर कल सुबह से दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 14 से 16, अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:44 पर, शाम को सूर्यास्त 5:48 पर।

0: देश विदेश की नई खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज़ विभाग और तकनीकी पर फैजन का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। डोफेलिन शातो बेनारेस में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्डर के श्री धरमदत्त कोटिक जो धरम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी मंगलवार को दिन के 11 बजे उनके बेटे उमेश कोटिक के मकान डोफेलिन शातो बेनारेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबॉ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे एट 11 AM। रॉ रोड ग्रांड रिट्रीट में 96 साल की 96 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंद्रावती झरी जो विद्वंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे सच्चिदानंद मुनिया के मकान रॉय रोड ग्रांड रिट्रीट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। लासोस कैथोबोन में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री देवेन मर्टेन जो नादेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पेपेजों बेकरी के मालिक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके मकान लासोस कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौतें मोरोश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1

0: PM. Dispensary Road, 8e mille, Triolimé. Dispensary Road, 8e mille, Triolimé. 72 साल के 72 years old के श्री इंद्रदेव बंधन, श्री इंद्रदेव बंधन जो आत्मा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे, अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनकी पत्नी नर्मदा बंधन के मकान डिस्पेंसरी रोड विचिया मिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS लेन थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: कभी सोचा है
3: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
3: डोंट मिस इट।
4: म्यूजिक टक टक
5: आर एम टू रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: इस संध्या काल में प्रभु का नाम लेते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं इस तीसरे घंटे का प्रोग्राम। शाम के 6:27 हुए हैं। सबको संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार, आदाब एंड वरी वेलकम। याद रहे आज की रात का हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन द ओकेशन ऑफ द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2026 आज फ्रॉम 10 PM।

रास्ते में होगी, गेम्स होंगे, लॉम्पियंस आप तक पहुंचाएंगे। फोन नंबर वही होगा, 5-5-4-9-8-1-94 इनाम जीतने के लिए। थोड़ी देर में another game for you to play with MBC and Radio Masti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: शाम के 6:32 मिनट। थैंक यू डियर लिसनर्स टू बी सो फिडेल एंड रेगुलरली लिसनिंग टू रेडियो मस्ती एवरी संडे के शाम। इनफैक्ट एवरी डे 24 आवर्स अ डे। And time to play with MBC and win and stand the chance to win one ticket to the Golden 90s Era Tour featuring Abhijit Bhattacharya live in concert on Saturday 25th July 2026 and okay, next Saturday go from 7:30 p.m. at SVICC Pi. Stepped into a world of nostalgia and relive the unforgettable voice that defined Bollywood's Golden Era. Enjoy an evening of timeless melodies, legendary hits and pure musical magic. Tickets start as from 850 rupees and are available at muticket.mu, Réseau Otayo. Don't miss the unforgettable concert experience. For reservations, you can call on the hotline 466-9999. Ek aisa sawal jo is samay duniya bhar mein 100 million से ज्यादा लोग जानते होंगे। आप हमें बताएं कि इस समय who is the top scorer in World Cup 2026? Yes, आपका नाम, आपका जवाब और आपका पूरा पता in the same message on 5498194। और एक बार फिर हम आग्रह करते हैं जिनकी अभी हाल में जीत हुई है, प्लीज प्लीज गिव अदर्स चांस टू प्ले एंड विन।

0: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.
2: So we are playing with you to win a ticket for the Golden 90s Era 2 featuring Abhijit Bhattacharya live in concert on Saturday 25th July 2026 as from 7:30 PM at SVICC Pi. और इस टिकट को जीतने के लिए आपको बताना था who is the actual top scorer in the World Cup 2026. कुछ लोगों ने लिखा लियोनेल मेसी, नहीं कल तक लियोनेल मेसी टॉप पोजीशन पर थे with 8 goals, लेकिन आज सुबह इंग्लैंड की जीत के बाद, इंग्लैंड फ्रांस वाली मैच के बाद जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई, लेकिन इस मैच में किलियान एम्बापे ने 2 गोल्स दागे और इस तहत विव 10 गोल्स. इट इज किलियान एम्बापे विच इज इन पोल पोजीशन फॉर द टॉप स्कोरर इन द वर्ल्ड कप 2026. यानी कि सही जवाब है किलियान एम्बापे. बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन कुछ लोगों ने अपने नाम न लिखे, अपने फुल एड्रेस नहीं लिखे, लेकिन बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया. थैंक यू वेरी मच आपके दिलचस्पी के लिए. सो लकी ड्रॉ के बाद जिनके नाम जाता है ये टिकट फॉर द अभिजीत कॉन्सर्ट नेक्स्ट सैटरडे, वो है सेंट जोसेफ स्ट्रीट काशी की रहने वाली विश्वानी रामफल जी. आपको बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस टू यू. सो यू नीड टू कम to the embassy during this week, is aane wale saptah ke dauran. Take your ID card and come here aur lijiye apne ticket aur apne parivar sahit go and enjoy, kyunki kasi to bahut hi nazdeek hai. Go and enjoy at SVICC, the wonderful concert to come with Abhijit. Badhai ho aapko.

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. The Musti.
5: 7 PM.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Feel the Musti. The Musti.
6: कभी सोचा है
7: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
6: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
7: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
6: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
7: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
6: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
7: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
6: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
7: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
6: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
7: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
6: और आपका चांस।
7: डोंट मिस इट।
0: बॉलीवुड सीज़लर
4: RM2, your number one Bollywood radio station.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: नमस्कार मॉरिशस, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड सिज़ला और मैं हूं आपका दोस्त निखिल शिवनाथ। बाहर जुलाई की ठंड अपनी पूरी शिद्दत पर है, हवा ठंडी है, रातें लंबी हैं, लेकिन दिलों में आज एक अलग सी ही गर्मी है, वर्ल्ड कप फाइनल की गर्मी। आज रात दुनिया की सांसें स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होने वाले महामुकाबले पर टिकी हुई हैं, तो कंबल और दिल दोनों खोल दीजिए। इट्स टाइम टू स्टार्ट आपका अपना बॉलीवुड सिज़ला।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जगाती है कयामत कोई।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, ये था बिल्लो रानी फ्रॉम धन धना धन गोल, वन ऑफ द फर्स्ट फुटबॉल मूवीज मेड इन बॉलीवुड. आपके नाम, आपके आप सभी फुटबॉल फैंस के नाम. फुटबॉल फैंस की बात करें तो वी हैव अ मैसेज ऑलरेडी. हेलो आरजेकिल, कैसे हैं आप? भावना हियर डेडिकेटिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग टू कालिया चेटी फैमिली ऑफ गुडलैंड्स इंक्लूडिंग पापा नारद, सिस्टर तुलसी, भाई विशाल, भाई आशीष, भाभी शालिनी, ब्रदर यशवंत, नेफ्यूज एंड नीस शायान, स्वानिश एंड श्रुति. वी आर ऑल हैविंग अ वंडरफुल टाइम एट आवर होम स्वीट होम एंड एंजॉयिंग द प्री फुटबॉल वाइब्स. प्री फुटबॉल वाइब्स वैसे तो बरकरार है. आप हमें बताइए कि आपका फेवरेट टीम कौन सा है, आपके पास कौन कौन से प्रेपरेशंस चल रहे हैं. 5499-1294 is the magical number. अभी के लिए खासकर भावना जी और पूरी कालिया चेटी फैमिली के लिए ये अगला गाना.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: दोस्तों ये जुलाई की जो ठंड होती है ये मुझे हमेशा एक बात याद दिलाती है। बाहर का मौसम बदलना हमारे बस में नहीं होता है, लेकिन अंदर का जो मौसम है वो काफी हद तक हमारे हाथों में होता है। एक गाना, एक दुआ, एक अच्छी सी याद और दिल का टेम्परेचर बदल जाता है। ये अगला गाना हम चलाने वाले हैं आपके दिल का टेम्परेचर बदलने के लिए। दिस इज डेडिकेटेड स्पेशली टू ऋषि विदेशी who following the roaring of the golden lion in that arena and is dedicating this to all the football lovers, moody girlfriend of Bamboo and to the whole RM2 team. Ye gana khas hum karenge aur ye dedication hai from Shiksha ya fir Shikha, aapne apna naam nahi likha hai, isse hame pata nahi chalega, lekin khas aapke liye. You'll recognize yourself. और खास ही खास ये गाना हम करेंगे यले शाम और सुविनाम के नाम और आप सभी के नाम। ये दिल दीवाना

0: FM2
1: Radio Musti.
2: कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस,
3: डोंट मिस इट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती,
4: बॉलीवुड सीजलर।
1: RM2, your number one Bollywood radio station.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल ये सच है. फ्रॉम द मूवी दिल लगी, एंड दिस वाज अ स्पेशल रिक्वेस्ट बाय भाई यलेश श्याम फ्रॉम सुरीनाम, क्योंकि ये गाना कहते हैं डेडिकेट टू द होल आरएम2 टीम एज वेल एज टू द होल श्याम फैमिली ऑफ सुरीनाम. साथ ही साथ ये अगला गाना हम करने वाले हैं सीता गीता बुलोगाम फ्रॉम शातू बिनारिस के लिए, साथ ही साथ दागन श्वेता रवीश प्रशा लवशा एंड आपादू फैमिली ऑफ वोश्नो के नाम. The next song from one of my favorite tracks from the movie Love You Mr. Kalakar, Neeraj Sridhar ki awaaz mein aur saath mein hongi Shreya Ghoshal ki awaaz, Sarfiraza Hai Dil.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: आज के तड़कते भड़कते गाने आपको प्रेपरेशन में डालने के लिए, उस मूड में डालने के लिए, ताकि हम वर्ल्ड कप फाइनल साथ में देख सकें शाम को. लेकिन आज जब आप फाइनल देखोगे तो एक चीज नोटिस करिएगा कि प्लेयर्स प्रेशर में भी बॉल पर ही नजर रखते हैं, है ना. जिंदगी में हम प्रेशर पर इतना फोकस कर देते हैं कि कभी कभी हम बॉल ही खो देते हैं. शायद सुकून का पहला स्टेप ये है, जो कंट्रोल में है उस पर ध्यान. जैसे कि यहां पर कौन कौन से गाने बज सकते हैं, चला सकते हैं. 5499-1294 for your dedications and your messages for the World Cup final. अभी के लिए फाइटर से इश्क जैसा कुछ.

0: घड़ी मिलाते चलिए स्टूडियो की घड़ी में इट्स एग्जैक्टली 8 पीएम
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Yo, yo, hello. Testing. Testing 1-2. Yeah.
7: Kabhi socha hai?
8: MBC Radio ke studio se live or direct.
7: Listeners se baat karna kaisa lagta hoga?
8: Most popular Bollywood hits play karna.
7: Musti karna aur pure Mauritius ko entertain karna kaisa lagta hoga? Agar haan, तो फिर ये है आपका मौका
8: MBC Radio presents One Day RJ
7: Open to all Mauritians बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
8: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक कॉन्फिडेंस एनर्जी और पर्सनालिटी
7: वीडियो हो सकता है हिंदी भोजपुरी तमिल तेलुगु गुजराती मराठी उर्दू या चाइनीज में
8: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
7: और आखिरी तारीख है 26th of July तो कैमरा ऑन कीजिए टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो
8: MBC Radio presents One Day RJ MBC Radio पर आपकी आवाज आपका स्टाइल
7: और आपका चांस
8: डोंट मिस इट
1: RM2
5: Radio Musti

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जहाँ दोस्तों, अगर आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। यह है बॉलीवुड सिज़ला ओनली ऑन RM2। और आज की रात सिर्फ गाने ही नहीं, एहसास की रात है। बाहर बहुत ठंड है, लेकिन हर ड्राइंग रूम और हर फुटबॉल फैन के दिल में वर्ल्ड कप फाइनल का काउंटडाउन भी चल रहा है। कभी कभी जिंदगी भी फुटबॉल जैसी बन जाती है। पहला हाफ समझने में निकल जाता है, दूसरा हाफ संभलने में, और असली फैसला एक्स्ट्रा टाइम में होता है। चलिए, इसी सोच के साथ हम म्यूजिक का सफर जारी रखते हैं। मैं हूं दीवाना तेरा इन द लवली वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: इस हाई एनर्जी स्पेशल में बीच में एक हल्का सा अदनान सामी और आशा भोसले की आवाज में अ वेरी लवली रिक्वेस्ट फ्रॉम रोशनी जी. हैव अ गुड फुटबॉल मैच टू यू टू रोशनी जी. खासकर ये जाएगा टूनी के लिए और फॉर सचिन काजल श्रवण श्रावणी अहान एंड बिचू फैमिलीज ऑफ पुत्रो दो विलास.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, आपने अपना रेडियो अभी अभी ऑन किया है तो आपको बता दें दैट यू आर लिसनिंग टू बॉलीवुड सिज़ला ओनली ऑन आरएम2. मैं हूं निखिल और अभी थोड़ा ज्ञान देने वाला हूं. एक अजीब सी बात नोटिस की है. मुझे लगता है कि म्यूजिक और स्पोर्ट्स जो है ना वो बहुत बहुत बहुत सही सिमिलर है. देखो, स्टेडियम में हजारों लोग होते हैं और उससे कहीं ज्यादा लोग अपने घर पर लाइव वो मैच देखते हैं, लेकिन फिर भी गोल के उस एक पल में ना सब एक साथ सांस रोक लेते हैं. म्यूजिक भी कहीं कहीं वही करता है. अलग अलग जिंदगियां, अलग अलग कहानियां, लेकिन एक सुर और सब एक हो जाते हैं. जैसे कि ये अगला के की आवाज में दिलनशीं दिलनशीं फ्रॉम द मूवी आशिक बनाया आपने अपॉन रिक्वेस्ट.

0: Sarve.
1: Bollywood Sizzler.
2: RM2, your number one Bollywood radio station.
3: जी हाँ दोस्तों, एक खास सलाम उन सभी लोगों को के नाम जो अभी भी इस वक्त भी काम पर हैं. सिक्योरिटी ड्यूटी, हॉस्पिटल शिफ्ट, होटल, फैक्ट्रीज, पुलिस, मीडिया या किसी भी सर्विस में. जब ज़्यादातर लोग कंबल और चाय के साथ संडे एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तब आप किसी ना किसी जिम्मेदारी को निभाने में लगे.

शायद आज रात आप पूरा वर्ल्ड कप फाइनल भी ना देख पाएं, लेकिन याद रखिए हर टीम को फील्ड पर प्लेयर्स चाहिए ही होते हैं। आपका काम सिर्फ ड्यूटी ही नहीं, बहुत से लोगों की सुकून भरी रात का एक रीजन भी है। बॉलीवुड सिज़ला की तरफ से, मेरी तरफ से, आरएम2 की तरफ से आप सबको दिल से इस गाने के साथ सलाम।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: पता है हम जब बच्चे थे तो हम फाइनल इसलिए देखते थे क्योंकि ट्रॉफी का एक्साइटमेंट होता है, टाइटल का एक्साइटमेंट हुआ करता था। बड़े होकर हम अभी समझने लगे हैं कि कहानी सिर्फ ट्रॉफी की नहीं, उन रातों की है, उन उस मेहनत की है, उन बहसों की है, उन चीखों की है। यादें अक्सर रिजल्ट से ज़्यादा देर तक हमारे जहन में रहती हैं और कभी कभी उन यादों को बटोरने के लिए हमें अकेला रहना पड़ता है। आज अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो तो बस ये याद रखना कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में भी ना हर प्लेयर को एक ऐसा पल मिलता तो ज़रूर है जहां उसे खुद पर भरोसा करना पड़ता है। एक स्टेडियम से भरी, एक लोगों से भरे स्टेडियम की नहीं, बस दिल की आवाज़ सुनाई देती है उस वक्त। मे बी अकेलापन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप भी अकेले महसूस कर रहे हैं तो फिकर नॉट, हम हैं आपके साथ। फॉर अ फ्यू मिनट्स नाउ द नेक्स्ट सॉन्ग करेंगे आपके नाम, खासियत, वेरी न्यू सॉन्ग, वेरी लवली सॉन्ग फ्रॉम द मूवी चांद मेरा दिल। ये मेरी तरफ से आपके लिए।

इसी गाने के साथ इट्स टाइम टू से अलविदा. एक्चुअली बॉलीवुड सिज़ला इज ओवर फॉर नाउ. इस ठंडी संडे इवनिंग में हमारा साथ देने के लिए, हमें साथ वक्त बिताने के लिए और आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया. अब हमारी नजरें वर्ल्ड कप फाइनल पर होंगी. याद रखिए, जिंदगी भी एक खेल है और इसके सबसे बड़ी टीम का नाम उम्मीद है. मैं हूं निखिल, आपसे इजाजत चाहता हूँ. गुड नाइट मॉरिशस.

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का RM2 लेट नाइट ग्रूव्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, संडे की रात जहां पर गानों के साथ निकल आते हैं जज्बात, जहां पर वीकेंड खत्म हो रहा है वहीं पर एक नया हफ्ता आपके लिए इंतजार कर रहा है। सपने, अपॉर्चुनिटीज, हाँ कुछ चैलेंजेस भी, लेकिन वी नेवर गोना गिव अप, है ना। तो चलिए म्यूजिक को रखते हैं आप जारी अपनी गपशप।

कभी कभी लगता है कि दुनिया रेस में भाग रही है, पर याद रखो हर इंसान का अपना पीस होता है, अपनी रिदम होती है, अपनी रफ्तार होती है कंपैरिजन से ज्यादा। जी हाँ, कंपैरिजन। जो इंसान अक्सर खुद को किसी के साथ कंपेयर कर लेता है कि वो आज कहाँ, अरे साहब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेस। एक छोटा सा स्टेप भी आपको गोल के करीब ले जाता है। बस खुद पर भरोसा रखो और चलते रहो। वर्ल्ड कप का जहां पर फीवर अभी कमाल का चल रहा है, देखते हैं टीम्स क्या करती हैं, कमाल कितना होता है। बट यस, म्यूजिक आपके साथ हमेशा।

0: मेरी मस्ती सुनते रहो।
1: भाई कहते हैं कि लाइफ का असली हीरो वही होता है जो गिरकर भी उठ जाता है। फेलियर्स सिर्फ चैप्टर होते हैं, पूरी कहानी नहीं। हर स्ट्रगल आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ये देखना कि मंजिल की तरफ कितनी रफ्तार पकड़कर कितनी एनर्जी के साथ चलते जाना है। अरे साहब, आज की मेहनत से ही लिखा जाता है कल। सो म्यूजिक के साथ एनर्जी भी हाई रखिए।
2: ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ। ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം

ग्रैटिट्यूड जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट, नहीं थैंक यू ये कितनी बड़ी खुशी दे सकता है, कभी सोचा है? पेरेंट्स हो, दोस्त हो या ऑफिस के टीम मेंबर्स, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना कभी भूलना नहीं चाहिए। जो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं वही लाइफ की असली ब्लेसिंग्स ही तो होते हैं। दिल से अप्रिशिएट कीजिए और रिश्तों को खूबसूरत बनाइए।

0: Get ready for the biggest World Cup ever!
1: 2026 FIFA World Cup.
0: रेडियो मस्ती की टीम के साथ
1: चलिए
0: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
2: फिलहाल आपको ले चलते हैं ट्रियोले। सबसे पहले तो सबों को नमस्कार आदाब एंड वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती स्पेशल वर्ल्ड कप फिएस्टा। फाइनल से पहले इट्स गोइंग टू बी मेस्मराइजिंग। चलिए हम आपको ले चलते हैं आज आई सेड ट्रियोले और वहां पर मिलते हैं हमारे दोस्त अरविंद से। हेलो अरविंद।
3: हेलो संजय। हेलो रेडियो मस्ती लिसनर्स। तो हम लोग लाइव हैं इस समय ट्रियोले से। वंडरफुल प्रोग्राम गोइंग ऑन यहाँ पर। 9 बजे 7 बजे से शुरू हुआ। बहुत आर्टिस्ट रहे, अभी कराओके चल रहा है, सो मेनी गिफ्ट, सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। और यहाँ पर स्पेशल रहा क्योंकि एक मल्टीपर्पज हॉल इनोग्रेट किया गया और साथ साथ में जैन स्क्रीन में मैच अभी दिखाया जाएगा। और ये इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर प्लिमूथ की ओर से है। और हमारे साथ इस समय है लुलुगा बुचित जो यहाँ चुनाव क्षेत्र में है, द मिनिस्टर लुलुगा बुचित। Nous capables de dire que c'était un grand jour pour Triolet avec un multi-proposal et surtout avec un grand écran. Bon appétit final, nous en direct sur Radio Mosti.
4: Bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour quand nous invitons tous les habitants de Triolet à Basina. Quand nous mettons un grand écran et tout le monde est là et attend avec impatience la finale Coupe du Monde. Là. Et je profite de l'occasion pour inviter tout le monde, tout le monde amateur de foot. Je suis toujours capable de venir dans les temps là.
5: Des grands
4: écrans qui nous mettaient. Et l'ambiance, la païen, je suis tout venu célébrer ça, ce moment. C'est un grand moment final. Un moment spécial qui nous fait ici, dans Triolet.
3: Voilà. Okay. Donc, il y a pas de Sanjay. यहाँ पर संजय न केवल फुटबॉल लेकिन फुटबॉल के साथ गातु पीमा भजिया समोसे गरम गरम रोटी चाय सब कुछ मिला। और हमारे साथ है लुलुगा भोकनी जिन्होंने बताया मुझे वो स्पेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो लुलुगा निष्पाए को गए हो जी।
4: संजय जी सारे श्रोताओं को मेरा नमस्ते। Mais comment pas, tout dans nos pays, nous pouvons mettre grand l'écran pour qu'il nous mette à profiter un grand maximum. Mais il existe un moment, si la circonscription Premier ministre, dans l'endroit qu'il fait Navin Tanaramgla, Mrevin Premier ministre, nous pouvons faire les plus grandioses encore. Alors aujourd'hui, avec concours, beaucoup de monde, nous organisons la finale là, mais le meilleur va gagner, mais sa Coupe du Monde là, il réserve beaucoup, beaucoup de surprises. Mais en tout cas, nous connaissons pour gagner d'aller.
3: तो लुलुगा ब्रुकली सपोर्टिंग स्पेन हमारे साथ और मंत्री हमारे मंत्री उचित अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ दोस्त हैं उनसे भी पूछेंगे आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। विच टीम?
6: स्पेन।
3: स्पेन। एक भाई है यहाँ पर आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? स्पेन। स्पेन। आप?
6: स्पेन।
3: बाप रे बाप यहाँ पेन ही पेन नहीं है स्पेन ही स्पेन है। आप?
7: स्पेन।
3: ओको
7: स्पाइन अरे स्पाइन
3: अरे अरे रुके तो ऐसी ला ले इधर इधर किस टीम को सपोर्ट करें आप?
7: स्पेन।
3: स्पेन अर्जेंटीना।
7: अर्जेंटीना।
3: स्पेन अर्जेंटीना।

0: चल कम से कम एक अर्जेंटीना मिला, स्पेन अर्जेंटीना स्पाइन स्पेन, और हम भाई अभी चाय पी रहे हैं, स्पेन अर्जेंटीना
1: स्पेन
0: स्पेन, तो काफी स्पेन है यहाँ पर संजय, कहा ओके गोइंग ऑन, अभी थोड़ी देर बाद विल बी लाइव यहाँ पर ही हम एक गेम करेंगे और विल हैव समवन टू विन अ प्राइज यहीं पर,
2: ऐसा कीजिए
0: एंजॉयिंग इट्स हैपनिंग फ्रॉम फ्रियोली,
2: ऐसा कीजिए आप अभी एक एक प्रश्न पूछ लीजिए और इफ यू कैन गेट अ विनर फॉर फॉर,
0: तो अभी गाना चल रहा है, कीप ऑन लिसनिंग, लास्ट एक क्वेश्चन फिर आप मुझे विल गेट इट बैक राइट,
2: ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, थैंक यू थैंक यू अरविंद. That was live from Triolet, the grand opening of a sports complex, जहाँ पर दो giant screens लगाए हुए हैं to view to watch the final of the World Cup 2026 between Spain and Argentina. साथ ही साथ संगीत का कार्यक्रम भी चल रहा है. So it's a whole package over there in Triolet in this grand context.

0: सो आपको ले चलते हैं एक बार फिर थ्रियोले और मिलते हैं हमारे दोस्त अरविंद से जो वहां पर एक क्विज कंपटीशन करेंगे जिसमें एक टिकट जिसमें जीतने वाले को एक टिकट मिलेगा फॉर द कॉन्सर्ट अभिजीत कॉन्सर्ट जो लगने वाला है नेक्स्ट सैटरडे 25 जुलाई एट SBICC आज फ्रॉम 7:30 PM हेलो अरविंद
1: आपको यहाँ पर
0: सभी
1: लोग सुन रहे हैं
0: हाँ सभी जो हमारे म्यूजिक मस्ती के लिसनर्स वहाँ पर हैं हेलो एवरीवन हमें यकीन है यू हैविंग अ वेरी नाइस टाइम ओवर देयर एट थ्रियोले सो जो जो सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं अरविंद आई डू होप कि सभी लोगों को समझ में आएगा हम कौन सा सवाल पूछ रहे हैं ओके आप हमसे बेहतर क्योंकि हमें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा थैंक यू अरविंद सो दैट वॉज अरविंद जो इस समय थ्रियोले में है फॉर द लाइव स्क्रीनिंग ऑफ दिस फाइनल ऑन बिग स्क्रीन विद लॉट्स ऑफ थ्रियोले इनहैबिटेंट्स जो इस मैच को लाइव देख पाएंगे इस समय

0: और इस 500 रुपीस वर्थ वाउचर को जीतने के लिए बहुत ही आसान प्रश्न आप हमें बताएं व्हाट इज द नेम ऑफ द कोच ऑफ द नेशनल टीम ऑफ स्पेन नेम ऑफ द गिव द नेम ऑफ द कोच ऑफ द नेशनल टीम ऑफ स्पेन स्पेन की नेशनल टीम के कोच का नाम अपना पता और अपना नाम अवश्य अपने मैसेज में भेजें ऑन 5499-1294
1: रेडियो मस्ती सुनते रहो

जैसे हमने सवाल पूछा था ऐसे ही सही जवाब आ गया लुइस दे ला फुएंते द करंट हेड कोच ऑफ द स्पैनिश मेंस नेशनल फुटबॉल टीम अपॉइंटेड इन दिसंबर 2022 ही प्रीवियसली लेड द नेशन टू अ फ्लॉलेस यूईएफए यूरो 2024 ट्रॉफी रन एंड इज करंटली मैनेजिंग द स्क्वाड इन द 2026 फीफा वर्ल्ड कप और जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया It is Alvin Alkouri of Lalmati. Alvin ji, aapko badhai, you are winning. 500 rupees gift voucher offered by Le Grand Bazaar of India. So the PA is going to call you by Alvin Alkouri. Aapko batane ke liye ki aapko kaise ye voucher hasil hoga. Ek baar phir aapko badhai.

चले मुर्के देखते हैं आखिर आज जो फाइनल खेला जा रहा है आज जो फाइनल खेला जा रहा है वो फाइनल जिस स्टेडियम में खेला जा रहा है उस स्टेडियम का ऑफिशियल नाम क्या है FIFA World Cup final जो खेला जा रहा है जो शुरू होने वाला है कुछ ही मिनटों में जिस स्टेडियम में अभी जो क्लोजिंग सेरेमनी जो हो रहा है वो स्टेडियम का ऑफिशियल नाम क्या है आप अपना जवाब खुद का नाम और खुद का पता लेकर भेजें 5499-1294 और जीतने वाले को मिलने वाला है 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर ऑफर्ड बाय जेन्स लिटिल इंडिया प्ले एंड विन अ चांस टू विन अ गिफ्ट वाउचर वर्थ 500 रुपीस ऑफर्ड बाय राजस्थान हैंड

दोस्तों हमने सवाल किया कि जो अभी मैच खेला जाने वाला है इन न्यू जर्सी न्यूयॉर्क जहां पर ये फाइनल खेला जाएगा उस स्टेडियम का ऑफिशियल नाम क्या है और बहुत जल्द हमें सही जवाब भी मिल गया इट्स मेटलाइफ स्टेडियम और जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब भेजा इट इज मिसेस कविता रेड्डी फ्रॉम ब्लंडे पापाई कविता जी आपको बधाई यू आर विनिंग अ गिफ्ट वाउचर वर्थ 500 रुपीस ऑफर्ड बाय जेन्स लिटिल इंडिया ला सिटे मॉल रोजबेल एंड त्रिबेका मॉल Play and win a chance to win a gift voucher worth 500 rupees offered by Rajasthan's work handloom house. और आपको बहुत जल्द कविता जी एमबीसी से कोई प्रोडक्शन असिस्टेंट आपको फोन करने वाली हैं to give you more information on how to obtain your voucher. Okay, thank you. बधाई हो कविता जी for playing with Radio Masti.

So time to move on with the next question. और इस गेम के प्रायोजक हैं प्ले एंड विन, प्ले एंड विन अ चांस टू विन अ गिफ्ट वाउचर वर्थ 500 रुपीस ऑफर्ड टू यू बाय राजस्थान हैंडलूम हाउस. अब की बार आप हमें बताएं कि अर्जेंटीना, यस अर्जेंटीना मेंस नेशनल टीम के कोच का नाम क्या है. बहुत ही आसान. अपॉइंटेड इन अगस्त 2018, he has led Argentina through a highly successful era, including a World Cup victory in 2022 and multiple tournament finals.

जस्ट रिमाइंडिंग यू, अगर आपकी अभी हाल में जीत हुई है तो प्लीज लीव अदर्स, गिव अदर्स ओकेजन टू पार्टिसिपेट एंड विन. Thank you for understanding.

10:56 और 4 मिनट में द गेम इज गोइंग टू स्टार्ट. और यहाँ पर खिलाड़ी जो हैं स्पेन के और अर्जेंटीना के आर गोइंग टू मेक देयर एंट्री ऑन टू द मेटलाइफ स्टेडियम ऑफ न्यूयॉर्क. सामने में द रेफरीज आर वेटिंग. In the corridor, we're saying एक ओर से मेसी, दूसरी ओर से le prodige espagnol जिसे कहते हैं. La mini amal.

तो सही जवाब देने वाले को मिलने वाला है A gift voucher worth 500 rupees offered by Rajasthan Handloom House.

So हमने सवाल किया the national anthem of Spain का उसका टाइटल क्या है and the title is La Marcha Real और जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया Chris Bhagwant Ji of Northern Boundary Quatrebon So Chris Bhagwant Ji आपको मिलता है A gift voucher worth 500 rupees offered to you by Jane's Little India. Aapko badhai ho.

दोस्तों हमने सवाल पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्जेंटीनियन कीपर. यही अर्जेंटीनियन कीपर ने गत साल नॉट गत साल इन द लास्ट इन द फाइनल ऑफ द लास्ट वर्ल्ड कप इन कतर फ्रांस के खिलाफ उसने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था. एंड टुडे इन फ्रंट ऑफ यामिन लामिन यमाल क्या आगे किया. व्हाट अ सेव दैट परमिट्स अर्जेंटीना टू बी स्टिल ऑन स्कोर 0-0. सो उसका नाम एमिलियानो डिबू मार्टिनेज 33 साल का एस्टन विला स्टार कीपर एमिलियानो डिबू मार्टिनेज. और जो आश्चर्य की बात यह है कि उसकी एक फिंगर टूटी हुई है इन हिज राइट हैंड एंड स्टिल ही इज प्लेइंग. सो जिन्होंने सही जवाब हमें दिया और जिसके नाम जाता है ये इनाम फ्रॉम द ग्रैंड बाजार ऑफ इंडिया. A gift voucher worth 500 rupees offered by the Grand Bazaar of India. The Grand Bazaar of India, Mohogami. Shopping Promenade, Le Codan Waterfront, Mont Choisi, Le Mall, Icon Eban and Cascavel Mall. The Grand Bazaar of India ki or se aapko mil raha hai 500 rupees ka gift voucher. Aur ye gift voucher jata hai Manisha Bhagwan ji ko

तो हमारे सवालों का सिलसिला जारी रखते हुए जो अगला सवाल हम आपसे करते हैं कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर आज तक स्पेन ने कितने क्लीन शीट्स बनाए हैं। क्लीन शीट्स अर्थात जीरो गोल कंसीडेड। कितने मैचेस क्लीन शीट्स स्पेन ने बनाए हैं? आपका जवाब ऑन 549912 94।

बहुत ही जल्दी सही जवाब मिल गया और द आंसर इज 6 क्लीन शीट्स भेजने वाली हैं सही जवाब माला सिसाई जी फ्रॉम बासन रोड कटबोन जिनको हासिल होता है 1 टिकट फॉर द गोल्डन 90.02 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कंसर्ट ऑन सैटरडे 25 जुलाई 2026 As from 7:30 PM at this VICC Pi. Malaji, aapko badhai ho.

अगला प्रश्न जो हम आपसे पूछते हैं, इस फाइनल से पहले सिर्फ एक ही बार स्पेन फाइनल तक पहुंच पाया है जो उन्होंने जीता था। आप बताएं कि कहां पर किस वर्ल्ड कप में स्पेन ने अपना एक मात्र वर्ल्ड कप जीता था, किस साल में और कहां स्पेन ने अपना एक मात्र वर्ल्ड कप जीता था। आपका जवाब 1549912 94।

0: और सही जवाब देने वाले को मिलने वाला है गिव वाउचर वर्थ 500 रुपीस ऑफ अवर दुबई
1: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट Tune into the very best.
0: Jane's Little India.
1: Radio Masti.
0: Jane's Little India, La City Mall, Rosebel and Tribeca Mall.
2: Shishani

भाई दोस्ती सिर्फ सेल्फीज और चैट्स के नाम नहीं होती, असली दोस्ती वही होती है जो बिना वजह के भी आपका साथ देती है। एक फोन कॉल, एक मैसेज या एक कप चाय रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। बिजी लाइफ में अपनों का साथ रखिए, क्योंकि यादें ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है।

कभी कभी जीतने के लिए ईगो को नहीं टीम वर्क को चूज करना पड़ता है, ऑफिस हो या घर। मिलकर काम करने से हर चैलेंज इजी लगता है। एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। सक्सेस कभी अकेले नहीं आती, पूरी टीम के साथ आती है। टुगेदर एवरीबॉडी शाइंस ब्राइटर।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: भाई सपने बड़े रखिए, लेकिन दिल हमेशा हम्बल रखिए। जितनी ऊंची उड़ान होगी उतनी ही जरूर आपके लिए जमीन से जुड़ी आपकी सोच होगी। सक्सेस का असली मजा तभी है जब आप दूसरों को भी इंस्पायर करें। रिस्पेक्ट सबको दीजिए, चाहे कोई भी हो। गुड मैनर्स कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती।

आरएम टू पर वर्ल्ड कप के फीवर के साथ साथ अपडेट्स भी, और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए जहां पर म्यूजिक है वहां पर स्पोर्ट्स भी हमारी प्रायोरिटी। तो बस चलते रहिए लेट नाइट ग्रूव्स में। सभी का स्वागत हमारे नेशनल इंटरनेशनल लिसनर्स। हेलो बॉलीवुड।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: लाइफ की विशलिस्ट में सिर्फ सक्सेस ही नहीं, सुकून भी होना चाहिए। पैसे जरूरी हैं, पर प्यार, फैमिली और पीस ऑफ माइंड उससे भी ज्यादा। खुद से भी दोस्ती कीजिए, हर दिन एक वजह ढूंढिए मुस्कुराने की। खुश रहना भी एक ब्यूटीफुल हैबिट है ना?

0: let's have our sports guru Arvind aur dekhte hain ki after regular time still nil-nil. Hello Arvind.
1: Yes Sanjay, we were expecting that. Final mein aisa hota hai, dono team they play safe, they play cool, lekin it's all Martinez show. Agar Argentina ka ye goalkeeper, he's doing wonders.
0: Aaj वाकई आज इतने सारे गोल्स कंसीड करने के बाद आज स्पेन को मुर्गा बनाकर रखा है
1: और फाइनल में यू रिमेम्बर लास्ट टाइम फाइनल में इसी ने पेनाल्टी रोक कर जितवाया था अर्जेंटीना को.
0: अगर पिछले बार कतर में फ्रांस को रोक पाया था, इट वाज बिकॉज ऑफ मार्टिनेज. और आज फिर से वही हो रहा है.
1: मेसी ने अभी तक अपना जलवा दिखाया नहीं.
0: बस एक बार करेगा तो फिनिश.
1: वही मेसी डजंट नीड यू नो दो तीन चार गेंद दो की जरूरत नहीं. ही कैन एनी टाइम कभी वो कमाल कर सकता है. बट ये भी है कि यमाल डिड एवरीथिंग. ही इज डूइंग सो वेल. मैं सोच रहा था कि हीरो बनेगा लास्ट किक ऑफ द बॉल इन द फ्री किक, लेकिन मार्टिनेज उसके सामने था. सो अगर अभी स्पेन और वर्ल्ड कप टाइटल के बीच कोई है तो वो है द गोलकीपर मार्टिनेज.
0: हाँ एब्सोल्युटली. और मुझे लगता है कि दे शुड गिव समवन एज ओकेजन टू किक अपार्ट फ्रॉम Pedro, Poro, yeah.
1: But Spain is a wonderful
0: Merino.
1: Spain bahut acha football khel raha hai.
0: Possession football.
1: So, exactly. Aur Argentina ki team, they are all reliable on Martinez. Lekin kab tak? This is a big problem. Kab tak? अभी मैं क्रियोली में था थोड़ी देर पहले, पर गया वहां पर भी जाए स्क्रीन पर, और यू नो जगह जगह पर यहाँ पर रेस्टोरेंट हो, फैमिली के साथ हो. अभी क्रियोली में एक फैमिली के साथ में था, बच्चे लोग अपना जेम्बे बजाकर आले यमाल. इट्स अ ग्रेट प्लेजर. और लेट्स सी क्या होगा अभी थोड़ी देर बाद.
0: यमाल नौजवानों के बीच एक फेवरेट बन चुका है.
1: हीरो. बट मुझे संजय मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन के लोग, आई वुड लाइक अर्जेंटीना टू विन
0: ओनली
1: फॉर मेसी,
0: बिकॉज ऑफ मेसी,
1: नथिंग एल्स. लेकिन ऑन पेपर स्पेन फॉर द यंग जनरेशन, ये स्पेन दे आर डूइंग सो वेल.
0: एब्सोल्युटली. और after what we saw yesterday in terms of beauty of football, kal foul play nahi tha, kal itna physical bhi nahi tha, itne sare goals dekhne ko mile, uske badle mein aaj wala game, I suppose ki Spain is playing much better, lekin jaise ki aapne kaha jo pahar hai Martinez, एक पहाड़.
1: चलिए अब बस अभी शुरू होगा थोड़ी देर में. चलिए ये अलग सी

0: 15 मिनट। आप सुन लीजिए,
1: अगर अगर ये मैच गया ऑन पेनल्टी, अगर इट गोज ऑन पेनल्टी, देन स्पेन इज गोइंग टू लूज।
0: मार्टिनेज, लेकिन
1: बिकॉज ऑफ मार्टिनेज
0: जो है वो,
1: बिकॉज ऑफ मार्टिनेज,
0: ये तो है। लेट्स वेट एंड वॉच, अभी 30 मिनट्स। ऑल द बेस्ट विश संजय, हम भी इंतजार करेंगे। कल कल मंडे नहीं, आज आज है, आज मंडे, आज मंडे है तो चलिए मंडे, बच्चे लोग छुट्टी पे हैं, स्कूल हॉलीडेज हैं। मैंने देखा कई जगहों पर बहुत बच्चे ये फुटबॉल मैच देख रहे हैं, तो लेट्स सी, आई मीट यू मैच के अंत में।
1: ओके, थैंक यू अरविंद।

0: Yes, Arvind.
1: Hello, Sanjay.
0: Yes,
1: Arvind. Yours, आपको मिल गया.
0: Argentina thrives on chaos. आज नहीं हुआ.
1: 2:02 में रेफरी ने मैच को पूरा किया और स्पेन ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीता.
0: Absolument mérité.
1: Bien mérité, bien mérité. Goalkeeper. एक खिलाड़ी मेसी वाज अपसेट कंप्लीटली
0: एब्सोल्युटली,
1: लेकिन मार्टिनेज ने जितना करना चाहा ही डिड, लेकिन स्पेन डिजर्व्स टू बी द वर्ल्ड चैंपियन. गुड टीम, जवान खिलाड़ी, दे डोंट रिलाई ऑन वन प्लेयर ऑर द अदर.
0: आज यू कैन से जस्टिस द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ला फुएंते.
1: कौन जानता था
0: उसको पहले? Magical.
1: Who knew he that guy? लेकिन well deserved है. यहाँ पर कह सकते हैं कि it was a well deserved win for Spain. The heartbreak for Messi, heartbreak. Can you imagine? Messi lost everything. It's World Cup man.
0: Everything.
1: World Cup cup, East World Cup cup. टॉप स्कोरर बन गया एम्बापे, लीडिंग गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड कप एम्बापे, और ही इज यंग, अपने रिकॉर्ड को बेहतर बना सकता है. मेसी के लिए आई थिंक इट्स द लास्ट वर्ल्ड कप. एंड
0: और टीम भी हार गई,
1: इट्स अ बैड एंडिंग, इट्स नॉट अ गुड एंडिंग फॉर लियोनेल मेसी. इट कुड हैव बीन बेटर. आज ये गोल स्कोर करता तो कुछ होता. But all credit goes to Spain, and this team has been doing very well.
0: The best team in the competition won the World Cup.
1: एक गोल केवल एक गोल कंसीड करने वाली टीम को वर्ल्ड कप अगर नहीं दिया जाए तो it's not normal. We've seen Argentina, sur le fil, कितने मैचों में इजिप्ट के खिलाफ, केप वर्ड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ.
0: ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है. वेरी वेरी वेरी वेरी बैड.
1: सो दैट्स इट संजय. आई थिंक इट्स स्पेन ला होगा चैंपियन,
0: द चैंपियन ऑफ यूरोप्स और द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड,
1: द चैंपियन ऑफ यूरोप और द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड. और हमारे लिसनर्स को वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी वाला पल जरूर सुनाएगा व्हेन दे विल लिफ्टिंग द ट्रॉफी.
0: ओके अरविंद, कल सुबह हम आपको सुनेंगे या तो कल शाम.

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।